मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है लूका अध्याय 23 श्लोक 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वहीं मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं यशायाह अध्याय 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है रोमियों अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 8 श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित न हो, यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 36 श्लोक 22, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 6, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है मत्ती अध्याय 4 श्लोक 23,
और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं। लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। केवल आस्था ही नहीं बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करें। शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सके। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 53 श्लोक 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देख

लाखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है, यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 60 श्लोक 20, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है, इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदि हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1, हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया। इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो, प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं। उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।

0: भविष्यवाणी के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और वह अपने 11 शिष्यों को अंतिम दर्शन एवं अंतिम आज्ञा देता है और उसका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो आइए देखिए।
1: यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की

0: हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
1: चलो शिष्यों, हम यरूशलेम में ठहरकर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए बाट देखेंगे।
2: हाँ हाँ, चलो हम जाएंगे।
3: इस प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण हो जाता है। जब वे पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सब पवित्र

0: आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे।
1: चलो हम सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करेंगे।
0: प्रभु की अंतिम आज्ञा के अनुसार सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु के शिष्यों ने कई कलीसियाओं की स्थापना की और आज तक यही सेवा प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं।
1: आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेमी सलाम, जय यीशु।
2: जय यीशु।
1: मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस सभा में आए हैं। आप सब का मैं इस सभा में स्वागत करता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।

0: अब कलीसिया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैं आपको यीशु के दूसरे आगमन के विषय पर संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या आप दूसरे आगमन के विषय में जानना चाहते हो?
1: हाँ, जानना चाहते हैं।
0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरा और फिर जी भी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो दूसरे आगमन के समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिपल मेरे पास है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने आने वाला है और वो हमें बादलों में उसके साथ उठा लेगा और हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्र करो ताकि आपके आगमन में हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
2: इस प्रस्तुति में हम देखेंगे दो मित्र शराब पीकर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। रास्ते में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक ने मन फिराया और दूसरा मजाक किया और नहीं मन फिराया।
3: हे मेरे दोस्त सहेस, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मेरे को मिल गए, मुझे बहुत आनंद हुआ, चलो थोड़ा पी लेते हैं।
4: हाँ हाँ लाओ, अभी तो पीने का समय है, बहुत मजा आएगा, लाओ थोड़ा पी लेते हैं।
3: अरे दोस्त, अरे पीने से बहुत मजा आ रहा है।
4: हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है।
3: ए मेरे दोस्त, चल गाड़ी में बैठ और भी मौज मस्ती करेंगे। हा हा हा
4: हाँ चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हा हा हा हा

0: अरे भाई, इतना तेज क्यों जा रहे हो?
1: अरे तेरे को क्या करना है? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या?
0: ओहो, लगता है तुम दोनों शराब पिए हुए हो। ऐसा मत करो भाई।
2: तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तुम यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं उन्हीं को लेने के लिए यीशु आएगा, इसलिए मन फिराओ।
3: 2000 वर्षों से तुम्हारे लोग यही कहते आए हैं, अभी तक तुम्हारा यीशु कहाँ आया? बोलो। अरे छोड़ो ये सारी कहानी, चल दोस्त, हम चलते हैं।
2: अरे मेरे दोस्त महेश, थोड़ा तो रुको। हे सेवक साहब, आपकी बातें अच्छी लगी है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह पाप है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत बार इस आदत को छोड़ना चाहा, पर मुझसे नहीं हुआ। हे प्रभु के दास, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाना चाहता हूँ।
0: चिंता मत करो भाई, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए।
2: ठीक है।
0: हे प्रभु यीशु,
2: हे प्रभु यीशु,
0: मुझ पापी पर दया कर,
2: मुझ पापी पर दया कर,
0: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
2: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
0: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए,
2: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए।
0: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ,
2: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
0: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
2: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
0: यीशु मसीह के नाम में,
2: यीशु मसीह के नाम में।
0: आमेन,
2: आमेन। अरे अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सारा बोझ निकल गया है, मेरी सारी बुरी आदतें निकल गई है, मेरे दिल में यीशु आ गया है, मुझे नया जीवन मिल गया है। धन्यवाद सेवक साहब।
4: अरे दोस्त, तेरे को आना है कि नहीं आना है? मेरा टाइम हो गया है, चल गाड़ी में बैठ जा, और कितनी बातें करेगा, चल बैठ।
2: अरे दोस्त महेश, गाड़ी देख कर चलाओ।

0: अरे यहाँ जगह कितना अच्छा लग रहा है, हमने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है, लगता है यही स्वर्ग है। चलो हम उसमें प्रवेश करेंगे।
1: तुम दोनों यहीं ठहरो, पहले अपना अपना नाम बताओ। अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
2: मेरा नाम साहेस है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे साहेस, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे साहेस, आपने अपने पापों से माफी मांगी एवं मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया।

0: मेरा नाम महेश है, जल्दी ढूंढो, मेरा नाम उस पुस्तक में है क्या?
1: महेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: ऐसे कैसा हो सकता है? हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक साथ में दारू पीते थे, फिर उसको कैसे स्वर्ग मिल गया?
2: हे महेश, इस साहेश ने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया है, इसलिए उसको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल गया है। लेकिन तुमने मेरे सुसमाचार पर मजाक किया और विश्वास नहीं किया एवं अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराया है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो।
3: हे महेश, जब दुनिया में था मेरा शराब कैसा लगा? अच्छा लगा था ना, शराब पीते पीते उठ रहा था ना। अभी इधर आओ आओ, तुझे आग में धड़ पाएंगे।
4: अरे ये जगह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, मेरे विचार से अपार है, मेरा दिल आनंद से भरपूर हो गया है। हे स्वर्गदूत, मैं पास्टर पत्रस हूँ, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है?
1: हे सेवक पत्रस, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं।
2: हे मेरे विश्वासयोग्य दास, तुम मेरे काम में उत्तम रहे हैं और आप मेरी इच्छा के अनुसार चले हैं और बहुतों को सुसमाचार सुनाया और उनको मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।
5: मुझे स्वर्ग मिल गया है। धन्यवाद यीशु।

0: अब हम देखेंगे कि एक कलिसिया के दो वडिल रास्ते में मिलते हैं। एक अपने सेवक के विरुद्ध बात करता है और दूसरा उसको प्रभु के वचन से समझाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखिए।
1: अरे करमचंद भाई, जय मसीह की, कैसे हो?
2: जय मसीह की, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
1: अच्छा हूँ। अरे करमचंद भाई वडिल, आपको पिछले एक महीने से मैं कलिशा में नहीं देखा। क्यों, आप कलिशा में आजकल नहीं आते हो? क्यों, क्या हुआ?
2: देखो, मैं अच्छा कमाता हूँ और एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। कलिशा में सब विश्वासियों से मैं ही अधिक दान देने वाला हूँ, फिर भी यह पास्टर मेरी बात को नहीं मानता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।
1: करमचंद भाई, आप पास्टर साहब से इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या हुआ बताओ?
2: अपना वडिल टोनू है ना, वह वडिल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पास्टर साहब को बोला उनके घर प्रार्थना करने के लिए मत जाना, लेकिन पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए कलिसिया में आना छोड़ दिया।
1: अरे वडिल करमचंद, ध्यान से सुनो, हमारा सेवक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक भी किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है। यीशु प्रभु ने हमको एक वडिल के रूप में कलिशा में रखा है, तो हमें सेवक को दुख नहीं देना है, बल्कि उसको सेवा में साथ देना है, ताकि वो और भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके।
2: अरे वडिल धर्मचंद, आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे छोड़कर वह सेवक कैसा सेवा करता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देख लूंगा।
1: करमचंद ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर डर रखो, परमेश्वर के सेवकों का आदर करो, ऐसा घमंड मत करो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसीलिए सावधान रहो।
2: ओ वडिल, मैं सब जानता हूँ, तू तेरा काम कर, जा।
1: कितना अच्छा लग रहा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं स्वर्ग आ जाऊंगा।
3: वडिल धर्मचंद और करमचंद हाजिर हो। वडिल धर्मचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे वडिल धर्मचंद, आप जब दुनिया में थे, आप आपके सेवक और कलिशा के लिए उत्तम रहा और सेवक के साथ रहकर बहुत सेवा किया है और दान के विषय में उत्तम रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो।
1: धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, होसना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है।

0: हे स्वर्गदूत, मैं भी सेवक और कलीसिया के लिए बहुत दान दिया है और हमारे कलीसिया में सबसे बड़ा वडिल मैं ही हूँ। मुझे भी सम्मान के साथ स्वर्ग में जाने दो।
1: है वडिल करमचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे भी स्वर्ग में जाने दो।
2: हे वडिल करमचंद, आप दुनिया में रहते समय दूसरों को तुच्छ जाना और अपने सेवक को मान नहीं दिया है और घमंड के साथ आपने अपना जीवन जिए, इसलिए आप इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए अग्नि ज्वाला तैयार करके रखा है, उस नरक में जाओ।
3: ओ करमचंद, तुम्हारे लिए उधर रास्ता बंद है, बंद। इधर आओ, इधर है आग, अभी से यही होगा तुम्हारा पास।
0: ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
4: इस प्रस्तुति में दो प्रभु के सेवकों एंड्रयू और मैथ्यू के विषय में बता रहे हैं, जिसमें एंड्रयू एक बहुत पैसों वाला धोखाबाज सेवक है जो किस प्रकार चालाकी से प्रभु की सेवा करता है, तथा दूसरा सेवक मैथ्यू ईमानदारी और उत्तम के साथ बिना किसी लालच के साथ सेवा करता है। तो आइए देखिए।
5: पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड।
6: जय मसीह की। प्रभु के दास, आप कैसे हो?
5: अरे, आपका मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये बताओ कि आपकी कलीसिया और सेवकाई कैसे चल रही है?
6: प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है।
5: लेकिन आप तो साधारण लग रहे हो। मेरे समान ठाट बाट से रहो और पैसे कमाओ।
6: मैं प्रभु के द्वारा दी गई संस्था के साथ ईमानदारी से ही सेवा कर रहा हूँ।
5: ये संस्थाओं की बात छोड़ो, अगर संस्थाओं से पैसे कमाना है तो मेरे साथ चलो, बहुत ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको 4-5 संस्थाओं में नाम जुड़वा देता हूँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर देखो, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, मकान सब खरीद सकते हैं। एक ही संस्था को पकड़ के रखने से आपको जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा।
6: लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता से चुना है।
5: आपकी संस्था में रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही और मीटिंगों का आयोजन भी करना पड़ता है क्या?
6: हाँ, हमें मासिक रिपोर्ट देनी पड़ती है तथा संस्था के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है।
5: इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। मेरी कलीसिया में 20-25 लोग हैं, फिर भी 100-150 ऐसा रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही झूठा रिपोर्ट देकर बहुत पैसे कमाया हूँ, कोई नहीं पूछता। अब आपकी इच्छा।
6: नहीं नहीं, मैं दुनिया की धन दौलत के लिए मेरे परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बुलाने वाला प्रभु सच्चा है और सचमुच में मुझे आशीष करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। सुनो सेवक, वचन में लिखा है कि दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते है, ऐसा यीशु ने बताया है।
5: तू तो बदलेगा नहीं, छोड़ दो, चलो फिर मिलेंगे।
6: आप तो एक ही दिन में धनवान बनने के लिए बताते हो, लेकिन वह नहीं टिकेगा, परंतु सीढ़ी के एक एक कदम बढ़ने से ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और वही टिकेगा। चलो मिलेंगे।
7: हे स्वर्गदूत,
6: मेरा नाम मैथ्यू है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हाँ मैथ्यू, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: मेरा उत्तम और प्रिय विश्वास योग्य सेवक मैथ्यू, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
6: हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: मेरा नाम एंड्रयू है, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में जरूर होगा।
1: हे एंड्रयू, आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं है।
0: मैं तो दौड़ दौड़ कर बहुत सेवा किया, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बराबर देखो, मेरा नाम है एंड्रयू।
1: मैंने पूरा ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे एंड्रयू, तुमने मेरे नाम पर धन दौलत कमाया है, ऐश आराम किया है और उत्तम नहीं रहा, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, उसे नरक में फेंक दिया जाए।
3: हे एंड्रयू, तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है, तूने लोगों को धोखा देकर सारी वस्तु को खरीदा ना, उसी वस्तु से मैं तुझको खरीद लिया, मैंने तुझको खरीद लिया, आवो आवो मेरे राज्य में, आवो आवो एंड्रयू, आवो आवो।
0: ओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना, वहाँ नहीं आना, वो मैं सेवा करने वाला आदमी, वहाँ तो बहुत पीड़िया है, मैं नहीं आऊंगा, मुझे कहाँ ले जा रहे, वहाँ नहीं आऊंगा।
4: इस प्रस्तुति में हम बता रहे हैं कि मसीही जीवन में प्रभु को दशमांश देना कितना अवश्य है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी प्रभु के लिए दशमांश देने के विषय में क्या चर्चा करते हैं।
5: रमतुड़ी, ए रमतुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ, मुझे मेरी कंपनी से 10,000 रुपये पेमेंट मिल गया है।
6: अच्छी बात है साहिब जी, मैं इसके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा खर्च है, इसलिए आप मेरे हाथ में दे दो, जो कुछ खरीदना चाहती हूँ सारी वस्तु खरीद लूँगी, लाओ लाओ मुझे दे दो।
5: ऐसा मत बोलो, पहला हम पेमेंट को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर उसमें से दशमांश निकाल कर रख देंगे, फिर सारा खर्च के लिए उपयोग करेंगे।
6: नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा खर्च है, 10,000 से अधिक होगा, इसलिए इस महीने दशमांश हम नहीं देंगे, इससे क्या हो जाएगा, अरे देना हो तो 50-100 रुपया दे दो।
5: ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उस आशीष में से हम परमेश्वर को दशमांश देना अवश्य है, यह बाइबल में एक नियम है। सुन, बाइबल हमें क्या बताती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं में से उसने दशमांश निकाल कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। अगर उसी प्रकार हम अपनी सारी वस्तुओं में से परमेश्वर को दशमांश देंगे, तो परमेश्वर हमें भी जरूर अब्राहम के जैसे आशीष देगा और धनी बनाएगा। इस नियम को पालन करने से परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रहेगी।
6: लो पकड़ो ये तुम्हारा पेमेंट, मैं इस दशमांश के बाद में तेरे साथ शामिल नहीं हूँ, तू अपनी इच्छा से कुछ भी करो, लो।
5: चलो इस पेमेंट में से जो भी दशमांश निकलता है बाइबल में अलग से रख देता हूँ।
6: ओहो, बाइबल में दशमांश रख रहे, ठीक है मैं बाद में ले लेती हूँ।

0: सब्जी सब्जी देखो, ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है।
1: यही स्वर्ग है। उधर देखो, दो स्वर्गदूत है और एक के पास जीवन की पुस्तक है। चलो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हे स्वर्गदूत, हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है क्या? देखो देखो।
0: उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपना नाम तो होगा ही होगा।
2: हे रोशन, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे रोशन, आपने मुझसे प्रेम किया है और दशमांश देने में उत्तम रहे हैं और इसके द्वारा मुझे मान दिया है, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु।

0: रुको, मुझे भी साथ में लेके जाओ।
1: रुको रंथुड़ी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रंथुड़ी, आपने आपके पति की बात नहीं मानी और मेरा डर नहीं रखा और दशमांश के विषय में तूने धोखा दिया है और मेरे भाग को आपने चुरा भी लिया है, इसलिए तुम नरक का भागी होगी। लोभी को कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, जाओ नरक में।
0: अरे अरे, ये काले लोग कहाँ से आ गए हैं? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचा लो।
3: ये रंथुड़ी, आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है, इधर है इधर।
0: मुझे मत ले जाओ, नहीं आना है, मुझे छोड़ दो।
4: अब हम एक सेवक के बारे में देखेंगे कि जिसके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है और बाद में उसके मन में घमंड आ जाता है और अपने नाम की बड़ाई के लिए सेवा करने लग जाता है, तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा होता है।
5: ओ सेविका, आज मैं बहुत खुशी में हूँ।
6: जी बोलिए, क्या हुआ है?
5: देखो, आज मेरी प्रार्थना से बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है और सारे भूत निकल गए, बहुत लोग छुटकारा पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अभी तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, मेरा नाम तो अब फेमस हो जाएगा।
6: अच्छी बात है, ये सारे काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु की महिमा के लिए किए हैं। तो आइए एक मिनट मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें।
5: हेलो, कौन बात कर रहे हो?
7: सेवक साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति मरने की स्थिति पर है, आप जल्दी आइए और प्रार्थना कीजिए। हमने सुना है कि आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत चमत्कार होता है, इसलिए हम आपको फोन किया है।
5: ठीक है, मैं 10 मिनट में अभी वहाँ पहुँचता हूँ।
6: सेवक साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा समय रुको, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है तो हम मिलकर प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें।
5: नहीं नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे जल्दी जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम होता है, तुम भी अपनी नजरों से देख तो तुम्हें भी पता चलेगा।
6: नहीं, हम नहीं जाएंगे, थोड़ा रुको। मेरे मन में ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि अभी मत जाओ।
5: नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरा मुकुट तो तैयार होगा। वाह वाह वाह, मुझे स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत भी खड़े हैं। हे स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक आया हूँ, मेरा मुकुट मुझे जल्दी पहनाओ और स्वर्ग में मुझे जाने दो, मैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहूँगा।
1: हे सेवक जॉन, आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
5: क्या बोल रहे हो, बराबर देखना, मैं तो एक बड़ा सेवक हूँ, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगाई पाया है और शैतान से छुटकारा भी पाए हैं, मेरा नाम तो जरूर होगा, देखो।
2: मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे जान, हम तुझे देंगे सम्मान, तूने तो मुझे बहाया दाना, सेवा सेवा बोलते बोलते अब अंत में मेरे पास ही आ गया। अभी से तू मेरी
5: हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जाओ।
3: अभी नागी चलेगा सेवक जी, समय पूरा हो गया। आवो, आवो।
5: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
6: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम एस्तर है। मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है एस्तर, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे एस्तर, तू हमेशा मेरे चरणों में बैठकर मेरी महिमा करती थी और प्रार्थना करने वाली थी। आपके जीवन में सभी बातों में आपने मुझे पहले स्थान में रखा, इसलिए तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा।
6: हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।

0: अरे प्रवीण, अभी तो आया, वापस कहाँ जा रहा बेटा?
1: हाँ माँ, मैं मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ।
0: ये प्रवीण तो अभी अभी घर में आया और अभी वापस से निकल गया, बस उसके फ्रेंडों के साथ घूमता ही रहता है। अरे प्रवीण, तेरा मोबाइल छूट गया बेटा। ये प्रीति कौन है?
1: आपने क्यों देखा मेरा फोन?
0: अरे ये प्रीति कौन है? इसमें प्रीति का फोन आया।
1: आपको क्या काम है मेरा फोन देखने का?
0: प्रवीण, ओ प्रवीण, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं करने का बेटा, आप तो यीशु मसीह का बेटा है, अच्छा जीवन जीना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। बाइबिल में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इतना गुस्सा नहीं करना है। आपका जीवन में आप नमूना बनो।
1: ओ माँ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है।

0: हाँ प्रवीण बोलिए।
1: हाँ प्रीति। अरे हमारे प्यार के बारे में मम्मी को पता लग गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: ऐसा है क्या? एक मिनट।
1: हेलो। हाँ प्रीति।
2: किससे बात कर रही हो बेटा?
1: मेरी जान, क्या हुआ?
2: हेलो।
1: अरे यार फोन कट गया।
2: किससे बात कर रही हो बेटा इस आधी रात को?
0: पापा वो लड़का तो मेरा फ्रेंड है।
2: देखो बेटा ये गलत है, आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना। देखो बाइबल में लिखा है इस जवानी की उम्र में आपका जीवन बड़ी सावधानी से चलना होगा, किसी बुरे लड़के के साथ मित्रता नहीं रखना चाहिए और अपने चाल चलन में पवित्र और नमूना जीवन जीना चाहिए, समझा बेटी?

0: हेलो।
1: हाँ प्रवीण, मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब पता चल गया, अब हम क्या करेंगे?
0: सुन मेरी बात सुन, हम कल सुबह 5 बजे की ट्रेन में बैठकर भाग जाएंगे।
1: पर मेरे पापा तो अकेले रह जाएंगे।
0: चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको प्राणी के समान रखूंगा। हम लव मैरिज करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
1: ठीक है प्रवीण, मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। आई लव यू प्रवीण।
0: आई लव यू टू प्रीति। और भूलना मत, सुबह 5 बजे तैयार रहना, ठीक है?

0: प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो।
1: अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खाना बना के दूँ? पहले वो बताओ कि आपको नौकरी मिली या नहीं।
0: चलो तो आज मैं फिर नौकरी ढूंढने जाता हूँ।
1: मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार बोला था, अपनी जवानी के समय में तेरी चाल चलन को संभालना, लेकिन मैंने मेरे पिताजी का नहीं माना। मेरा जीवन पूरा आज बर्बाद हो गया है, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये जहर पीकर मर जाती हूँ।
2: Yeah.

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या?
1: आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे प्रीति, तूने अपनी जवानी के समय मुझे स्मरण नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार चली है और मेरा दिया हुआ अमूल्य जीवन को तूने नहीं संभाला और आत्महत्या किया और तेरे गलत निर्णय लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम नरक में जाओ।
3: हे प्रीति, आओ आओ, तुम जगत फेंक कर आत्महत्या किया ना, आओ आओ। तुम जैसे आत्महत्या करने वाले नरक में ही आना पड़ेगा, आओ आओ।
4: प्रीति, मुझे नौकरी मिल गई। अरे प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? उठो उठो प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई प्रीति?
5: इस प्रकार से प्रवीण पागल हो जाता है और घूमते फिरते आखिर में अपने घर पर पहुंचता है।

0: बेटा प्रवीण, कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया तेरे को? अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से है? कहाँ गया था बेटा? कहाँ गया था बेटा? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तेरा ये हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। पास्टर साहब, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप जहाँ भी गए हैं जल्दी आइए पास्टर साहब।
1: बहन, जय शु।
0: आइए पास्टर साहब, आइए, मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पास्टर साहब आइए, उसके लिए प्रार्थना करिए।
1: ठीक है बहन, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे प्रवीण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा।

0: अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। मैंने अपने जवानी के समय में अपनी इच्छा के अनुसार चला, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं पागल बन गया था। अब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे नया जीवन दिया। मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। अब से लेकर यीशु के लिए ही जीऊंगा। धन्यवाद पास्टर साहब। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे प्रवीण, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे प्रवीण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और तू मेरे से दूर हो गया था, परंतु तूने अपने पापों से पश्चाताप किया और मन फिराया है, इसलिए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो।
0: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
3: आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में। यीशु मसीह का गुप्त आगमन की घड़ी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। तो हम देखेंगे कि उस गुप्त आगमन में कौन उठा लिया जाता है और कौन रह जाता है। दो औरतें चक्की में अनाज पीसते हैं। गुप्त आगमन के समय में उनमें से एक उठा लिया जाती है और दूसरा रह जाती है।
4: ओ बहन, ओ पड़ोसी से मैं बात नहीं करती है, वो कितना गुस्सा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
5: मेरी बहन, तुम ऐसा मत बोलो, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, वह परमेश्वर का आज्ञा है।
4: छोड़ो बहन, मेरे से ये हो नहीं सकता है। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? हे मेरे पिता, मैंने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया है, मैंने पाप कर दिया है, इसलिए मैं रह गई हूँ।

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शर्मी है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है शर्मी, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शर्मी, आपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे शर्मी, वो आओ नरक में, आओ इधर, होगी बहुत गर्मी।
0: मुझे नरक में मत भेजो, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ।

0: Bye, bye. Bye, bye.
1: धीरे हल चलाओ, मैं चल नहीं सकती।
0: ठीक है। मुर्गो मुर्गो गाड़ी देख। आजकल आप प्रार्थना करती है क्या?
1: मैं सब काम काज में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता।
0: मैं तो हमेशा काम करने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बिना कोई काम काज नहीं करता हूँ।
1: अरे मेरा घर वाला इधर ही था, कहाँ गया? मैं बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं करती थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम रेणुका है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे रेणुका, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रेणुका, आप अपने कामों में व्यस्त रही और प्रार्थना नहीं किया और मुझे भी भूल गई, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे रेणुका, नरक में स्वागत है। तूने मेरा राज को चुना है। ये था रागो आनंद का।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नरक में मत भेजो, मुझे बचाओ, मुझे

0: करूं, बहुत बोर हो गया यार, टाइम ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा मोबाइल में टाइम निकालता हूँ। वाह, अरे बहुत बढ़िया वीडियो है यार। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा वीडियो आया है। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। अरे 6 बज गया, अब मोबाइल चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला। ये मनीष कहाँ गया, अभी तक आया नहीं यार, इसको फोन लगाना पड़ेगा यार। अरे फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। चलो मनीष आता है तब तक और मोबाइल चला लेता हूँ। अरे मनीष तू अभी आ रहा है, कब से तेरे को फोन लगा रहा, फोन भी नहीं लग रहा तेरा। कितनी देर हो गई तेरे को, तू सुबह से अभी आ रहा है, कहाँ गया था इतनी देर, अब जाके आ रहा है तू, बहुत टाइम हो गया तेरे को।
1: हे शैलेश, मैं तो एक मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के बारे में संदेश सुना है और मेरा जीवन बदल गया है। देख दोस्त, मैंने प्रभु से चर्च में खड़े होकर इस मोबाइल चलाने की मेरी नींद और मेरा स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो गया, उसके बारे में प्रभु से मैंने माफी मांगी और छोड़ भी दिया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे दोस्त, तुम भी इस खराब आदत को छोड़ दो और प्रभु के पास लौट आओ। देखो, इस मोबाइल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और पबजी चलाने से हमारा समय कितना बिगड़ता है। आज भी देखो, समय व्यर्थ हो गया, इस कारण हम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते, नींद भी नहीं आती, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में समय दे नहीं पाते। इसलिए तुम भी मन फिराओ और सब बातों को छोड़ दो, प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: अरे तेरी सारी कहानियां छोड़ना, देख मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तू खेलेगा कि नहीं, ये जवानी का टाइम तो मौज मस्ती करने का है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे बूढ़े होने के बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है यार। तू जा।

0: मनीष मनीष, ये क्या हो रहा है? मेरा मनीष कहाँ गया? मनीष, मेरा दोस्त कहाँ गया? मनीष, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मनीष कहाँ गया? मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे शैलेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शैलेश, आपने अपने जीवन में ज्यादा समय मोबाइल में बिताया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तूने मेरे वचन सुनकर स्वीकार नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: आवा आवा।

0: बिताओ आवो।
1: अब हम 10 कुवारियों के बारे में देखेंगे।
2: चलो साथियों, सभी अपने अपने कुपियों में तेल भर लो,
3: साथ में मसाले भी ले लो,
4: क्योंकि हमें हमारा दूल्हे से वेट करने चलना है।
5: हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियाँ कर ली है।
3: अरे अरे, देखो उन 5 औरतों को पहले से ही इतनी तैयारी कर रही है।
5: अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देरी है, और ये क्या कर रही है?
3: सुनो, मसाले ले लो, कुपियों में तेल नहीं हो तो भी चलेगा, बाद में तेल भर लेंगे।
5: हाँ हाँ, सही बात है, चलो।
6: बहुत देर हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं आया, अब हम सो जाते हैं।
7: हाँ हाँ, हम सो जाते हैं।
1: जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब मूर्ख कुवारियाँ तेल मांगने लगी, लेकिन जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आइए देखिए।
8: देखो

0: उठो उठो, जल्दी उठो, हमारा दूल्हा आ पहुंचा है, जल्दी करो।
1: अपने अपने मसाले दिया जला कर चलो।
2: हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो,
3: चलो बेंट करने चले।

0: अरे सभी जाग उठो, दूल्हा आ गया है।
1: मेरी तो मशाल नहीं जल रही है, अब मैं क्या करूं?
0: हमारे मसाले बुझ रहे हैं।
1: मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो।
2: हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर ले लो।
3: मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।

0: अरे दरवाजा तो बंद हो गया है, जल्दी दौड़ो, हमें भी दूल्हे से भेंट करनी है।
1: हम तैयार नहीं थे, अब देखो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया।
2: हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, खोल दो।
3: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।

0: अब हम एक धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में नाटक देखेंगे।
1: मेरा नाम धनवान धनजी है। सारे लोग मुझे धनवान धनजी के नाम से जानते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं, तो लोगों को पसीना आ जाता है। मेरे पास बहुत सारा धन, रुपये, बंगले, गाड़ियां, सोना और चांदी है, और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत धन है। ओह, ऐश करूंगा मैं। आओ मेरे भाइयों, आइए हम ऐश करें, खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। ऐश की जिंदगी बड़े मौज की जिंदगी। ए मेरे पांच भाइयों, इधर आओ। आज हम भोजन का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। चलो मेरे साथ।

0: अरे ओ नौकर इधर आ, आज मेरी मेज में क्या क्या परोसा जाएगा, जल्दी करके खाने लगा।
1: सेठ जी, आज आपके लिए 10 प्रकार के भोजन और पकवान बनाए गए हैं, आप चलकर भोजन का आनंद उठाइए सेठ जी।
0: ये ले मेरे छोटे भाई, ये पी और ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत धन है। ओ बड़े भाई, ये तू भी ले, ये खा, जो भी खाना खा ले ऐश कर। बड़ा मजा आ रहा है। अरे ओ नौकर जा और चिकन तंदूरी, लेग पीस, मटन फ्राई, मलाई कोफ्ता, बिरयानी लेकर जल्दी आ, बड़ा मजा आ रहा आज खाने में मेरे भाइयों के साथ।
1: हाँ जी, अभी लेके आता हूँ।
2: ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बचा खुचा खाना दे दो, कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ। अरे सेठ जी, कुछ दया करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ।
0: अरे लाजर, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। मेरे तो बहुत अच्छे दिन हो गए हैं और तेरे ये बुरे दिन।
2: प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तूने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी तू मेरी मदद और सहायता करना।
0: वाह, मजा आ गया आज तो। चलो मेरे भाइयों, अपने अपने घर पे जाएं, अब मैं ऐश आराम करने जा रहा हूँ।
2: हे मेरे सर की पिता, मुझ पर दया करना, मैं तेरा बेटा हूँ, और मेरे गुनाहों को माफ करना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझ लाजर को तू ग्रहण करना और अपने राज्य में ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
3: कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार के कारण मर जाता है और धनवान की भी मृत्यु हो जाती है।
0: ओ, ओ, ओ, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मैं मरने वाला हूँ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे।

0: हे लाजर, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसलिए पिता के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो।
1: हे लाजर, आपने मेरे पर बहुत प्रेम रखकर, मेरा डर रखकर मेरे लिए दुख उठाया है, इसलिए आपके लिए एक विशेष स्थान रखा है कि आप अब्राहम की गोद में रहो।
2: हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्मरण किया और अब्राहम की

0: हे धनवान धनजी, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे धनवान धनजी भाई, आपने अपने लिए जिया, दुनिया में मौज किया है, मेरा भय नहीं माना है और किसी पर भी दया नहीं की है, इसलिए आप नरक में जाओ।
2: ए धनवान धनजी, मेरा प्यारा सरजी, अबो बनाऊंगा तेरी सब्जी। रोज चिकन फ्राई खाता था ना, इधर आओ धनजी, तेरी फ्राई कर देंगे।
3: अरे अरे, तू मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मुझे कहाँ नरक में ले जा रहा हो? मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे हटो हटो शैतानो हटो। हाँ, अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे मुझे नरक में ले जा रहे हैं ये शैतान, किसके ले जा रहे हैं? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ।
4: हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है।
3: हे पिता अब्राहम, अब मैं क्या करूं? मैं आग में जल रहा हूं। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो।
4: इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
3: तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए।
4: उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
3: हे मेरे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे।
4: जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे,

मसीह में प्रिय, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। ईश्वर हमें हर युग में मिलते हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलने आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 19 पद 42-43 और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हमें उस समय को जानना होगा जब प्रभु हमसे मिलेंगे। जब हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कब मिलेंगे, तब परमेश्वर शत्रुओं को हमारे विरुद्ध उठने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उन दिनों का लाभ उठाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलेंगे। हमें जानना चाहिए कि इन दिनों हमारी शांति के लिए क्या सही है। कैसी शांति? प्रभु के साथ शांति से रहो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर में शांति ढूंढनी चाहिए, उसके साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद 30, मैं और पिता एक हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने कहा एक यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, हमें भी ईश्वर से जुड़कर शांति से रहना चाहिए। हमें शांति कब मिलेगी? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसलिए इस महीने हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। आइए पहले देखें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 9, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम धर्मी बन जाते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, उन्हें यीशु के खून से धोते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं, हम सब उससे जुड़ते हैं। भजनहार कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमें अपने पापों को बिना छिपाए उसके सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अपराधों के बारे में प्रभु को बताना चाहिए। शास्त्र कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 7-9, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु के खून से धोए जाते हैं और धर्मी बनते हैं तो हमें ईश्वर से शांति मिलती है, न तो खतरे और न ही दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं। आइए दूसरे पर नजर डालें। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 पद 27, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे शब्दों से धर्मी या दोषी आंका जाएगा। शास्त्र कहता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, तो बस बात मत करो। सभोपदेशक इसे दोहराता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इसलिए हमें अपने बोले हुए शब्दों से सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए हमें हर दिन अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बेकार की बातचीत से दूर रहे। भजनहार प्रार्थना करता है
भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 148 पद 3। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, तब हम धर्मी ठहरेंगे। यशायाह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 50 पद 8, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, इसलिए अपने मुंह से पाप न करो। भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 29 पद 1, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। यदि हम भी अपने मुंह पर पहरा दें तो धर्मी ठहरेंगे। हमें प्रभु के साथ शांति मिलेगी, हम शत्रु के हाथ से बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें धर्मी बनाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा और धर्मी बनाएगा। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें धर्मी बनाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 32 पद 15-16, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करता है तो धार्मिकता हमारे भीतर निवास करती है। इसलिए उत्सुकता से पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यीशु ने कहा, लूका की पुस्तक अध्याय 11 पद 3, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? इच्छा के साथ पवित्र आत्मा मांगे और प्राप्त करें, वह तुम्हें धर्मी बनाएगा। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है। हम एकजुट होकर दुश्मन के हमलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जैसे ही यह कहता है कि भेंट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भेज दो। प्रभु के मंत्रालयों को दें, अपने चर्च को दें जिससे आप संबंधित हैं, और मिशनरियों को दें, अपने चरवाहों को मत भूलो जो तुम्हें प्रभु तक ले जाते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। हमें प्रभु और उनके मंत्रालय को प्रसाद देना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या प्रभु हमारी भेंटों की गवाही दे सकते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 2, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, अपने चर्च के माध्यम से प्रचार करने के लिए भेंट दें, यदि आप स्वयं भेंट नहीं देंगे तो कौन देगा? बहुत सारे जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वहां नौकर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सेवा करने के साधनों का अभाव है। खुशी से अपने उपहार दो, उन्हें मजबूत करो, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। हमारे देश में प्रभु के बहुत से सेवक हैं जो बिना किसी दिखावे के प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद दो। प्रभु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उनके हाथ मजबूत करें। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 7, हर एक जन जैसा मन में थाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों के विषय में गवाही दी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है।
ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी। हम सभी खतरों से सुरक्षित रहें। प्रभु ने अपनी बाइबल में धर्मी बनने के कई तरीके लिखे हैं। हमने इस महीने केवल अपने फायदे के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दिया। और भी बहुत कुछ है। क्या आप स्वयं को धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित करेंगे? ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।

मसीह में भाइयों एवं बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं हूं महिमा और मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द इटरनल लव ऑफ गॉड पर। मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूं, जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। बाइबल में यिर्मयाह रचित सुसमाचार 31 अध्याय का 3 पद में बताती है कि परमेश्वर हम सबों से अनंत प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम धनी हो या कंगाल, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर की महानता वाले प्रेम की कहानी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देखेंगे।

रेनू गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी कि मैं रेडी होके तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ कम ऑन यार, जब देखो तो तुम्हारा प्रेयर मीटिंग जब देखो तो सामने आते रहता है। कोई नहीं, अच्छा बताओ कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। ओके फाइन, मैं तुम्हें 4 बजे छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। ओके ओके चलो फाइन, बाय।

0: आप यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
0: कहीं नहीं, मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: हाँ, अकेले? ठीक है, जल्दी।
0: नहीं, डोंट वरी, तुम बैठो, मैं जल्द आ रही हूँ, तुरंत आ रही
1: हूँ। ओके, फिर जल्दी आना।
0: ठीक है, ठीक है।

0: अरे यार कितना टाइम हो गया है, मुझे शाम में प्रेयर में भी जाना है। चलो सूफी घर चलते हैं, चलो चलो
1: रुक तो जाओ
0: ना। नहीं नहीं आज शाम में मुझे प्रेयर में जाना है, चलना पड़ेगा अभी, निकलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है।
1: नहीं
0: चलो
2: प्रेयर में जाते हो?
0: जी मैं प्रेयर में जाती हूँ,
2: मैं भी आ सकता हूँ?
0: हाँ आप आना चाहते हैं प्रेयर में?
2: जी जी
0: हाँ तो सुनिए आप भी आ सकते हैं।
2: एक्चुअली अपना नंबर दे दो क्या तरफ से?
0: नंबर
3: कोई प्रॉब्लम नहीं है माय फ्रेंड।
0: ओके ठीक है फिर ले लो,
3: चलो
0: बाय,
2: थैंक यू।

यीशु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपके प्रेम को भूल गई थी यीशु, मैं संसार में प्रेम ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मरने का, अब कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं।

0: बेटी रुक जा, ऐसा मत कर। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। चाहे संसार के लोग तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार के लोग तुझे बेकार समझें, पर तू मेरी नजर में अभी भी अनमोल है। मैं तुझसे अभी भी बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ बेटी।
1: मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।

इस फिल्म में हमने देखा कैसे उस लड़की ने संसार से मोहब्बत की, संसार को प्राथमिकता दी, लेकिन फिर भी संसार ने उसे ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया, मसीह का प्रेम जो हम सबको कभी अलग नहीं छोड़ता, जो हम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संसार के लोग हमसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम जो हम सबों से निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में स्वार्थ रहित सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह केवल और केवल यीशु मसीह है। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।

एक पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वह उन्हें कैसे निगल सकता है? वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है? वह रास्ते ढूंढता फिरता है। हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 30। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा। इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में, उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंत एक उच्च दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति, आस्था और नैतिक आचरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता को विकसित करना चाहिए। यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं, तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5 पद 6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1 2 और 3 मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी गहराई और हमारे चर्चा के व्यापक संदर्भ में इसके महत्व को भलीभांति समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे आपको सभी आवश्यक पृष्ठभूमि और सहायक विवरण मिल सके, ताकि आप इस समय मैं जो समझा रहा हूँ उसकी मूल भावना को पूरी तरह समझ सकें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस विशेष जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और अंतर्निहित कर लें,
क्योंकि यही हमारे आगे की चर्चा की नींव है और आपको विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी न रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 3, और मैंने स्वर्ग के आकाश से एक अत्यंत गूंजदार और शक्तिशाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, एक ऐसी आवाज जो निस्संदेह तेज और स्पष्ट थी, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का ऐलान कर रही थी, जिसकी गूंज में अपार अधिकार और दिव्य उपस्थिति थी, जो ऐसे शब्दों को पहुंचा रही थी जिनका बहुत बड़ा महत्व और आध्यात्मिक भार था, जो सभी के सुनने और समझने के लिए थे। यह एक दिव्य क्षेत्र से आया हुआ ऐतिहासिक ऐलान था, एक घोषणा जो मेरी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंज उठी और जिसने तुरंत ध्यान और विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता, हम अंतिम क्षणों में हैं, प्रभु एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी भेड़े मेरी सुनती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु, यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु, कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु, शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, धन्यवाद। हमें ऐसी आंखें दो जो आपको देख सके। पिता, हमें ऐसे कान दो जो आपकी आवाज सुन सके। पिता, हमें यह आशीर्वाद दो कि हम आपको अपने प्रभु के रूप में सेवा कर सके। चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु उसे ठीक कर दो। आप हर कमजोरी को दूर कर देते हैं। जो लोग कर्ज में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करो कि वे अपना कर्ज चुका सके।
आप उन लोगों की कठिनाइयों को बदल देते हैं जो पीड़ा में हैं। आप हर समस्या को पलट देते हैं। प्रभु, आप हर चेहरे से हर आंसू पोंछ देते हैं। आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर देते हैं। आप पीड़ितों को मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है, और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे, जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसे चमत्कार करें जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करें, अद्भुत कार्य करें, बीमारियों को ठीक करें, रोगों का उपचार करें और कमजोरियों को दूर करें। हे प्रभु, आप टोनेटोटके के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो। आपका नाम महिमा मंडित हो, क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे पिता, हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए पिता। जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें पिता, हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्मग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिन्हों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांध दी। वह क्या है?

0: अंधी।
1: वह क्या है? दो इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14। और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए, इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझ से कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की, प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8। सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 18 शब्द 6। और जहां जहां दाऊद जाता, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23। इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4। तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 13। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। योएल अध्याय 2 शब्द 16-17। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने

पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, योएल अध्याय 2:18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, योएल अध्याय 2:24-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं। यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता, वही खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, 2 इतिहास अध्याय 2:25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे, आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9:3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था, और गुलाम यहूदी लोगों के लिए प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9:23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, 2 इतिहास अध्याय 36:21-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक, उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है, सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे। वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं। चाहे कुछ भी हो, प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें?
प्रभु ने कहा। यिर्मयाह अध्याय 29 शब्द 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है यिर्मयाह अध्याय 32 शब्द 27। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है, वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूले।

रही हूँ। ताली बजा कर उसके नाम महिमा करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहे, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा अक्षयश ने एस्तेर से प्रेम किया था, इसलिए शास्त्र कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे

और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41, शब्द 44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10, शब्द 19, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1, शब्द 10, 11, 12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशति का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1, शब्द 19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशति राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशति ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65, शब्द 11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85, शब्द 12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9, शब्द 18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो, सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22, शब्द 24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है,

इब्रानियों अध्याय 12 शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 4:6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलप गीत अध्याय 3 शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2 शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4:1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3 शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38 शब्द 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है।
वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है। कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं। 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं। यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

0: से बचाकर उसके नाम में करें, आपका सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है,
1: सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं।

मसीह में प्रिय, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशायाह 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं, 1 यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, 3 मलाकी अध्याय 3 शब्द 2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, 4 लूका अध्याय 12 शब्द 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, 7 दानियेल अध्याय 7 शब्द 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशाया कहते हैं, 6 शब्द 6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशाया के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे।
प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया। इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 शब्द 1-3। जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 5 शब्द 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 3 तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं याकूब अध्याय 1 शब्द 21 इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17 शब्द 10-11 भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 2 जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो। जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते, इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 4 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 6 सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार

थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए, प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है, 1 पत्रस 2:21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है, वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला, हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है, 9:16, एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम न हो और सूख न जाए। उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2:6, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं, तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं, तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है लूका अध्याय 23 श्लोक 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वही मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं यशायाह अध्याय 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है मैथ्यू अध्याय 8 श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित न हो, यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 36 श्लोक 22, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 6, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है मत्ती अध्याय 4 श्लोक 23,
और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं। लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। केवल आस्था ही नहीं बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करें। शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सके। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है यशाया अध्याय 53 श्लोक 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती है। पवित्र शास्त्र कहता है नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 60 श्लोक 20 क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है
इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदि हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं, तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया, इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो, प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।

0: भविष्यवाणी के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और वह अपने 11 शिष्यों को अंतिम दर्शन एवं अंतिम आज्ञा देता है और उसका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो आइए देखिए।
1: यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की

0: हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
1: चलो शिष्यों, हम यरूशलेम में ठहर कर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए बाट देखेंगे।
2: हाँ हाँ, चलो हम जाएंगे।
3: इस प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण हो जाता है। जब वे पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे।
1: चलो हम सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करेंगे।
3: प्रभु की अंतिम आज्ञा के अनुसार सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु के शिष्यों ने कई कलीसियाओं की स्थापना की और आज तक यही सेवा प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं।
1: आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेमी सलाम। जय यीशु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस सभा में आए हैं। आप सबका मैं इस सभा में स्वागत करता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।

0: अब कलीसिया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैं आपको यीशु के दूसरे आगमन के विषय पर संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या आप दूसरे आगमन के विषय में जानना चाहते हो?
1: हाँ, जानना चाहते हैं।
0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरा और फिर जी भी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो दूसरे आगमन के समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिपल मेरे पास है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने आने वाला है और वो हमें बादलों में उसके साथ उठा लेगा और हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्र करो ताकि आपके आगमन में हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
2: इस प्रस्तुति में हम देखेंगे दो मित्र शराब पीकर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। रास्ते में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक ने मन फिराया और दूसरा मजाक किया और नहीं मन फिराया।
3: हे मेरे दोस्त सहेस, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मेरे को मिल गए, मुझे बहुत आनंद हुआ, चलो थोड़ा पी लेते हैं।
4: हाँ हाँ लाओ, अभी तो पीने का समय है, बहुत मजा आएगा, लाओ थोड़ा पी लेते हैं।
3: अरे दोस्त, अरे पीने से बहुत मजा आ रहा है।
4: हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है।
3: ए मेरे दोस्त, चल गाड़ी में बैठ और भी मौज मस्ती करेंगे।
4: हाँ चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा।

0: अरे भाई, इतना तेज क्यों जा रहे हो?
1: अरे तेरे को क्या करना है? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या?
0: ओहो, लगता है तुम दोनों शराब पिए हुए हो। ऐसा मत करो भाई।
2: तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तुम यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं उन्हीं को लेने के लिए यीशु आएगा, इसलिए मन फिराओ।
3: 2000 वर्षों से तुम्हारे लोग यही कहते आए हैं, अभी तक तुम

0: अभी तक तुम्हारा यीशु कहाँ आया बोलो। अरे छोड़ो ये सारी कहानी, चल दोस्त हम चलते हैं।
1: अरे मेरे दोस्त महेश, थोड़ा तो रुको। हे सेवक साहब, आपकी बातें अच्छी लगी है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह पाप है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत बार इस आदत को छोड़ना चाहा, पर मुझसे नहीं हुआ। हे प्रभु के दास, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाना चाहता हूँ।
2: चिंता मत करो भाई, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए।
1: ठीक है।
2: हे प्रभु यीशु,
1: हे प्रभु यीशु,
2: मुझ पापी पर दया कर,
1: मुझ पापी पर दया कर,
2: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
1: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
2: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए,
1: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए।
2: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ,
1: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
2: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
1: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
2: यीशु मसीह के नाम में,
1: यीशु मसीह के नाम में।
2: आमेन,
1: आमेन। अरे अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सारा बोझ निकल गया है, मेरी सारी बुरी आदतें निकल गई है, मेरे दिल में यीशु आ गया है, मुझे नया जीवन मिल गया है। धन्यवाद सेवक साहब।
0: अरे दोस्त, तेरे को आना है कि नहीं आना है? मेरा टाइम हो गया है, चल गाड़ी में बैठ जा, और कितनी बातें करेगा, चल बैठ।
1: अरे दोस्त महेश, गाड़ी देख कर चलाओ।
0: अरे यहाँ जगह कितना अच्छा लग रहा है, हमने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है, लगता है यही स्वर्ग है। चलो हम उसमें प्रवेश करेंगे।
3: तुम दोनों यहीं ठहरो, पहले अपना अपना नाम बताओ। अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
1: मेरा नाम साहेश है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
3: हे साहेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे साहेश, आपने अपने पापों से माफी मांगी एवं मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया।

0: मेरा नाम महेश है, जल्दी ढूंढो, मेरा नाम उस पुस्तक में है क्या?
1: महेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: ऐसे कैसा हो सकता है? हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक साथ में दारू पीते थे, फिर उसको कैसे स्वर्ग मिल गया?
2: हे महेश, इस साहेश ने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया है, इसलिए उसको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल गया है। लेकिन तुमने मेरे सुसमाचार पर मजाक किया और विश्वास नहीं किया एवं अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराया है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो।
3: हे महेश, जब दुनिया में था मेरा शराब कैसा लगा? अच्छा लगा था ना, शराब पीते पीते उठ रहा था ना, अभी इधर आओ।

0: अरे ये जगह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, मेरे विचार से अपार है, मेरा दिल आनंद से भरपूर हो गया है। हे स्वर्गदूत, मैं पास्टर पत्रस हूँ, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है?
1: हे सेवक पत्रस, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं।
2: हे मेरे विश्वासयोग्य दास, तुम मेरे काम में उत्तम रहे हैं और आप मेरी इच्छा के अनुसार चले हैं और बहुतों को सुसमाचार सुनाया और उनको मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।
0: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: अब हम देखेंगे कि एक कलिसिया के दो वडिल रास्ते में मिलते हैं। एक अपने सेवक के विरुद्ध बात करता है और दूसरा उसको प्रभु के वचन से समझाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखिए।
1: अरे करमचंद भाई, जय मसीह की, कैसे हो?
2: जय मसीह की, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
1: अच्छा हूँ। अरे करमचंद भाई वडिल, आपको पिछले एक महीने से मैं कलिशा में नहीं देखा। क्यों, आप कलिशा में आजकल नहीं आते हो? क्यों, क्या हुआ?
2: देखो, मैं अच्छा कमाता हूँ और एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। कलिशा में सब विश्वासों से मैं ही अधिक दान देने वाला हूँ, फिर भी यह पास्टर मेरी बात को नहीं मानता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।
1: करमचंद भाई, आप पास्टर साहब से इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या हुआ बताओ?
2: अपना वडिल टोनू है ना, वह वडिल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पास्टर साहब को बोला उनके घर प्रार्थना करने के लिए मत जाना, लेकिन पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए कलिसिया में आना छोड़ दिया।
1: अरे वडिल करमचंद, ध्यान से सुनो, हमारा सेवक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक भी किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है। यीशु प्रभु ने हमको एक वडिल के रूप में कलीसिया में रखा है, तो हमें सेवक को दुख नहीं देना है बल्कि उसको सेवा में साथ देना है ताकि वो और भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके।
2: अरे वडिल धर्मचंद, आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे छोड़कर वह सेवक कैसा सेवा करता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देख लूंगा।
1: करमचंद ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर डर रखो, परमेश्वर के सेवकों का आदर करो, ऐसा घमंड मत करो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसीलिए सावधान रहो।
2: ओ वडिल, मैं सब जानता हूँ, तू तेरा काम कर, जा।
1: कितना अच्छा लग रहा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं स्वर्ग आ जाऊंगा।
3: वडिल धर्मचंद और करमचंद हाजिर हो। वडिल धर्मचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे वडिल धर्मचंद, आप जब दुनिया में थे, आप आपके सेवक और कलीसिया के लिए उत्तम रहा और सेवक के साथ रहकर बहुत सेवा किया है और दान के विषय में उत्तम रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो।
1: धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, होसना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है।

0: हे स्वर्गदूत, मैं भी सेवक और कलीसिया के लिए बहुत दान दिया है और हमारे कलीसिया में सबसे बड़ा वडिल मैं ही हूँ। मुझे भी सम्मान के साथ स्वर्ग में जाने दो।
1: है वडिल करमचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे भी स्वर्ग में जाने दो।
2: हे वडिल करमचंद, आप दुनिया में रहते समय दूसरों को तुच्छ जाना और अपने सेवक को मान नहीं दिया है और घमंड के साथ आपने अपना जीवन जिए, इसलिए आप इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए अग्नि ज्वाला तैयार करके रखा है, उस नरक में जाओ।
3: ओ करमचंद, तुम्हारे लिए उधर रास्ता बंद है, बंद। इधर आओ, इधर है आग, अभी से यही होगा तुम्हारा बाग।
0: ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
4: इस प्रस्तुति में दो प्रभु के सेवकों एंड्रयू और मैथ्यू के विषय में बता रहे हैं, जिसमें एंड्रयू एक बहुत पैसों वाला धोखाबाज सेवक है जो किस प्रकार चालाकी से प्रभु की सेवा करता है, तथा दूसरा सेवक मैथ्यू ईमानदारी और उत्तम के साथ बिना किसी लालच के साथ सेवा करता है। तो आइए देखिए।
5: पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड।
6: जय मसीह की। प्रभु के दास, आप कैसे हो?
5: अरे, आपका मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये बताओ कि आपकी कलीसिया और सेवकाई कैसे चल रही है?
6: प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है।
5: लेकिन आप तो साधारण लग रहे हो। मेरे समान ठाट बाट से रहो और पैसे कमाओ।
6: मैं प्रभु के द्वारा दी गई संस्था के साथ ईमानदारी से ही सेवा कर रहा हूँ।
5: ये संस्थाओं की बात छोड़ो, अगर संस्थाओं से पैसे कमाना है तो मेरे साथ चलो, बहुत ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको 4-5 संस्थाओं में नाम जुड़वा देता हूँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर देखो, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, मकान सब खरीद सकते हैं। एक ही संस्था को पकड़ के रखने से आपको जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा।
6: लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता से चुना है।
5: आपकी संस्था में रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही और मीटिंगों का आयोजन भी करना पड़ता है क्या?
6: हाँ, हमें मासिक रिपोर्ट देनी पड़ती है तथा संस्था के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है।
5: इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। मेरी कलीसिया में 20-25 लोग हैं, फिर भी 100-150 ऐसा रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही झूठा रिपोर्ट देकर बहुत पैसे कमाया हूँ, कोई नहीं पूछता। अब आपकी इच्छा।
6: नहीं नहीं, मैं दुनिया की धन दौलत के लिए मेरे परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बुलाने वाला प्रभु सच्चा है और सचमुच में मुझे आशीष करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। सुनो सेवक, वचन में लिखा है कि दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते है, ऐसा यीशु ने बताया है।
5: तू तो बदलेगा नहीं, छोड़ दो, चलो फिर मिलेंगे।
6: आप तो एक ही दिन में धनवान बनने के लिए बताते हो, लेकिन वह नहीं टिकेगा, परंतु सीढ़ी के एक एक कदम बढ़ने से ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और वही टिकेगा। चलो मिलेंगे।
7: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम मैथ्यू है,
6: मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हाँ मैथ्यू, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: मेरा उत्तम और प्रिय विश्वास योग्य सेवक मैथ्यू, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
6: हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: मेरा नाम एंड्रयू है, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में जरूर होगा।
1: हे एंड्रयू, आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं है।
0: मैं तो दौड़ दौड़ कर बहुत सेवा किया, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बराबर देखो, मेरा नाम है एंड्रयू।
1: मैंने पूरा ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे एंड्रयू, तुमने मेरे नाम पर धन दौलत कमाया है, ऐश आराम किया है और उत्तम नहीं रहा, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। उसे नरक में फेंक दिया जाए।
3: हे एंड्रयू, तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है। तूने लोगों को धोखा देकर सारी वस्तु को खरीदा ना, उसी वस्तु से मैं तुझको खरीद लिया। मैंने तुझको खरीद लिया। आवो आवो मेरे राज्य में, आवो आवो एंड्रयू, आवो आवो।
0: ओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना। वहाँ नहीं आना, वो मैं सेवा करने वाला आदमी, वहाँ तो बहुत पीड़िया है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?
4: इस प्रस्तुति में हम बता रहे हैं कि मसीही जीवन में प्रभु को दशमांश देना कितना अवश्य है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी प्रभु के लिए दशमांश देने के विषय में क्या चर्चा करते हैं।
5: रमतुड़ी, ए रमतुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ। मुझे मेरी कंपनी से 10,000 रुपये पेमेंट मिल गया है।
6: अच्छी बात है साहिब जी, मैं इसके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा खर्च है, इसलिए आप मेरे हाथ में दे दो। जो कुछ खरीदना चाहती हूँ सारी वस्तु खरीद लूँगी। लाओ लाओ मुझे दे दो।
5: ऐसा मत बोलो, पहला हम पेमेंट को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर उसमें से दशमांश निकाल कर रख देंगे, फिर सारा खर्च के लिए उपयोग करेंगे।
6: नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा खर्च है, 10,000 से अधिक होगा, इसलिए इस महीने दशमांश हम नहीं देंगे, इससे क्या हो जाएगा। अरे देना हो तो 5,500 रुपया दे दो।
5: ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उस आशीष में से हम परमेश्वर को दशमांश देना अवश्य है। यह बाइबल में एक नियम है। सुन, बाइबल हमें क्या बताती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं में से उसने दशमांश निकाल कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। अगर उसी प्रकार हम अपनी सारी वस्तुओं में से परमेश्वर को दशमांश देंगे, तो परमेश्वर हमें भी जरूर अब्राहम के जैसे आशीष देगा और धनी बनाएगा। इस नियम को पालन करने से परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रहेगी।
6: लो पकड़ो ये तुम्हारा पेमेंट, मैं इस दशमांश के बाद में तेरे साथ शामिल नहीं हूँ, तू अपनी इच्छा से कुछ भी करो। लो
5: चलो, इस पेमेंट में से जो भी दशमांश निकलता है बाइबल में अलग से रख देता हूँ।
6: ओहो, बाइबल में दशमांश रख रहे, ठीक है मैं बाद में ले लेती हूँ।

0: सब्जी सब्जी देखो, ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है।
1: यही स्वर्ग है। उधर देखो, दो स्वर्गदूत है और एक के पास जीवन की पुस्तक है। चलो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हे स्वर्गदूत, हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है क्या? देखो देखो।
0: उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपना नाम तो होगा ही होगा।
2: हे रोशन, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे रोशन, आपने मुझसे प्रेम किया है और दशमांश देने में उत्तम रहे हैं और इसके द्वारा मुझे मान दिया है, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया।

0: रुको रुको, मुझे भी साथ में लेके जाओ।
1: रुको रंथुड़ी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रंथुड़ी, आपने आपके पति की बात नहीं मानी और मेरा डर नहीं रखा और दशमांश के विषय में तूने धोखा दिया है और मेरे भाग को आपने चुरा भी लिया है, इसलिए तुम नरक का भागी होगी। लोभी को कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, जाओ नरक में।
0: अरे अरे, ये काले लोग कहाँ से आ गए हैं? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचा लो।
3: ये रंथुड़ी, आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है, इधर है इधर। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, बराबर पकड़ो उसको, हमारे राज्य में लेके आओ।
0: मुझे मत ले जाओ, नहीं आना है, मुझे छोड़ दो।
4: अब हम एक सेवक के बारे में देखेंगे कि जिसके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है और बाद में उसके मन में घमंड आ जाता है और अपने नाम की बड़ाई के लिए सेवा करने लग जाता है, तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा होता है।
5: ओ सेविका, आज मैं बहुत खुशी में हूँ।
6: जी बोलिए, क्या हुआ है?
5: देखो, आज मेरी प्रार्थना से बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है और सारे भूत निकल गए, बहुत लोग छुटकारा पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अभी तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, मेरा नाम तो अब फेमस हो जाएगा।
6: अच्छी बात है, ये सारे काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु की महिमा के लिए किए हैं। तो आइए एक मिनट मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें।
5: हेलो, कौन बात कर रहे हो?
7: सेवक साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति मरने की स्थिति पर है, आप जल्दी आइए और प्रार्थना कीजिए। हमने सुना है कि आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत चमत्कार होता है, इसलिए हम आपको फोन किया है।
5: ठीक है, मैं 10 मिनट में अभी वहाँ पहुँचता हूँ।
6: सेवक साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा समय रुको, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है तो हम मिलकर प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें।
5: नहीं नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे जल्दी जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम होता है, तुम भी अपनी नजरों से देख तो तुम्हें भी पता चलेगा।
6: नहीं, हम नहीं जाएंगे, थोड़ा रुको, मेरे मन में ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि अभी मत जाओ।
5: नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरा मुकुट तो तैयार होगा। वाह वाह वाह, मुझे स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत भी खड़े हैं। हे स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक आया हूँ, मेरा मुकुट मुझे जल्दी पहनाओ और स्वर्ग में मुझे जाने दो, मैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहूँगा।
1: हे सेवक जॉन, आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
5: क्या बोल रहे हो, बराबर देखना, मैं तो एक बड़ा सेवक हूँ, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगाई पाया है और शैतान से छुटकारा भी पाए हैं, मेरा नाम तो जरूर होगा, देखो।
2: मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे जान, हम तुझे देंगे सम्मान, तूने तो मुझे बहाया दाना, सेवा सेवा बोलते बोलते अब आंधु में मेरे पास आ गया। अभी से तू मेरी सेवा कर।
5: हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जाओ।
3: अभी नागी चलने का सेवक जी, समय पूरा हो गया। आवो, आवो।
5: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
6: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम एस्तर है। मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है एस्तर, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे एस्तर, तू हमेशा मेरे चरणों में बैठकर मेरी महिमा करती थी और प्रार्थना करने वाली थी। आपके जीवन में सभी बातों में आपने मुझे पहले स्थान में रखा, इसलिए तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे।
6: हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।

0: अरे प्रवीण, अभी तो आया, वापस कहाँ जा रहा बेटा?
1: हाँ माँ, मैं मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ।
0: ये प्रवीण तो अभी अभी घर में आया और अभी वापस से निकल गया, बस उसके फ्रेंडों के साथ घूमता ही रहता है। अरे प्रवीण, तेरा मोबाइल छूट गया बेटा। ये प्रीति कौन है?
1: आपने क्यों देखा मेरा फोन?
0: अरे ये प्रीति कौन है? इसमें प्रीति का फोन आया।
1: आपको क्या काम है मेरा फोन देखने का?
0: प्रवीण, ओ प्रवीण, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं करने का बेटा, आप तो यीशु मसीह का बेटा है, अच्छा जीवन जीना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। बाइबिल में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इतना गुस्सा नहीं करना है। आपका जीवन में आप नमूना बनो।
1: ओ माँ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है।

0: हाँ प्रवीण बोले।
1: हाँ प्रीति। अरे हमारे प्यार के बारे में मम्मी को पता लग गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: ऐसा है क्या? एक मिनट।
1: हेलो। हाँ प्रीति,
2: किससे बात कर रही हो बेटा?
1: मेरी जान, क्या हुआ?
2: हेलो।
1: अरे यार फोन कट गया।
2: किससे बात कर रही हो बेटा इस आधी रात को?
0: पापा वो लड़का तो मेरा फ्रेंड है।
2: देखो बेटा ये गलत है, आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना। देखो बाइबल में लिखा है इस जवानी की उम्र में आपका जीवन बड़ी सावधानी से चलना होगा, किसी बुरे लड़के के साथ मित्रता नहीं रखना चाहिए और अपने चाल चलन में पवित्र और नमूना जीवन जीना चाहिए, समझा बेटी?

0: हेलो।
1: हाँ प्रवीण, मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब पता चल गया, अब हम क्या करेंगे?
0: सुन मेरी बात सुन, हम कल सुबह 5 बजे की ट्रेन में बैठकर भाग जाएंगे।
1: पर मेरे पापा तो अकेले रह जाएंगे।
0: चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको रानी के समान रखूंगा। हम लव मैरिज करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
1: ठीक है प्रवीण, मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। आई लव यू प्रवीण।
0: आई लव यू टू प्रीति। और भूलना मत, सुबह 5 बजे तैयार रहना, ठीक है?

0: प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो।
1: अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खाना बना के दूँ? पहले वो बताओ कि आपको नौकरी मिली या नहीं।
0: चलो तो आज मैं फिर नौकरी ढूंढने जाता हूँ।
1: मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार बोला था, अपनी जवानी के समय में तेरी चाल चलन को संभालना, लेकिन मैंने मेरे पिताजी का नहीं माना। मेरा जीवन पूरा आज बर्बाद हो गया है, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये जहर पीकर मर जाती हूँ।
2: Yeah.

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या?
1: आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे प्रीति, तूने अपनी जवानी के समय मुझे स्मरण नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार चली है और मेरा दिया हुआ अमूल्य जीवन को तूने नहीं संभाला और आत्महत्या किया और तेरे गलत निर्णय लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम नरक में जाओ।
3: हे प्रीति, आओ आओ, तुम जागर पीकर आत्महत्या किया ना, आओ आओ। तुम जैसे आत्महत्या करने वाले नरक में ही आना पड़ेगा, आओ आओ।
4: प्रीति, मुझे नौकरी मिल गई। अरे प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? उठो उठो प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई प्रीति?
5: इस प्रकार से प्रवीण पागल हो जाता है और घूमते फिरते आखिर में अपने घर पर पहुंचता है।

0: बेटा प्रवीण, कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया तेरे को? अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से है? कहाँ गया था बेटा? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तेरा ये हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। पाशा साहब, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप जहाँ भी कहिए जल्दी आइए। पाशा साहब,
1: बहन जय शु।
0: आइए पाशा साहब, आइए, मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पाशा साहब आइए, उसके लिए प्रार्थना करिए।
1: ठीक है बहन, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे प्रवीण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा।

0: अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। मैंने अपने जवानी के समय में अपनी इच्छा के अनुसार चला, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं पागल बन गया था। अब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे नया जीवन दिया। मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। अब से लेकर यीशु के लिए ही जीऊंगा। धन्यवाद पास्टर साहब। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे प्रवीण, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे प्रवीण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और तू मेरे से दूर हो गया था, परंतु तूने अपने पापों से पश्चाताप किया और मन फिराया है, इसलिए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो।
0: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया,
3: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
4: आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में। यीशु मसीह का गुप्त आगमन की घड़ी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। तो हम देखेंगे कि उस गुप्त आगमन में कौन उठा लिया जाता है और कौन रह जाता है। दो औरतें चक्की में अनाज पीसते हैं। गुप्त आगमन के समय में उनमें से एक उठा लिया जाती है और दूसरा रह जाती है।
5: ओ बहन, वो पड़ोसी से मैं बात नहीं करती है, वो कितना गुस्सा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
6: मेरी बहन, तुम ऐसा मत बोलो, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, वह परमेश्वर का आज्ञा है।
5: छोड़ो बहन, मेरे से ये हो नहीं सकता है। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? हे मेरे पिता, मैंने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया है, मैंने पाप कर दिया है, इसलिए मैं रह गई हूँ।

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शर्मी है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है शर्मी, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शर्मी, आपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे शर्मी, वो आओ नरक में आओ, इधर होगी बहुत गर्मी।
0: मुझे नरक में मत भेजो।

0: Bye bye. Bye bye.
1: धीरे हल चलाओ, मैं चल नहीं सकती।
0: ठीक है। मुर्गो मुर्गो गाड़ी देख। आजकल आप प्रार्थना करती है क्या?
1: मैं सब काम काज में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता।
0: मैं तो हमेशा काम करने से पहले प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना के बिना कोई काम काज नहीं करता हूँ।
1: अरे मेरा घर वाला इधर ही था, कहाँ गया? मैं बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं करती थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या होगा?

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम रेणुका है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे रेणुका, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रेणुका, आप अपने कामों में व्यस्त रही और प्रार्थना नहीं किया और मुझे भी भूल गई, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे रेणुका, नरक में स्वागत है। तूने मेरा राज्य को चुना है। यह रागो आनंद का।
0: मुझे बस

0: ओहो अब क्या करूं, बहुत बोर हो गया यार, टाइम ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा मोबाइल में टाइम निकालता हूँ। वाह, अरे बहुत बढ़िया वीडियो है यार। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा वीडियो है यार। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। अरे 6 बज गया, अब मोबाइल चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला। ये मनीष कहाँ गया, अभी तक आया नहीं यार, इसको फोन लगाना पड़ेगा यार। अरे फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। चलो मनीष आता है तब तक और मोबाइल चला लेता हूँ। अरे मनीष तू अभी आ रहा है, कब से तेरे को फोन लगा रहा, फोन भी नहीं लग रहा तेरा, कितनी देर हो गई तेरे को, तू सुबह से अभी आ रहा है, कहाँ गया था इतनी देर, अब जाके आ रहा है तू, बहुत टाइम हो गया तेरे को।
1: हे शैलेश, मैं तो एक मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के बारे में संदेश सुना है और मेरा जीवन बदल गया है। देख दोस्त, मैंने प्रभु से चर्च में खड़े होकर इस मोबाइल चलाने की मेरी नींद और मेरा स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो गया, उसके बारे में प्रभु से मैंने माफी मांगी और छोड़ भी दिया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे दोस्त तुम भी इस खराब आदत को छोड़ दो और प्रभु के पास लौट आओ। देखो इस मोबाइल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और पबजी चलाने से हमारा समय कितना बिगड़ता है, आज भी देखो समय व्यर्थ हो गया। इस कारण हम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते, नींद भी नहीं आती, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में समय दे नहीं पाते। इसलिए तुम भी मन फिराओ और सब बातों को छोड़ दो, प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: अरे तेरी सारी कहानियां छोड़ना, देख मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तू खेलेगा कि नहीं, ये जवानी का टाइम तो मौज मस्ती करने का है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे बूढ़े होने के बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है यार। तू जा।

0: मनीष मनीष ये क्या हो रहा है? मेरा मनीष कहाँ गया? मनीष मेरा दोस्त कहाँ गया? मनीष ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मनीष कहाँ गया? मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे शैलेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शैलेश, आपने अपने जीवन में ज्यादा समय मोबाइल में बिताया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तूने मेरे वचन सुनकर स्वीकार नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: वो शैलेश, मुझे मालूम है कि तुम इधर ही आने वाला है। YouTube, WhatsApp, TikTok, पबजी, इसमें ज्यादा समय बिताया था ना, मैं हूँ उसका मालिक। आवो आवो, अब मेरे साथ समय बिताओ।
4: अब हम 10 कुवारियों के बारे में देखेंगे।
5: चलो साथियों, सभी अपने अपने कुपियों में तेल भर लो,
6: साथ में मसाले भी ले लो,
7: क्योंकि हमें हमारा दूल्हे से भेंट करने चलना है।
8: हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियां कर ली है।
6: अरे अरे, देखो उन 5 औरतों को पहले से ही इतनी तैयारी कर रही है।
8: अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देरी है और ये क्या कर रही है?
6: सुनो, मसाले ले लो, कुपियों में तेल नहीं हो तो भी चलेगा, बाद में तेल भर लेंगे।
8: हाँ हाँ, सही बात है, चलो।
5: बहुत देर हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं आया, अब हम सो जाते हैं।
9: हाँ हाँ, हम सो जाते हैं।
4: जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब मूर्ख कुवारियां तेल मांगने लगी, लेकिन जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आइए देखिए।
10: देखो,

0: उठो, जल्दी उठो, हमारा दूल्हा आ पहुंचा है, जल्दी करो।
1: अपने अपने मसाले दिया जलाकर चलो।
2: हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो,
3: चलो बेंट करने चले।

0: अरे सभी जाग उठो, दूल्हा आ गया है।
1: मेरी तो मशाल नहीं जल रही है, अब मैं क्या करूं?
0: हमारे मसाले बुझ रहे हैं।
2: मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं?
1: अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो।
3: हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर ले लो।
4: मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।

0: अरे दरवाजा तो बंद हो गया है, जल्दी दौड़ो, हमें भी दूल्हे से भेंट करनी है।
1: हम तैयार नहीं थे, अब देखो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया।
2: हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, खोल दो।
3: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।

0: अब हम एक धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में नाटक देखेंगे।
1: मेरा नाम धनवान धनजी है, सारे लोग मुझे धनवान धनजी के नाम से जानते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं तो लोगों को पसीना आ जाता है। मेरे पास बहुत सारा धन, रुपये, बंगले, गाड़ियां, सोना और चांदी है, और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत धन है। ओह, ऐश करूंगा मैं। आओ मेरे भाइयों, आइए हम ऐश करें, खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। ऐश की जिंदगी बड़े मौज की जिंदगी। ए मेरे पांच भाइयों, इधर आओ, आज हम भोजन का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, चलो मेरे साथ। अरे ओ नौकर, इधर आ, आज मेरी मेज में क्या क्या परोसा जाएगा, जल्दी करके खाने लगा।
2: सेठ जी, आज आपके लिए 10 प्रकार के भोजन और पकवान बनाए गए हैं, आप चलकर भोजन का आनंद उठाइए सेठ जी।
1: ये ले मेरे छोटे भाई, ये पी और ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत धन है। ओ बड़े भाई, ये तू भी ले, ये खा, जो भी खाना खा ले, ऐश कर। बड़ा मजा आ रहा है। अरे वो नौकर, जा और चिकन तंदूरी, लेग पीस, मटन फ्राई, मलाई कोफ्ता, बिरयानी लेकर जल्दी आ, बड़ा मजा आ रहा है आज खाने में मेरे भाइयों के साथ।
2: हाँ जी, अभी लेके आता हूँ।
3: ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ बचा कुचा खाना दे दो, कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ। अरे सेठ जी, कुछ दया करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ।
1: अरे लाजर, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। मेरे तो बहुत अच्छे दिन हो गए हैं और तेरे ये बुरे दिन।
3: प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तूने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी तू मेरी मदद और सहायता करना।
1: वाह, मजा आ गया आज तो। चलो मेरे भाइयों, अपने अपने घर पे जाएं, अब मैं ऐश आराम करने जा रहा हूँ।
3: हे मेरे सर की पिता, मुझ पर दया करना, मैं तेरा बेटा हूँ, और मेरे गुनाहों को माफ करना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझ लाजर को तू ग्रहण करना और अपने राज्य में ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
0: कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार के कारण मर जाता है और धनवान की भी मृत्यु हो जाती है।
1: ओ, ओ, ओ, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मैं मरने वाला हूँ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे।

0: हे लाजर, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसलिए पिता के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो।
1: हे लाजर, आपने मेरे पर बहुत प्रेम रखकर, मेरा डर रखकर मेरे लिए दुख उठाया है, इसलिए आपके लिए एक विशेष स्थान रखा है कि आप अब्राहम की गोद में रहो।
2: हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्मरण किया और अब्राहम की

0: हे धनवान धन जी, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे धनवान धन जी भाई, आपने अपने लिए जिया, दुनिया में मौज किया है, मेरा भय नहीं माना है और किसी पर भी दया नहीं की है, इसलिए आप नरक में जाओ।
2: ए धनवान धन जी, मेरा प्यारा सर जी, आवो आवो, बनाऊंगा तेरी सब्जी। रोज चिकन फ्राई खाता था ना, इधर आवो धन जी, तेरी फ्राई

0: अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मुझे कहाँ नरक में ले जा रहा हो? मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे हटो हटो शैतानो हटो। हाँ अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे मुझे नरक में ले जा रहे हैं ये शैतान, किसके ले जा रहे हैं? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ।
1: हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
0: हे पिता अब्राहम, अब मैं क्या करूं? मैं आग में जल रहा हूं, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़

0: दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो।
1: इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
0: तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए।
1: उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
0: हे मेरे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे।
1: जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।

मसीह में प्रिय, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। ईश्वर हमें हर युग में मिलते हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलने आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 19 पद 42 43 और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हमें उस समय को जानना होगा जब प्रभु हमसे मिलेंगे। जब हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कब मिलेंगे, तब परमेश्वर शत्रुओं को हमारे विरुद्ध उठने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उन दिनों का लाभ उठाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलेंगे। हमें जानना चाहिए कि इन दिनों हमारी शांति के लिए क्या सही है। कैसी शांति? प्रभु के साथ शांति से रहो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर में शांति ढूंढनी चाहिए, उसके साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद 30, मैं और पिता एक हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने कहा एक यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, हमें भी ईश्वर से जुड़कर शांति से रहना चाहिए। हमें शांति कब मिलेगी? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसलिए इस महीने हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। आइए पहले देखें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 9, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम धर्मी बन जाते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, उन्हें यीशु के खून से धोते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं, हम सब उससे जुड़ते हैं। भजनहार कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमें अपने पापों को बिना छिपाए उसके सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अपराधों के बारे में प्रभु को बताना चाहिए। शास्त्र कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 7-9, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु के खून से धोए जाते हैं और धर्मी बनते हैं तो हमें ईश्वर से शांति मिलती है, न तो खतरे और न ही दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं। आइए दूसरे पर नजर डालें। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 पद 27, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे शब्दों से धर्मी या दोषी आंका जाएगा। शास्त्र कहता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, तो बस बात मत करो। सभोपदेशक इसे दोहराता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इसलिए हमें अपने बोले हुए शब्दों से सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए हमें हर दिन अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बेकार की बातचीत से दूर रहे। भजनहार प्रार्थना करता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 141 पद 3,
हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, तब हम धर्मी ठहरेंगे। यशायाह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 50 पद 8, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। इसलिए अपने मुंह से पाप न करो। भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 29 पद 1, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। यदि हम भी अपने मुंह पर पहरा दें तो धर्मी ठहरेंगे। हमें प्रभु के साथ शांति मिलेगी, हम शत्रु के हाथ से बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें धर्मी बनाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा और धर्मी बनाएगा। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें धर्मी बनाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 32 पद 15-16, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करता है तो धार्मिकता हमारे भीतर निवास करती है। इसलिए उत्सुकता से पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यीशु ने कहा, लूका की पुस्तक अध्याय 11 पद 3, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इच्छा के साथ पवित्र आत्मा मांगे और प्राप्त करें, वह तुम्हें धर्मी बनाएगा। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है। हम एकजुट होकर दुश्मन के हमलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जैसे ही यह कहता है कि भेंट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भेज दो। प्रभु के मंत्रालयों को दें, अपने चर्च को दें जिससे आप संबंधित हैं, और मिशनरियों को दें। अपने चरवाहों को मत भूलो जो तुम्हें प्रभु तक ले जाते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। हमें प्रभु और उनके मंत्रालय को प्रसाद देना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या प्रभु हमारी भेंटों की गवाही दे सकते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 2, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अपने चर्च के माध्यम से प्रचार करने के लिए भेंट दें। यदि आप स्वयं भेंट नहीं देंगे तो कौन देगा? बहुत सारे जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वहां नौकर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सेवा करने के साधनों का अभाव है। खुशी से अपने उपहार दो, उन्हें मजबूत करो, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। हमारे देश में प्रभु के बहुत से सेवक हैं जो बिना किसी दिखावे के प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रसाद दो, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप उनके हाथ मजबूत करें। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 7, हर एक जन जैसा मन में थाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों के विषय में गवाही दी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी।
हम सभी खतरों से सुरक्षित रहें। प्रभु ने अपनी बाइबल में धर्मी बनने के कई तरीके लिखे हैं। हमने इस महीने केवल अपने फायदे के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दिया। और भी बहुत कुछ है। क्या आप स्वयं को धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित करेंगे? ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।

मसीह में भाइयों एवं बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं हूं महिमा और मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द इटरनल लव ऑफ गॉड पर। मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूं जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। बाइबल में यिर्मयाह रचित सुसमाचार 31 अध्याय का 3 पद में बताती है कि परमेश्वर हम सबों से अनंत प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम धनी हो या कंगाल, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के महानता वाले प्रेम की कहानी एक छोटी से कहानी के माध्यम से हम देखेंगे।

रेनू गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी कि मैं रेडी होके तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ कम ऑन यार, जब देखो तो तुम्हारा प्रेयर मीटिंग जब देखो तो सामने आते रहता है। कोई नहीं, अच्छा बताओ कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। ओके फाइन, मैं तुम्हें 4 बजे छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। ओके ओके चलो फाइन, बाय।

0: देखो आप तो यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
0: कहीं नहीं, मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: हाँ, अकेले
0: जल्दी। नहीं, डोंट वरी, तुम बैठो, मैं जल्द आ रही हूँ, तुरंत आ रही
1: हूँ। ओके, फिर जल्दी आ।
0: ठीक है, ठीक है।

0: अरे यार कितना टाइम हो गया है, मुझे शाम में प्रेयर में भी जाना है। चलो सूफी घर चलते हैं, चलो चलो। नहीं नहीं, आज शाम में मुझे प्रेयर में जाना है, चलना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। चलो चलो ठीक है।
1: आप प्रेयर में जाते हो?
0: जी मैं प्रेयर में जाती हूँ,
1: मैं भी आ सकता हूँ?
0: हाँ आप आना चाहते हैं प्रेयर में?
1: जी जी जरूर।
0: हाँ तो सुन, आप भी आ सकते हैं। चलो
1: एक्चुअली अपना नंबर दे दो क्या तरफ से?
0: नंबर
2: नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: ओके ठीक है, फिर ले लो, बाय।
1: थैंक यू।

यीशु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपके प्रेम को भूल गई थी यीशु, मैं संसार में प्रेम ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मरने का, अब कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं।

0: बेटी रुक जा, ऐसा मत कर। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। चाहे संसार के लोग तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार के लोग तुझे बेकार समझें, पर तू मेरे नजर में अभी भी अनमोल है। मैं तुझसे अभी भी बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ बेटी।
1: मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हो सके तो मुझे माफ कर।

एक सिग्नल में देखा कैसे उस लड़की ने संसार से मोहब्बत की, संसार को प्राथमिकता दी, लेकिन फिर भी संसार ने उसे ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया, मसीह का प्रेम जो हम सबों को कभी अलग नहीं छोड़ता, जो हम सबों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संसार के लोग हमसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम जो हम सबों से निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में स्वार्थ रहित सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह केवल और केवल यीशु मसीह है। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।

एक पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वह उन्हें कैसे निगल सकता है? वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है? वह रास्ते ढूंढता फिरता है। हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 20। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा। इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में, उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंततः एक उच्च, दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति, आस्था और नैतिक आचरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता को विकसित करना चाहिए, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5 पद 6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1, 2 और 3। मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी, अत्यंत आवश्यक है कि आप इस विशेष जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और अंतर्निहित कर लें, क्योंकि यही हमारे आगे की चर्चा की नींव है और आपको विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी

रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए। यीशु, मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए।

करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रभु यीशु हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता हम अंतिम क्षणों में हैं, प्रभु एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी भेड़े मेरी सुनती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता धन्यवाद, हमें ऐसी आंखें दो

सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे, जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसे चमत्कार करें जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करें, अद्भुत कार्य करें, बीमारियों को ठीक करें, रोगों का उपचार करें और कमजोरियों को दूर करें। हे प्रभु, आप टोनेटोटके के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो, आपका नाम महिमा मंडित हो, क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे पिता, हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए पिता। जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें पिता, हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्म ग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिन्हों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांधी। वह क्या है? दो इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की। प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है।

दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8। सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 18 शब्द 6, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4, तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 13, और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। योएल अध्याय 2 शब्द 16-17, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, योएल अध्याय 2 शब्द 18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, योएल अध्याय 2 शब्द 24-25-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं।
यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता वही खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय दो शब्द 25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे। आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9-3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था और गुलाम यहूदी लोगों के लिए, प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9-23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 36-22-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक, उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है। सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे। वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं। चाहे कुछ भी हो प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें? प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29-13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है, यिर्मयाह अध्याय 32-27, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है। वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

तालियों में ताले बजाकर उसके नाम को महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है, इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें,
शास्त्र कहता है, भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है, इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1, इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलाप गीत अध्याय 3, शब्द 22, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1, इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10, व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7,
इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4:17। फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1:9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5:1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10:21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि

दीपक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशाया अध्याय 60 शब्द 3-4-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं, उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ।

हूँ ताली बजा कर उसके नाम में मंगल आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाते उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशायाह अध्याय 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं, यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, 3 मलाकी अध्याय 3 शब्द 2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, 4 लूका अध्याय 12 शब्द 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, 7 दानियेल अध्याय 7 शब्द 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशायाह कहते हैं, 6 यशायाह अध्याय 6 शब्द 6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशायाह के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे।
प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया। इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 शब्द 1-3। जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 5 शब्द 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 3 तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं याकूब अध्याय 1 शब्द 21 इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17 शब्द 10-11 भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 2 जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो। जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते, इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 4 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 6 सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 शब्द 21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला, हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है होशे अध्याय 9 शब्द 16 एप्रेम मारा हुआ है उनकी जड़ सूख गई उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम न हो और सूख न जाए। उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है।
प्रेरित पौलुस लिखते हैं, कुलुसियों अध्याय 2 शब्द 6, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है लूका अध्याय 23 श्लोक 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वही मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है रोमियों अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 8 श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित न हो, यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 36 श्लोक 22, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 6, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है मत्ती अध्याय 4 श्लोक 23, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं। लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचे। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। केवल आस्था ही नहीं बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करे। शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सके। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 53 श्लोक 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती है। पवित्र शास्त्र कहता है नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशायाह अध्याय 60 श्लोक 20 क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15
इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदि हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1, हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया, इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।

0: भविष्यवाणी के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और वह अपने 11 शिष्यों को अंतिम दर्शन एवं अंतिम आज्ञा देता है और उसका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो आइए देखिए।
1: यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की

0: हे गलीले पुरुषो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
1: चलो शिष्यों, हम यरूशलेम में ठहर कर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए बाट देखेंगे।
2: हाँ हाँ, चलो हम जाएंगे।
3: इस प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण हो जाता है। जब वे पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे।
1: चलो हम सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करेंगे।
3: प्रभु की अंतिम आज्ञा के अनुसार सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु के शिष्यों ने कई कलीसियाओं की स्थापना की और आज तक यही सेवा प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं।
1: आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेमी सलाम। जय यीशु।
2: जय यीशु।
1: मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस सभा में आए हैं। आप सबों का मैं इस सभा में स्वागत करता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।

0: अब कलीसिया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैं आपको यीशु के दूसरे आगमन के विषय पर संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या आप दूसरे आगमन के विषय में जानना चाहते हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरा और फिर जी भी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो दूसरे आगमन के समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिपल मेरे पास है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने आने वाला है और वो हमें बादलों में उसके साथ उठा लेगा और हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्र करो ताकि आपके आगमन में हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
1: इस प्रस्तुति में हम देखेंगे दो मित्र शराब पीकर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। रास्ते में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक ने मन फिराया और दूसरा मजाक किया और नहीं मन फिराया।
2: हे मेरे दोस्त सहेश, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मेरे को मिल गए, मुझे बहुत आनंद हुआ। चलो थोड़ा पी लेते हैं।
3: हाँ हाँ लाओ, अभी तो पीने का समय है, बहुत मजा आएगा, लाओ थोड़ा पी लेते हैं।
2: अरे दोस्त, अरे पीने से बहुत मजा आ रहा है।
3: हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है।
2: ए मेरे दोस्त, चल गाड़ी में बैठ और भी मौज मस्ती करेंगे। हा हा हा।
3: हाँ चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हा हा हा हा
2: हा हा।

0: अरे भाई, इतना तेज क्यों जा रहे हो?
1: अरे तेरे को क्या करना है? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या?
0: ओहो, लगता है तुम दोनों शराब पिए हुए हो। ऐसा मत करो भाई।
2: तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तुम यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं उन्हीं को लेने के लिए यीशु आएगा, इसलिए मन फिराओ।
3: 2000 वर्षों से तुम्हारे लोग यही कहते आए हैं, अभी तक तुम्हारा यीशु कहाँ आया? बोलो। अरे छोड़ो ये सारी कहानी, चल दोस्त, हम चलते हैं।
2: अरे मेरे दोस्त महेश, थोड़ा तो रुको। हे सेवक साहब, आपकी बातें अच्छी लगी है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह पाप है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत बार इस आदत को छोड़ना चाहा, पर मुझसे नहीं हुआ। हे प्रभु के दास, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाना चाहता हूँ।
0: चिंता मत करो भाई, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए।
2: ठीक है।
0: हे प्रभु यीशु,
2: हे प्रभु यीशु,
0: मुझ पापी पर दया कर,
2: मुझ पापी पर दया कर,
0: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
2: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
0: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए,
2: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए।
0: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ,
2: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
0: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
2: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
0: यीशु मसीह के नाम में,
2: यीशु मसीह के नाम में।
0: आमेन,
2: आमेन। अरे अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सारा बोझ निकल गया है, मेरी सारी बुरी आदतें निकल गई है, मेरे दिल में यीशु आ गया है, मुझे नया जीवन मिल गया है। धन्यवाद सेवक साहब।
4: अरे दोस्त, तेरे को आना है कि नहीं आना है? मेरा टाइम हो गया है, चल गाड़ी में बैठ जा, और कितनी बातें करेगा, चल बैठ।
2: अरे दोस्त महेश, गाड़ी देख कर चलाओ।
4: अरे यहाँ जगह कितना अच्छा लग रहा है, हमने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है, लगता है यही स्वर्ग है। चलो हम उसमें प्रवेश करेंगे।
5: तुम दोनों यहीं ठहरो, पहले अपना अपना नाम बताओ। अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
2: मेरा नाम साहेश है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
5: हे साहेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
6: हे साहेश, आपने अपने पापों से माफी मांगी एवं मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया।

0: मेरा नाम महेश है, जल्दी ढूंढो, मेरा नाम उस पुस्तक में है क्या?
1: महेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: ऐसे कैसा हो सकता है? हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक साथ में दारू पीते थे, फिर उसको कैसे स्वर्ग मिल गया?
2: हे महेश, इस साहेश ने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया है, इसलिए उसको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल गया है। लेकिन तुमने मेरे सुसमाचार पर मजाक किया और विश्वास नहीं किया एवं अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराया है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो।
3: हे महेश, जब दुनिया में था मेरा शराब कैसा लगा? अच्छा लगा था ना, शराब पीते पीते उठ रहा था ना। अभी इधर आओ आओ, तुझे आग में धड़ पाएंगे।
4: अरे ये जगह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, मेरे विचार से अपार है, मेरा दिल आनंद से भरपूर हो गया है। हे स्वर्गदूत, मैं पास्टर पत्रस हूँ, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है?
1: हे सेवक पत्रस, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं।
2: हे मेरे विश्वासयोग्य दास, तुम मेरे काम में उत्तम रहे हैं और आप मेरी इच्छा के अनुसार चले हैं और बहुतों को सुसमाचार सुनाया और उनको मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।
4: मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: अब हम देखेंगे कि एक कलिसिया के दो वडिल रास्ते में मिलते हैं। एक अपने सेवक के विरुद्ध बात करता है और दूसरा उसको प्रभु के वचन से समझाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखिए।
1: अरे करमचंद भाई, जय मसीह की, कैसे हो?
2: जय मसीह की, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
1: अच्छा हूँ। अरे करमचंद भाई वडिल, आपको पिछले एक महीने से मैं कलिशा में नहीं देखा। क्यों, आप कलिशा में आजकल नहीं आते हो? क्यों, क्या हुआ?
2: देखो, मैं अच्छा कमाता हूँ और एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। कलिशा में सब विश्वासों से मैं ही अधिक दान देने वाला हूँ, फिर भी यह पास्टर मेरी बात को नहीं मानता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।
1: करमचंद भाई, आप पास्टर साहब से इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या हुआ बताओ?
2: अपना वडिल टोनू है ना, वह वडिल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पास्टर साहब को बोला उनके घर प्रार्थना करने के लिए मत जाना, लेकिन पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए कलिसिया में आना छोड़ दिया।
1: अरे वडिल करमचंद, ध्यान से सुनो, हमारा सेवक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक भी किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है। यीशु प्रभु ने हमको एक वडिल के रूप में कलीसिया में रखा है, तो हमें सेवक को दुख नहीं देना है, बल्कि उसको सेवा में साथ देना है, ताकि वो और भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके।
2: अरे वडिल धर्मचंद, आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे छोड़कर वह सेवक कैसा सेवा करता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देख लूंगा।
1: करमचंद ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर डर रखो, परमेश्वर के सेवकों का आदर करो, ऐसा घमंड मत करो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसीलिए सावधान रहो।
2: ओ वडिल, मैं सब जानता हूँ, तू तेरा काम कर, जा।
1: कितना अच्छा लग रहा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं स्वर्ग आ जाऊंगा।
3: वडिल धर्मचंद और करमचंद हाजिर हो। वडिल धर्मचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे वडिल धर्मचंद, आप जब दुनिया में थे, आप आपके सेवक और कलिशा के लिए उत्तम रहा और सेवक के साथ रहकर बहुत सेवा किया है और दान के विषय में उत्तम रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो।
1: धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, होसना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है।

0: हे स्वर्गदूत, मैं भी सेवक और कलीसिया के लिए बहुत दान दिया है और हमारे कलीसिया में सबसे बड़ा वडिल मैं ही हूँ। मुझे भी सम्मान के साथ स्वर्ग में जाने दो।
1: है वडिल करमचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे भी स्वर्ग में जाने दो।
2: हे वडिल करमचंद, आप दुनिया में रहते समय दूसरों को तुच्छ जाना और अपने सेवक को मान नहीं दिया है और घमंड के साथ आपने अपना जीवन जिए, इसलिए आप इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए अग्नि ज्वाला तैयार करके रखा है, उस नरक में जाओ।
3: ओ करमचंद, तुम्हारे लिए उधर रास्ता बंद है, बंद। इधर आओ, इधर है आग, अभी से यही होगा तुम्हारा बाग।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।

0: इस प्रस्तुति में दो प्रभु के सेवकों एंड्रयू और मैथ्यू के विषय में बता रहे हैं, जिसमें एंड्रयू एक बहुत पैसों वाला धोखाबाज सेवक है जो किस प्रकार चालाकी से प्रभु की सेवा करता है, तथा दूसरा सेवक मैथ्यू ईमानदारी और उत्तम के साथ बिना किसी लालच के साथ सेवा करता है। तो आइए देखिए।
1: पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड।
2: जय मसीह की। प्रभु के दास, आप कैसे हो?
1: अरे, आपका मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये बताओ कि आपकी कलीसिया और सेवकाई कैसे चल रही है?
2: प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है।
1: लेकिन आप तो साधारण लग रहे हो। मेरे समान ठाट बाट से रहो और पैसे कमाओ।
2: मैं प्रभु के द्वारा दी गई संस्था के साथ ईमानदारी से ही सेवा कर रहा हूँ।
1: ये संस्थाओं की बात छोड़ो, अगर संस्थाओं से पैसे कमाना है तो मेरे साथ चलो, बहुत ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको 4-5 संस्थाओं में नाम जुड़वा देता हूँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर देखो, 2-व्हीलर 4-व्हीलर मकान सब खरीद सकते हैं। एक ही संस्था को पकड़ के रखने से आपको जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा।
2: लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता से चुना है।
1: आपकी संस्था में रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही और मीटिंगों का आयोजन भी करना पड़ता है क्या?
2: हाँ, हमें मासिक रिपोर्ट देनी पड़ती है तथा संस्था के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है।
1: इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। मेरी कलीसिया में 20-25 लोग हैं, फिर भी 100-150 ऐसा रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही झूठा रिपोर्ट देकर बहुत पैसे कमाया हूँ, कोई नहीं पूछता। अब आपकी इच्छा।
2: नहीं नहीं, मैं दुनिया की धन दौलत के लिए मेरे परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बुलाने वाला प्रभु सच्चा है और सचमुच में मुझे आशीष करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। सुनो सेवक, वचन में लिखा है कि दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसा यीशु ने बताया है।
1: तू तो बदलेगा नहीं, छोड़ दो, चलो फिर मिलेंगे।
2: आप तो एक ही दिन में धनवान बनने के लिए बताते हो, लेकिन वह नहीं टिकेगा, परंतु सीढ़ी के एक एक कदम बढ़ने से ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और वही टिकेगा। चलो मिलेंगे। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम मैथ्यू है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
3: हाँ मैथ्यू, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: मेरा उत्तम और प्रिय विश्वास योग्य सेवक मैथ्यू, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है, प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

0: मेरा नाम एंड्रयू है, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में जरूर होगा।
1: हे एंड्रयू, आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं है।
0: मैं तो दौड़ दौड़ कर बहुत सेवा किया, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बराबर देखो, मेरा नाम है एंड्रयू।
1: मैंने पूरा ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे एंड्रयू, तुमने मेरे नाम पर धन दौलत कमाया है, ऐश आराम किया है और उत्तम नहीं रहा, इसलिए तुम स्वर्ग में

0: प्रवेश नहीं करोगे उसे नरक में फेंक दिया जाए।
1: हे एंड्रयो, तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है। तूने लोगों को धोखा देकर सारी वस्तु को खरीदा ना, उसी वस्तु से मैं तुझको खरीद लिया। मैंने तुझको खरीद लिया। आवो आवो मेरे राज्य में, आवो आवो एंड्रयो, आवो आवो।
2: ओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना। वहाँ नहीं आना, वो मैं सेवा करने वाला आदमी, वहाँ तो बहुत पीड़िया है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे खा ले जा रहे, मैं नहीं आऊंगा।
3: इस प्रस्तुति में हम बता रहे हैं कि मसीही जीवन में प्रभु को दशमांश देना कितना अवश्य है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी प्रभु के लिए दशमांश देने के विषय में क्या चर्चा करते हैं।
4: रमतुड़ी, ए रमतुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ। मुझे मेरी कंपनी से 10,000 रुपये पेमेंट मिल गया है।
5: अच्छी बात है साहिब जी, मैं इसके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा खर्च है। इसलिए आप मेरे हाथ में दे दो, जो कुछ खरीदना चाहती हूँ सारी वस्तु खरीद लूँगी। लाओ लाओ मुझे दे दो।
4: ऐसा मत बोलो, पहला हम पेमेंट को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर उसमें से दशमांश निकाल कर रख देंगे, फिर सारा खर्च के लिए उपयोग करेंगे।
5: नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा खर्च है, 10,000 से अधिक होगा, इसलिए इस महीने दशमांश हम नहीं देंगे। इससे क्या हो जाएगा, अरे देना हो तो 50-100 रुपया दे दो।
4: ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उस आशीष में से हम परमेश्वर को दशमांश देना अवश्य है। यह बाइबल में एक नियम है। सुन, बाइबल हमें क्या बताती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं में से उसने दशमांश निकाल कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। अगर उसी प्रकार हम अपनी सारी वस्तुओं में से परमेश्वर को दशमांश देंगे, तो परमेश्वर हमें भी जरूर अब्राहम के जैसे आशीष देगा और धनी बनाएगा। इस नियम को पालन करने से परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रहेगी।
5: लो पकड़ो ये तुम्हारा पेमेंट, मैं इस दशमांश के बाद में तेरे साथ शामिल नहीं हूँ। तू अपनी इच्छा से कुछ भी करो, लो।
4: चलो इस पेमेंट में से जो भी दशमांश निकलता है बाइबल में अलग से रख देता हूँ।
5: ओहो, बाइबल में दशमांश रख रहे, ठीक है मैं बाद में ले लेती हूँ।

0: सब्जी सब्जी देखो, ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है।
1: यही स्वर्ग है। उधर देखो, दो स्वर्गदूत है और एक के पास जीवन की पुस्तक है। चलो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हे स्वर्गदूत, हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है क्या? देखो देखो।
0: उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपना नाम तो होगा ही होगा।
2: हे रोशन, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे रोशन, आपने मुझसे प्रेम किया है और दशमांश देने में उत्तम रहे हैं और इसके द्वारा मुझे मान दिया है, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: रुको, मुझे भी साथ में लेके जाओ।
1: रुको रंथुड़ी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रंथुड़ी, आपने आपके पति की बात नहीं मानी और मेरा डर नहीं रखा और दशमांश के विषय में तूने धोखा दिया है और मेरे भाग को आपने चुरा भी लिया है, इसलिए तुम नरक का भागी होगी। लोभी को कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, जाओ नरक में।
0: अरे अरे, ये काले लोग कहाँ से आ गए हैं? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचा लो।
3: ये रंथुड़ी, आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है, इधर है इधर। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, बराबर पकड़ो उसको, हमारे राज्य में लेके आओ।
0: मुझे मत ले जाओ, नहीं आना है, मुझे छोड़ दो।
4: अब हम एक सेवक के बारे में देखेंगे कि जिसके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है और बाद में उसके मन में घमंड आ जाता है और अपने नाम की बड़ाई के लिए सेवा करने लग जाता है, तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा होता है।
5: ओ सेविका, आज मैं बहुत खुशी में हूँ।
6: जी बोलिए, क्या हुआ है?
5: देखो, आज मेरी प्रार्थना से बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है और सारे भूत निकल गए, बहुत लोग छुटकारा पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अभी तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, मेरा नाम तो अब फेमस हो जाएगा।
6: अच्छी बात है, ये सारे काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु की महिमा के लिए किए हैं। तो आइए एक मिनट मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें।
5: हेलो, कौन बात कर रहे हो?
7: सेवक साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति मरने की स्थिति पर है, आप जल्दी आइए और प्रार्थना कीजिए। हमने सुना है कि आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत चमत्कार होता है, इसलिए हम आपको फोन किया है।
5: ठीक है, मैं 10 मिनट में अभी वहाँ पहुँचता हूँ।
6: सेवक साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा समय रुको, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है तो हम मिलकर प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें।
5: नहीं नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे जल्दी जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम होता है, तुम भी अपनी नजरों से देख तो तुम्हें भी पता चलेगा।
6: नहीं, हम नहीं जाएंगे, थोड़ा रुको। मेरे मन में ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि अभी मत जाओ।
5: नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरा मुकुट तो तैयार होगा। वाह वाह वाह, मुझे स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत भी खड़े हैं। हे स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक आया हूँ, मेरा मुकुट मुझे जल्दी पहनाओ और स्वर्ग में मुझे जाने दो, मैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहूँगा।
1: हे सेवक जॉन, आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
5: क्या बोल रहे हो, बराबर देखना, मैं तो एक बड़ा सेवक हूँ, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगाई पाया है और शैतान से छुटकारा भी पाए हैं, मेरा नाम तो जरूर होगा, देखो।
2: मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे जान, हम तुझे देंगे सम्मान, तूने तो मुझे बहाया दाना, सेवा सेवा बोलते बोलते अब आंधु में मेरे पास आ गया। अभी से तू मेरी
5: हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जाओ।
3: अभी नागी चलने का सेवक जी, समय पूरा हो गया। आवो, आवो।
5: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
6: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम एस्तर है। मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है एस्तर, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे एस्तर, तू हमेशा मेरे चरणों में बैठकर मेरी महिमा करती थी और प्रार्थना करने वाली थी। आपके जीवन में सभी बातों में आपने मुझे पहले स्थान में रखा, इसलिए तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे।
6: हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।

0: अरे प्रवीण, अभी तो आया, वापस कहाँ जा रहा बेटा?
1: हाँ माँ, मैं मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ।
0: ये प्रवीण तो अभी अभी घर में आया और अभी वापस से निकल गया, बस उसके फ्रेंडों के साथ घूमता ही रहता है। अरे प्रवीण, तेरा मोबाइल छूट गया बेटा। ये प्रीति कौन है?
1: आपने क्यों देखा मेरा फोन?
0: अरे ये प्रीति कौन है? इसमें प्रीति का फोन आया।
1: आपको क्या काम है मेरा फोन देखने का?
0: प्रवीण, ओ प्रवीण, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं करने का बेटा, आप तो यीशु मसीह का बेटा है, अच्छा जीवन जीना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। बाइबिल में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इतना गुस्सा नहीं करना है, आपका जीवन में आप नमूना बनो।
1: ओ माँ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है।

0: हाँ प्रवीण बोलिए।
1: हाँ प्रीति। अरे हमारे प्यार के बारे में मम्मी को पता लग गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: ऐसा है क्या? एक मिनट।
1: हेलो। हाँ प्रीति।
2: किससे बात कर रही हो बेटा?
1: मेरी जान, क्या हुआ?
2: हेलो।
1: अरे यार फोन कट गया।
2: किससे बात कर रही हो बेटा इस आधी रात को?
0: पापा वो लड़का तो मेरा फ्रेंड है।
2: देखो बेटा ये गलत है, आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना। देखो बाइबल में लिखा है इस जवानी की उम्र में आपका जीवन बड़ी सावधानी से चलना होगा, किसी बुरे लड़के के साथ मित्रता नहीं रखना चाहिए और अपने चाल चलन में पवित्र और नमूना जीवन जीना चाहिए। समझा बेटी?

0: हेलो।
1: हाँ प्रवीण, मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब पता चल गया, अब हम क्या करेंगे?
0: सुन मेरी बात सुन, हम कल सुबह 5 बजे की ट्रेन में बैठकर भाग जाएंगे।
1: पर मेरे पापा तो अकेले रह जाएंगे।
0: चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको प्राणी के समान रखूंगा। हम लव मैरिज करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
1: ठीक है प्रवीण, मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। आई लव यू प्रवीण।
0: आई लव यू टू प्रीति। और भूलना मत, सुबह 5 बजे तैयार रहना, ठीक है?

0: प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो।
1: अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खाना बना के दूँ? पहले वो बताओ कि आपको नौकरी मिली या नहीं।
0: चलो तो आज मैं फिर नौकरी ढूंढने जाता हूँ।
1: मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार बोला था, अपनी जवानी के समय में तेरे चाल चलन को संभालना, लेकिन मैंने मेरे पिताजी का नहीं माना। मेरा जीवन पूरा आज बर्बाद हो गया है, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये जहर पीकर मैं जाती हूँ।

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या?
1: आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे प्रीति, तूने अपनी जवानी के समय मुझे स्मरण नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार चली है और मेरा दिया हुआ अमूल्य जीवन को तूने नहीं संभाला और आत्महत्या किया और तेरे गलत निर्णय लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम नरक में जाओ।
3: हे प्रीति, आवो आवो, तुम जागर फिकर आत्महत्या किया ना, आवो आवो। तुम जैसे आत्महत्या करने वाले नरक में ही आना पड़ेगा, आवो आवो।
4: प्रीति, मुझे नौकरी मिल गई। अरे प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? उठो उठो प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई प्रीति?
5: इस प्रकार से प्रवीण पागल हो जाता है और घूमते फिरते आखिर में अपने घर पर पहुंचता है।

0: बेटा प्रवीण, कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया तेरे को? अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से है? कहाँ गया था बेटा? कहाँ गया था बेटा? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तेरा ये हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। पाशु साहब, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप जहाँ भी कहिए जल्दी आइए। पाशु साहब,
1: बहन जय शु।
0: आइए पाशु साहब, आइए, मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पाशु साहब आइए, उसके लिए प्रार्थना करिए।
1: ठीक है बहन, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे प्रवीण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा।

0: अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। मैंने अपने जवानी के समय में अपनी इच्छा के अनुसार चला, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं पागल बन गया था। अब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे नया जीवन दिया। मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। अब से लेकर यीशु के लिए ही जीऊंगा। धन्यवाद पास्टर साहब। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे प्रवीण, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे प्रवीण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और तू मेरे से दूर हो गया था, परंतु तूने अपने पापों से पश्चाताप किया और मन फिराया है, इसलिए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो।
0: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
3: आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में। यीशु मसीह का गुप्त आगमन की घड़ी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। तो हम देखेंगे कि उस गुप्त आगमन में कौन उठा लिया जाता है और कौन रह जाता है। दो औरतें चक्की में अनाज पीसते हैं। गुप्त आगमन के समय में उनमें से एक उठा लिया जाती है और दूसरा रह जाती है।
4: ओ बहन, ओ पड़ोसी से मैं बात नहीं करती है, वो कितना गुस्सा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
5: मेरी बहन, तुम ऐसा मत बोलो, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, वह परमेश्वर का आज्ञा है।
4: छोड़ो बहन, मेरे से ये हो नहीं सकता है। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? हे मेरे पिता, मैंने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया है, मैंने पाप कर दिया है, इसलिए मैं रह गई हूँ। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शर्मी है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है शर्मी, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शर्मी, आपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
6: हे शर्मी, वो आओ नरक में, आओ इधर, होगी बहुत गर्मी।
4: मुझे नरक में मत भेजो।

0: Vai, vai. Vai, vai.
1: धीरे हल चलाओ, मैं चल नहीं सकती।
0: ठीक है। मुर्गो मुर्गो गाड़ी देख। आजकल आप प्रार्थना करती है क्या?
1: मैं सब काम काज में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता।
0: मैं तो हमेशा काम करने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बिना कोई काम काज नहीं करता हूँ।
1: अरे मेरा घर वाला इधर ही था, कहाँ गया? मैं बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं करती थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या हो?

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम रेणुका है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे रेणुका, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रेणुका, आप अपने कामों में व्यस्त रही और प्रार्थना नहीं किया और मुझे भी भूल गई, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे रेणुका, नरक में स्वागत है। तुमने मेरा राज को चुना है। ये था रागो आनंद का।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नरक में।

0: क्या करूँ, बहुत बोर हो गया यार, टाइम ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा मोबाइल में टाइम निकालता हूँ। वाह, अरे बहुत बढ़िया वीडियो है यार। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा वीडियो है यार। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। अरे 6 बज गया, अब मोबाइल चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला। ये मनीष कहाँ गया, अभी तक आया नहीं यार, इसको फोन लगाना पड़ेगा यार। अरे फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। चलो मनीष आता है तब तक और मोबाइल चला लेता हूँ। अरे मनीष तू अभी आ रहा है, कब से तेरे को फोन लगा रहा, फोन भी नहीं लग रहा तेरा, कितनी देर हो गई तेरे को, तू सुबह से अभी आ रहा है, कहाँ गया था इतनी देर, अब जा क्या रहा है तू, बहुत टाइम हो गया तेरे को।
1: हे शैलेश, मैं तो एक मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के बारे में संदेश सुना है और मेरा जीवन बदल गया है। देख दोस्त, मैंने प्रभु से चर्च में खड़े होकर इस मोबाइल चलाने की मेरी नींद और मेरा स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो गया, उसके बारे में प्रभु से मैंने माफी मांगी और छोड़ भी दिया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे दोस्त, तुम भी इस खराब आदत को छोड़ दो और प्रभु के पास लौटाओ। देखो इस मोबाइल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और पबजी चलाने से हमारा समय कितना बिगड़ता है, आज भी देखो समय व्यर्थ हो गया। इस कारण हम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते, नींद भी नहीं आती, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में समय दे नहीं पाते। इसलिए तुम भी मन फिराओ और सब बातों को छोड़ दो, प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: अरे तेरी सारी कहानियां छोड़ना, देख मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तू खेलेगा कि नहीं, ये जवानी का टाइम तो मौज मस्ती करने का है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे बूढ़े होने के बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है यार। तू जा।

0: अरे मनीष, मनीष ये क्या हो रहा है? मेरा मनीष कहाँ गया? मनीष मेरा दोस्त कहाँ गया? मनीष ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मनीष कहाँ गया? मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे शैलेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शैलेश, आपने अपने जीवन में ज्यादा समय मोबाइल में बिताया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तूने मेरे वचन सुनकर स्वीकार नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: अबो शैलेश, मुझे मालूम है कि तुम इधर ही आने वाला है। YouTube, WhatsApp, TikTok, PUBG, इसमें ज्यादा समय बिताया था ना, मैं हूँ उसका मालिक। आवो आवो, अब मेरे साथ समय बिताओ। आवो आवो।
4: अब हम 10 कुवारियों के बारे में देखेंगे।
5: चलो साथियों, सभी अपने अपने कुपियों में तेल भर लो,
6: साथ में मसाले भी ले लो,
7: क्योंकि हमें हमारे दूल्हे से भेंट करने चलना है।
8: हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियाँ कर ली है।
6: अरे अरे, देखो उन 5 औरतों को पहले से ही इतनी तैयारी कर रही है।
8: अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देरी है और ये क्या कर रही है?
6: सुनो, मसाले ले लो, कुपियों में तेल नहीं हो तो भी चलेगा, बाद में तेल भर लेंगे।
8: हाँ हाँ, सही बात है, चलो।
9: बहुत देर हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं आया, अब हम सो जाते हैं।
10: हाँ हाँ, हम सो जाते हैं।
4: जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब मूर्ख कुवारियां तेल मांगने लगी, लेकिन जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आइए देखिए।
11: देखो,

0: उठो उठो, जल्दी उठो, हमारा दूल्हा आ पहुंचा है, जल्दी करो।
1: अपने अपने मसाले दिया जलाकर चलो।
2: हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो,
3: चलो बेंट करने चले।
4: हाँ।

0: अरे सभी जाग उठो, दूल्हा आ गया है।
1: मेरी तो मशाल नहीं जल रही है, अब मैं क्या करूं?
0: हमारे मसाले बुझ रहे हैं।
2: मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं?
1: अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो।
3: हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर ले लो।
4: मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।

0: अरे दरवाजा तो बंद हो गया है, जल्दी दौड़ो, हमें भी दूल्हे से भेंट करनी है।
1: हम तैयार नहीं थे, अब देखो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया।
2: हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, खोल दो।
3: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।

0: अब हम एक धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में नाटक देखेंगे।
1: मेरा नाम धनवान धनजी है, सारे लोग मुझे धनवान धनजी के नाम से जानते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं तो लोगों को पसीना आ जाता है। मेरे पास बहुत सारा धन, रुपये, बंगले, गाड़ियां, सोना और चांदी है, और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत धन है। ओह, ऐश करूंगा मैं। आओ मेरे भाइयों, आइए हम ऐश करें, खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। ऐश की जिंदगी बड़े मौज की जिंदगी। ए मेरे पांच भाइयों, इधर आओ, आज हम भोजन का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, चलो मेरे साथ। अरे ओ नौकर, इधर आ, आज मेरी मेज में क्या क्या परोसा जाएगा, जल्दी करके खाने लगा।
2: सेठ जी, आज आपके लिए 10 प्रकार के भोजन और पकवान बनाए गए हैं, आप चलकर भोजन का आनंद उठाइए सेठ जी।
1: ये ले मेरे छोटे भाई, ये पी और ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत धन है। ओ बड़े भाई, ये तू भी ले, ये खा, जो भी खाना खा ले, ऐश कर। बड़ा मजा आ रहा है। अरे ओ नौकर, जा और चिकन तंदूरी, लेग पीस, मटन फ्राई, मलाई कोफ्ता, बिरयानी लेकर जल्दी आ, बड़ा मजा आ रहा आज खाने में मेरे भाइयों के साथ।
2: हाँ जी, अभी लेके आता हूँ।
3: ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बचा खुचा खाना दे दो, कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ। सेठ जी, कुछ दया करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ।
1: अरे लाजर, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। मेरे तो बहुत अच्छे दिन हो गए हैं और तेरे ये बुरे दिन।
3: प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तूने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी तू मेरी मदद और सहायता करना।
1: वाह, मजा आ गया आज तो। चलो मेरे भाइयों, अपने अपने घर पे जाएं, अब मैं ऐश आराम करने जा रहा हूँ।
3: हे मेरे सर के पिता, मुझ पर दया करना, मैं तेरा बेटा हूँ, और मेरे गुनाहों को माफ करना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझ लाजर को तू ग्रहण करना और अपने राज्य में ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
0: कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार के कारण मर जाता है और धनवान की भी मृत्यु हो जाती है।
1: ओ, ओ, ओ, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मैं मरने वाला हूँ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ओ, ओ, ए, ओ,

0: हे लाजर, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसलिए पिता के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो।
1: हे लाजर, आपने मेरे पर बहुत प्रेम रखकर, मेरा डर रखकर मेरे लिए दुख उठाया है, इसलिए आपके लिए एक विशेष स्थान रखा है कि आप अब्राहम की गोद में रहो।
2: हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्मरण किया और अब्राहम की गोद

0: हे धनवान धनजी, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे धनवान धनजी भाई, आपने अपने लिए जिया, दुनिया में मौज किया है, मेरा भय नहीं माना है और किसी पर भी दया नहीं की है, इसलिए आप नरक में जाओ।
2: ए धनवान धनजी, मेरा प्यारा सर जी, आओ आओ, बनाऊंगा तेरी सब्जी। रोज चिकन फ्राई खाता था ना, इधर आओ धनजी, तेरी फ्राई कर देंगे।
3: अरे अरे, तू मुझे काले जा रहे हो, काले जा रहा हूँ, मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मुझे काहे नरक में ले जा रहा हो, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे हटो हटो शैतानो हटो। हाँ अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे मुझे नरक में ले जा रहे हैं ये शैतान, खींच के ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ।
4: हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है।
3: हे पिता अब्राहम, अब मैं क्या करूं, मैं आग में जल रहा हूं, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे बचाओ मुझे बचा लो।
4: इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
3: तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए।
4: उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
3: हे मेरे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे।
4: जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।

मसीह में प्रिय, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। ईश्वर हमें हर युग में मिलते हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलने आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 19 पद 42-43 और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हमें उस समय को जानना होगा जब प्रभु हमसे मिलेंगे। जब हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कब मिलेंगे, तब परमेश्वर शत्रुओं को हमारे विरुद्ध उठने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उन दिनों का लाभ उठाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलेंगे। हमें जानना चाहिए कि इन दिनों हमारी शांति के लिए क्या सही है। कैसी शांति? प्रभु के साथ शांति से रहो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर में शांति ढूंढनी चाहिए, उसके साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद 30, मैं और पिता एक हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने कहा एक यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, हमें भी ईश्वर से जुड़कर शांति से रहना चाहिए। हमें शांति कब मिलेगी? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसलिए इस महीने हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। आइए पहले देखें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 9, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम धर्मी बन जाते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, उन्हें यीशु के खून से धोते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं, हम सब उससे जुड़ते हैं। भजनहार कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमें अपने पापों को बिना छिपाए उसके सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अपराधों के बारे में प्रभु को बताना चाहिए। शास्त्र कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 7-9, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु के खून से धोए जाते हैं और धर्मी बनते हैं तो हमें ईश्वर से शांति मिलती है, न तो खतरे और न ही दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं। आइए दूसरे पर नजर डालें। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 पद 27, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे शब्दों से धर्मी या दोषी आंका जाएगा। शास्त्र कहता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, तो बस बात मत करो। सभोपदेशक इसे दोहराता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इसलिए हमें अपने बोले हुए शब्दों से सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने

आता है। इसलिए हमें हर दिन अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बेकार की बातचीत से दूर रहे। भजनहार प्रार्थना करता है। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 141 पद 3। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, तब हम धर्मी ठहरेंगे। यशायाह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 50 पद 8, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। इसलिए अपने मुंह से पाप न करो। भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 29 पद 1, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। यदि हम भी अपने मुंह पर पहरा दें तो धर्मी ठहरेंगे। हमें प्रभु के साथ शांति मिलेगी, हम शत्रु के हाथ से बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, एक कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें धर्मी बनाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा और धर्मी बनाएगा। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें धर्मी बनाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 32 पद 15-16, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करता है तो धार्मिकता हमारे भीतर निवास करती है। इसलिए उत्सुकता से पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यीशु ने कहा, लूका की पुस्तक अध्याय 11 पद 3, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इच्छा के साथ पवित्र आत्मा मांगे और प्राप्त करें, वह तुम्हें धर्मी बनाएगा। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है। हम एकजुट होकर दुश्मन के हमलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जैसे ही यह कहता है कि भेंट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भेज दो। प्रभु के मंत्रालयों को दें, अपने चर्च को दें जिससे आप संबंधित हैं, और मिशनरियों को दें। अपने चरवाहों को मत भूलो जो तुम्हें प्रभु तक ले जाते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। हमें प्रभु और उनके मंत्रालय को प्रसाद देना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या प्रभु हमारी भेंटों की गवाही दे सकते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 2, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अपने चर्च के माध्यम से प्रचार करने के लिए भेंट दें। यदि आप स्वयं भेंट नहीं देंगे तो कौन देगा? बहुत सारे जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वहां नौकर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सेवा करने के साधनों का अभाव है। खुशी से अपने उपहार दो, उन्हें मजबूत करो, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। हमारे देश में प्रभु के बहुत से सेवक हैं जो बिना किसी दिखावे के प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रसाद दो, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप उनके हाथ मजबूत करें। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 7, हर एक जन जैसा मन में थाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों के विषय में गवाही दी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई।

क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी। हम सभी खतरों से सुरक्षित रहें। प्रभु ने अपनी बाइबल में धर्मी बनने के कई तरीके लिखे हैं। हमने इस महीने केवल अपने फायदे के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दिया। और भी बहुत कुछ है। क्या आप स्वयं को धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित करेंगे? ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।

मसीह में भाइयों एवं बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं हूं महिमा और मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द इटर्नल लव ऑफ गॉड पर। मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूं जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। बाइबल में यिर्मयाह रची सुसमाचार 31 अध्याय का 3 पद हमें बताती है कि परमेश्वर हम सबों से अनंत प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम धनी हो या कंगाल, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के महानता वाले प्रेम की कहानी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देखेंगे।

रेनू गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी कि मैं रेडी होके तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ कम ऑन यार, जब देखो तो तुम्हारा प्रेयर मीटिंग जब देखो तो सामने आते रहता है। कोई नहीं, अच्छा बताओ कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। ओके फाइन, मैं तुम्हें 4 बजे छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। ओके ओके चलो फाइन, बाय।

0: देनू आप यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेंड को बुला के लाती हूँ।
1: लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
0: कहीं नहीं, मैं फ्रेंड को बुला के लाती हूँ।
1: हाँ ठीक है,
0: जल्दी बैठो, मैं जल्द आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ।
1: ओके फिर जल्दी आना।
0: ठीक है ठीक है।

0: अरे यार कितना टाइम हो गया है, मुझे शाम में प्रेयर में भी जाना है। चलो सूटी घर चलते हैं, चलो चलो। नहीं नहीं आज शाम में मुझे प्रेयर में जाना है, चलना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है।
1: नहीं
0: चलो चलो ठीक है।
2: आप प्रेयर में जाते हो?
0: जी मैं प्रेयर में जाती हूँ,
2: मैं भी आ सकता हूँ?
0: हाँ आप आना चाहते हैं प्रेयर में?
2: जी जी
0: हाँ, तो नहीं आप भी आ सकते हैं। चलो
2: एक्चुअली अपना नंबर दे दो क्या
0: नंबर?
3: कोई प्रॉब्लम नहीं है,
0: ओके ठीक है फिर ले लो, बाय,
2: थैंक यू।

यीशु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपके प्रेम को भूल गई थी यीशु, मैं संसार में प्रेम ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मरने का, अब कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं,

0: बेटी रुक जा, ऐसा मत कर। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। चाहे संसार के लोग तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार के लोग तुझे बेकार समझें, पर तू मेरे नजर में अभी भी अनमोल है। मैं तुझसे अभी भी बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ बेटी।
1: मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।

फिल्म में हमने देखा कैसे उस लड़की ने संसार से मोहब्बत की, संसार को प्राथमिकता दी, लेकिन फिर भी संसार ने उसे ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया, मसीह का प्रेम जो हम सबों को कभी अलग नहीं छोड़ता, जो हम सबों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संसार के लोग हमसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम जो हम सबों से निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में स्वार्थ रहित सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह केवल और केवल यीशु मसीह है। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।

एक पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वह उन्हें कैसे निगल सकता है? वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है? वह रास्ते ढूंढता फिरता है। हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 20। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा। इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में, उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंत एक उच्च दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति, आस्था और नैतिक आचरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता को विकसित करना चाहिए। यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5 पद 6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1 2 और 3। मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी गहराई और हमारे चर्चा के व्यापक संदर्भ में इसके महत्व को भलीभांति समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे आपको सभी आवश्यक पृष्ठभूमि और सहायक विवरण मिल सके, ताकि आप इस समय मैं जो समझा रहा हूँ उसकी मूल भावना को पूरी तरह समझ सकें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस विशेष जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और अंतर्निहित कर लें।
क्योंकि यही हमारे आगे की चर्चा की नींव है और आपको विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी न रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 3। और मैंने स्वर्ग के आकाश से एक अत्यंत गूंजदार और शक्तिशाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, एक ऐसी आवाज जो निस्संदेह तेज और स्पष्ट थी, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का ऐलान कर रही थी, जिसकी गूंज में अपार अधिकार और दिव्य उपस्थिति थी, जो ऐसे शब्दों को पहुंचा रही थी जिनका बहुत बड़ा महत्व और आध्यात्मिक भार था, जो सभी के सुनने और समझने के लिए थे। यह एक दिव्य क्षेत्र से आया हुआ ऐतिहासिक ऐलान था, एक घोषणा जो मेरी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंज उठी और जिसने तुरंत ध्यान और विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता, हम अंतिम क्षणों में हैं। प्रभु, एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरी भेड़े मेरी सुनती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु, यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु, कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु, शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, धन्यवाद। हमें ऐसी आंखें दो जो आपको देख सकें। पिता, हमें ऐसे कान दो जो आपकी आवाज सुन सकें। पिता, हमें यह आशीर्वाद दो कि हम आपको अपने प्रभु के रूप में सेवा कर सकें। चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु, उसे ठीक कर दो। आप हर कमजोरी को दूर कर देते हैं। जो लोग कर्ज में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करो कि वे अपना कर्ज चुका सके।
आप उन लोगों की कठिनाइयों को बदल देते हैं जो पीड़ा में हैं। आप हर समस्या को पलट देते हैं। प्रभु, आप हर चेहरे से हर आंसू पोंछ देते हैं। आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर देते हैं। आप पीड़ितों को मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है, और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे, जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसे चमत्कार करे जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करे, अद्भुत कार्य करे, बीमारियों को ठीक करे, रोगों का उपचार करे और कमजोरियों को दूर करे। हे प्रभु, आप टोनेटोटके के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो। आपका नाम महिमा मंडित हो, क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे पिता, हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए पिता। जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें पिता, हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्म ग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांधी। वह क्या है? दो इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की। प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 18 शब्द 6, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4, तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 13,
और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। युएल अध्याय 2, शब्द 16-17। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, युएल अध्याय 2, शब्द 18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, युएल अध्याय 2, शब्द 24-25-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं। यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता, वह एक खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 2, शब्द 25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे, आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9, शब्द 3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था और गुलाम यहूदी लोगों के लिए, प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9, शब्द 23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 36, शब्द 21-22-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक, उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है,
और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा, इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है, सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे, वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं, चाहे कुछ भी हो प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें? प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 शब्द 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है, यिर्मयाह अध्याय 32 शब्द 27, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है, वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सोली बेचा दे दिया, पापों को क्षमा करने शापों को दूर करने समीप आया मसीहा।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

बचा कर उसके नाम की महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। Yes, Lord। उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो। अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पौलुस कहते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7।
इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मां में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं, उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

महिमा दे प्रियो ताले बजा कर उसके नाम की महिमा करे आत्मा सच्चाई के साथ उसके आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं भाषा उसने पूछा नहीं, मन

मसीह में प्रिय, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशायाह अध्याय 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं, यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 14, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, 3 मलाकी अध्याय 3 शब्द 2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, 4 लूका अध्याय 12 शब्द 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, 4 दानियेल अध्याय 7 शब्द 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशायाह कहते हैं, 6 शब्द 6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशायाह के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे।
प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया। इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2, शब्द 1, 2, 3। जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 5, शब्द 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं याकूब अध्याय 1, शब्द 21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17, शब्द 10, 11, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो। जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते, इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं एक यूहन्ना अध्याय 2, शब्द 6, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है एक पत्रस अध्याय 2, शब्द 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला, हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है होशे अध्याय 9, शब्द 16, एप्रेम मारा हुआ है उनकी जड़ सूख गई उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम न हो और सूख न जाए। उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है।
प्रेरित पौलुस लिखते हैं कुलुसियों अध्याय 2 शब्द 6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं, तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है लूका अध्याय 23 श्लोक 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वही मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं यशायाह अध्याय 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है रोमियों अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है मैथ्यू अध्याय 8 श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित ना हो, यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है अय्यूब अध्याय 36 श्लोक 22, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 6, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है मत्ती अध्याय 4 श्लोक 23, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं। लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। केवल आस्था ही नहीं बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करे। शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सके। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है यशाया अध्याय 53 श्लोक 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती है। पवित्र शास्त्र कहता है नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 60 श्लोक 20 क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15
इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदि हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1, हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया, इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।

0: भविष्यवाणी के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और वह अपने 11 शिष्यों को अंतिम दर्शन एवं अंतिम आज्ञा देता है और उसका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो आइए देखिए।
1: यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की

0: हे गलीली पुरुषो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
1: चलो शिष्यों, हम यरूशलेम में ठहर कर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए बाट देखेंगे।
2: हाँ हाँ, चलो हम जाएंगे।
3: इस प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण हो जाता है। जब वे पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे।
1: चलो हम सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करेंगे।
3: प्रभु की अंतिम आज्ञा के अनुसार सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु के शिष्यों ने कई कलीसियाओं की स्थापना की और आज तक यही सेवा प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं।
1: आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेमी सलाम, जय यीशु।
2: जय यीशु।
1: मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस सभा में आए हैं। आप सबों का मैं इस सभा में स्वागत करता हूं। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।

0: अब कलीसिया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैं आपको यीशु के दूसरे आगमन के विषय पर संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या आप दूसरे आगमन के विषय में जानना चाहते हो?
1: हाँ, हाँ, जानना चाहते हैं।
0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरा और फिर जी भी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो दूसरे आगमन के समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिपल मेरे पास है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने आने वाला है और वो हमें बादलों में उसके साथ उठा लेगा और हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्र करो ताकि आपके आगमन में हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
2: इस प्रस्तुति में हम देखेंगे दो मित्र शराब पीकर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। रास्ते में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक ने मन फिराया और दूसरा मजाक किया और नहीं मन फिराया।
3: हे मेरे दोस्त सहेस, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मेरे को मिल गए, मुझे बहुत आनंद हुआ। चलो थोड़ा पी लेते हैं।
4: हाँ हाँ लाओ, अभी तो पीने का समय है, बहुत मजा आएगा, लाओ थोड़ा पी लेते हैं।
3: अरे दोस्त, अरे पीने से बहुत मजा आ रहा है।
4: हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है।
3: ए मेरे दोस्त, चल गाड़ी में बैठ और भी मौज मस्ती करेंगे। हा हा हा।
4: हाँ चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हा हा हा हा
3: हा हा।

0: अरे भाई, इतना तेज क्यों जा रहे हो?
1: अरे तेरे को क्या करना है? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या?
0: ओहो, लगता है तुम दोनों शराब पिए हुए हो। ऐसा मत करो भाई।
2: तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तुम यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं उन्हीं को लेने के लिए यीशु आएगा, इसलिए मन फिराओ।
3: 2000 वर्षों से तुम्हारे लोग यही कहते आए हैं, अभी तक तुम्हारा यीशु कहाँ आया? बोलो। अरे छोड़ो ये सारी कहानी, चल दोस्त, हम चलते हैं।
2: अरे मेरे दोस्त महेश, थोड़ा तो रुको। हे सेवक साहब, आपकी बातें अच्छी लगी है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह पाप है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत बार इस आदत को छोड़ना चाहा, पर मुझसे नहीं हुआ। हे प्रभु के दास, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाना चाहता हूँ।
0: चिंता मत करो भाई, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए।
2: ठीक है।
0: हे प्रभु यीशु,
2: हे प्रभु यीशु,
0: मुझ पापी पर दया कर,
2: मुझ पापी पर दया कर,
0: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
2: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
0: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए,
2: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए।
0: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ,
2: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
0: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
2: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
0: यीशु मसीह के नाम में,
2: यीशु मसीह के नाम में।
0: आमेन,
2: आमेन। अरे अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सारा बोझ निकल गया है, मेरी सारी बुरी आदतें निकल गई है, मेरे दिल में यीशु आ गया है, मुझे नया जीवन मिल गया है। धन्यवाद सेवक साहब।
4: अरे दोस्त, तेरे को आना है कि नहीं आना है? मेरा टाइम हो गया है, चल गाड़ी में बैठ जा, और कितनी बातें करेगा, चल बैठ।
2: अरे दोस्त महेश, गाड़ी देख कर चलाओ।
4: अरे यहाँ जगह कितना अच्छा लग रहा है, हमने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है, लगता है यही स्वर्ग है। चलो हम उसमें प्रवेश करेंगे।
5: तुम दोनों यहीं ठहरो, पहले अपना अपना नाम बताओ। अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
2: मेरा नाम साहेश है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
5: हे साहेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
6: हे साहेश, आपने अपने पापों से माफी मांगी एवं मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया।

0: मेरा नाम महेश है, जल्दी ढूंढो, मेरा नाम उस पुस्तक में है क्या?
1: महेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: ऐसे कैसा हो सकता है? हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक साथ में दारू पीते थे, फिर उसको कैसे स्वर्ग मिल गया?
2: हे महेश, इस साहेश ने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया है, इसलिए उसको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल गया है। लेकिन तुमने मेरे सुसमाचार पर मजाक किया और विश्वास नहीं किया एवं अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराया है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो।
3: हे महेश, जब दुनिया में था मेरा शराब कैसा लगा? अच्छा लगा था ना, शराब पीते पीते उठ रहा था ना। अभी इधर आओ आओ, तुझे आग में धड़ पाएंगे।
4: अरे ये जगह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, मेरे विचार से अपार है, मेरा दिल आनंद से भरपूर हो गया है। हे स्वर्गदूत, मैं पास्टर पत्रस हूँ, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है?
1: हे सेवक पत्रस, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं।
2: हे मेरे विश्वासयोग्य दास, तुम मेरे काम में उत्तम रहे हैं और आप मेरी इच्छा के अनुसार चले हैं और बहुतों को सुसमाचार सुनाया और उनको मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।
4: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: अब हम देखेंगे कि एक कलिसिया के दो वडिल रास्ते में मिलते हैं। एक अपने सेवक के विरुद्ध बात करता है और दूसरा उसको प्रभु के वचन से समझाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखिए।
1: अरे करमचंद भाई, जय मसीह की, कैसे हो?
2: जय मसीह की, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
1: अच्छा हूँ। अरे करमचंद भाई वडिल, आपको पिछले एक महीने से मैं कलिशा में नहीं देखा। क्यों, आप कलिशा में आजकल नहीं आते हो? क्यों, क्या हुआ?
2: देखो, मैं अच्छा कमाता हूँ और एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। कलिशा में सब विश्वासों से मैं ही अधिक दान देने वाला हूँ, फिर भी यह पास्टर मेरी बात को नहीं मानता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।
1: करमचंद भाई, आप पास्टर साहब से इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या हुआ बताओ?
2: अपना वडिल टोनू है ना, वह वडिल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पास्टर साहब को बोला उनके घर प्रार्थना करने के लिए मत जाना, लेकिन पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए कलिसिया में आना छोड़ दिया।
1: अरे वडिल करमचंद, ध्यान से सुनो, हमारा सेवक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक भी किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है। यीशु प्रभु ने हमको एक वडिल के रूप में कलीसिया में रखा है, तो हमें सेवक को दुख नहीं देना है, बल्कि उसको सेवा में साथ देना है, ताकि वो और भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके।
2: अरे वडिल धर्मचंद, आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे छोड़कर वह सेवक कैसा सेवा करता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देख लूंगा।
1: करमचंद ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर डर रखो, परमेश्वर के सेवकों का आदर करो, ऐसा घमंड मत करो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसीलिए सावधान रहो।
2: ओ वडिल, मैं सब जानता हूँ, तू तेरा काम कर, जा।
1: कितना अच्छा लग रहा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं स्वर्ग आ जाऊंगा।
3: वडिल धर्मचंद और करमचंद हाजिर हो। वडिल धर्मचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे वडिल धर्मचंद, आप जब दुनिया में थे, आप आपके सेवक और कलिशा के लिए उत्तम रहा और सेवक के साथ रहकर बहुत सेवा किया है और दान के विषय में उत्तम रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो।
1: धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, होसना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है।

0: हे स्वर्गदूत, मैं भी सेवक और कलीसिया के लिए बहुत दान दिया है और हमारे कलीसिया में सबसे बड़ा वडिल मैं ही हूँ। मुझे भी सम्मान के साथ स्वर्ग में जाने दो।
1: है वडिल करमचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे भी स्वर्ग में जाने दो।
2: हे वडिल करमचंद, आप दुनिया में रहते समय दूसरों को तुच्छ जाना और अपने सेवक को मान नहीं दिया है और घमंड के साथ आपने अपना जीवन जिए, इसलिए आप इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए अग्नि ज्वाला तैयार करके रखा है, उस नरक में जाओ।
3: ओ करमचंद, तुम्हारे लिए उधर रास्ता बंद है, बंद। इधर आओ, इधर है आग, अभी से यही होगा तुम्हारा बाल।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
4: इस प्रस्तुति में दो प्रभु के सेवकों एंड्रयू और मैथ्यू के विषय में बता रहे हैं, जिसमें एंड्रयू एक बहुत पैसों वाला धोखाबाज सेवक है जो किस प्रकार चालाकी से प्रभु की सेवा करता है, तथा दूसरा सेवक मैथ्यू ईमानदारी और उत्तम के साथ बिना किसी लालच के साथ सेवा करता है। तो आइए देखिए।
5: पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड।
6: जय मसीह की। प्रभु के दास, आप कैसे हो?
5: अरे, आपका मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये बताओ कि आपकी कलीसिया और सेवकाई कैसे चल रही है?
6: प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है।
5: लेकिन आप तो साधारण लग रहे हो। मेरे समान ठाट बाट से रहो और पैसे कमाओ।
6: मैं प्रभु के द्वारा दी गई संस्था के साथ ईमानदारी से ही सेवा कर रहा हूँ।
5: ये संस्थाओं की बात छोड़ो, अगर संस्थाओं से पैसे कमाना है तो मेरे साथ चलो, बहुत ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको 4-5 संस्थाओं में नाम जुड़वा देता हूँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर देखो, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, मकान सब खरीद सकते हैं। एक ही संस्था को पकड़ के रखने से आपको जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा।
6: लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता से चुना है।
5: आपकी संस्था में रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही और मीटिंगों का आयोजन भी करना पड़ता है क्या?
6: हाँ, हमें मासिक रिपोर्ट देनी पड़ती है तथा संस्था के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है।
5: इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। मेरी कलीसिया में 20-25 लोग हैं, फिर भी 100-150 ऐसा रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही झूठा रिपोर्ट देकर बहुत पैसे कमाया हूँ, कोई नहीं पूछता। अब आपकी इच्छा।
6: नहीं नहीं, मैं दुनिया की धन दौलत के लिए मेरे परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बुलाने वाला प्रभु सच्चा है और सचमुच में मुझे आशीष करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। सुनो सेवक, वचन में लिखा है कि दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते है, ऐसा यीशु ने बताया है।
5: तू तो बदलेगा नहीं, छोड़ दो, चलो फिर मिलेंगे।
6: आप तो एक ही दिन में धनवान बनने के लिए बताते हो, लेकिन वह नहीं टिकेगा, परंतु सीढ़ी के एक एक कदम बढ़ने से ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और वही टिकेगा। चलो मिलेंगे।
7: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम मैथ्यू है,
6: मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हाँ मैथ्यू, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: मेरा उत्तम और प्रिय विश्वास योग्य सेवक मैथ्यू, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
6: हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: मेरा नाम एंड्रयू है, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में जरूर होगा।
1: हे एंड्रयू, आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं है।
0: मैं तो दौड़ दौड़ कर बहुत सेवा किया, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बराबर देखो, मेरा नाम है एंड्रयू।
1: मैंने पूरा ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे एंड्रयू, तुमने मेरे नाम पर धन दौलत कमाया है, ऐश आराम किया है और उत्तम नहीं रहा, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। उसे नरक में फेंक दिया जाए।
3: हे एंड्रयू, तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है। तूने लोगों को धोखा देकर सारी वस्तु को खरीदा ना, उसी वस्तु से मैं तुझको खरीद लिया। मैंने तुझको खरीद लिया। आवो आवो मेरे राज्य में, आवो आवो एंड्रयू, आवो आवो।
0: ओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना, वहाँ नहीं आना। वो मैं सेवा करने वाला आदमी, वहाँ तो बहुत पीड़िया है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे खा ले जा रहे, मैं नहीं आऊंगा।
4: इस प्रस्तुति में हम बता रहे हैं कि मसीही जीवन में प्रभु को दशमांश देना कितना अवश्य है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी प्रभु के लिए दशमांश देने के विषय में क्या चर्चा करते हैं।
5: रमतुड़ी, ए रमतुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ। मुझे मेरी कंपनी से 10,000 रुपये पेमेंट मिल गया है।
6: अच्छी बात है साहिब जी, मैं इसके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा खर्च है, इसलिए आप मेरे हाथ में दे दो। जो कुछ खरीदना चाहती हूँ सारी वस्तु खरीद लूँगी। लाओ लाओ मुझे दे दो।
5: ऐसा मत बोलो, पहला हम पेमेंट को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर उसमें से दशमांश निकाल कर रख देंगे, फिर सारा खर्च के लिए उपयोग करेंगे।
6: नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा खर्च है, 10,000 से अधिक होगा, इसलिए इस महीने दशमांश हम नहीं देंगे। इससे क्या हो जाएगा? अरे देना हो तो 5,500 रुपया दे दो।
5: ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उस आशीष में से हम परमेश्वर को दशमांश देना अवश्य है। यह बाइबल में एक नियम है। सुन, बाइबल हमें क्या बताती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं में से उसने दशमांश निकाल कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। अगर उसी प्रकार हम अपनी सारी वस्तुओं में से परमेश्वर को दशमांश देंगे, तो परमेश्वर हमें भी जरूर अब्राहम के जैसे आशीष देगा और धनी बनाएगा। इस नियम को पालन करने से परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रहेगी।
6: लो पकड़ो ये तुम्हारा पेमेंट, मैं इस दशमांश के बाद में तेरे साथ शामिल नहीं हूँ। तू अपनी इच्छा से कुछ भी करो, लो।
5: चलो इस पेमेंट में से जो भी दशमांश निकलता है बाइबल में अलग से रख देता हूँ।
6: ओहो, बाइबल में दशमांश रख रहे, ठीक है मैं बाद में ले लेती हूँ।

0: सब्जी सब्जी देखो, ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है।
1: यही स्वर्ग है। उधर देखो, दो स्वर्गदूत है और एक के पास जीवन की पुस्तक है। चलो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हे स्वर्गदूत, हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है क्या? देखो देखो।
0: उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपना नाम तो होगा ही होगा।
2: हे रोशन, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे रोशन, आपने मुझसे प्रेम किया है और दशमांश देने में उत्तम रहे हैं और इसके द्वारा मुझे मान दिया है, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: रुको रुको, मुझे भी साथ में लेके जाओ।
1: रुको रंथुड़ी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रंथुड़ी, आपने आपके पति की बात नहीं मानी और मेरा डर नहीं रखा और दशमांश के विषय में तूने धोखा दिया है और मेरे भाग को आपने चुरा भी लिया है, इसलिए तुम नरक का भागी होगी। लोभी को कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, जाओ नरक में।
0: अरे अरे, ये काले लोग कहाँ से आ गए हैं? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचा लो।
3: ये रंथुड़ी, आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है, इधर है इधर। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, बराबर पकड़ो उसको, हमारे राज्य में लेके आओ।
0: मुझे मत ले जाओ, नहीं आना है, मुझे छोड़ दो।
4: अब हम एक सेवक के बारे में देखेंगे कि जिसके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है और बाद में उसके मन में घमंड आ जाता है और अपने नाम

0: में घमंड आ जाता है और अपने नाम की बड़ाई के लिए सेवा करने लग जाता है, तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा होता है।
1: ओ सेविका, आज मैं बहुत खुशी में हूँ।
2: जी बोलिए, क्या हुआ है?
1: देखो, आज मेरी प्रार्थना से बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है और सारे भूत निकल गए, बहुत लोग छुटकारा पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अभी तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, मेरा नाम तो अब फेमस हो जाएगा।
2: अच्छी बात है, ये सारे काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु की महिमा के लिए किए हैं। तो आइए एक मिनट मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें।
1: हेलो, कौन बात कर रहे हो?
3: सेवक साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति मरने की स्थिति पर है, आप जल्दी आइए और प्रार्थना कीजिए। हमने सुना है कि आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत चमत्कार होता है, इसलिए हम आपको फोन किया है।
1: ठीक है, मैं 10 मिनट में अभी वहां पहुंचता हूं।
2: सेवक साहब, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? थोड़ा समय रुको, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है तो हम मिलकर प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें।
1: नहीं नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे जल्दी जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम होता है, तुम भी अपनी नजरों से देख तो तुम्हें भी पता चलेगा।
2: नहीं, हम नहीं जाएंगे, थोड़ा रुको। मेरे मन में ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि अभी मत जाओ।
1: नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरा मुकुट तो तैयार होगा। वाह वाह वाह, मुझे स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत भी खड़े हैं। हे स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक आया हूँ, मेरा मुकुट मुझे जल्दी पहनाओ और स्वर्ग में मुझे जाने दो, मैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहूँगा।
4: है सेवक जॉन, आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: क्या बोल रहे हो, बराबर देखना, मैं तो एक बड़ा सेवक हूँ, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगाई पाया है और शैतान से छुटकारा भी पाए हैं, मेरा नाम तो जरूर होगा। देखो,
5: मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
6: ए जान, हम तुझे देंगे सम्मान, तूने तो मुझे बहाया दाना, सेवा सेवा बोलते बोलते अब आंधु में मेरे पास ही आ गया। अभी से तू मेरी सेवा कर।
1: हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जाओ।
6: अभी नहीं चलेगा सेवक जी, समय पूरा हो गया।
1: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
2: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम एस्तर है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
4: है एस्तर, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
5: हे एस्तर, तू हमेशा मेरे चरणों में बैठकर मेरी महिमा करती थी और प्रार्थना करने वाली थी, आपके जीवन में सभी बातों में आपने मुझे पहले स्थान में रखा, इसलिए तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।

0: अरे प्रवीण, अभी तो आया, वापस कहाँ जा रहा बेटा?
1: हाँ माँ, मैं मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ।
0: ये प्रवीण तो अभी अभी घर में आया और अभी वापस से निकल गया, बस उसके फ्रेंडों के साथ घूमता ही रहता है। अरे प्रवीण, तेरा मोबाइल छूट गया बेटा। ये प्रीति कौन है?
1: आपने क्यों देखा मेरा फोन?
0: अरे ये प्रीति कौन है? इसमें प्रीति का फोन आया।
1: आपको क्या काम है मेरा फोन देखने का?
0: प्रवीण, ओ प्रवीण, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं करने का बेटा, आप तो यीशु मसीह का बेटा है, अच्छा जीवन जीना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। बाइबिल में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इतना गुस्सा नहीं करना है। आपका जीवन में आप नमूना बनो।
1: ओ माँ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है।

0: हाँ प्रवीण बोले।
1: हाँ प्रीति। अरे हमारे प्यार के बारे में मम्मी को पता लग गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: ऐसा है क्या? एक मिनट।
1: हेलो। हाँ प्रीति।
2: किससे बात कर रही हो बेटा?
1: मेरी जान, क्या हुआ?
2: हेलो।
1: अरे यार फोन कट गया।
2: किससे बात कर रही हो बेटा इस आधी रात को?
0: पापा वो लड़का तो मेरा फ्रेंड है।
2: देखो बेटा ये गलत है, आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना। देखो बाइबल में लिखा है इस जवानी की उम्र में आपका जीवन बड़ी सावधानी से चलना होगा, किसी बुरे लड़के के साथ मित्रता नहीं रखना चाहिए और अपने चाल चलन में पवित्र और नमूना जीवन जीना चाहिए, समझा बेटी?

0: हेलो।
1: हाँ प्रवीण, मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब पता चल गया, अब हम क्या करेंगे?
0: सुन मेरी बात सुन, हम कल सुबह 5 बजे की ट्रेन में बैठकर भाग जाएंगे।
1: पर मेरे पापा तो अकेले रह जाएंगे।
0: चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको रानी के समान रखूंगा। हम लव मैरिज करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
1: ठीक है प्रवीण, मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। आई लव यू प्रवीण।
0: आई लव यू टू प्रीति। और भूलना मत, सुबह 5 बजे तैयार रहना, ठीक है?

0: प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो।
1: अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खाना बना के दूँ? पहले वो बताओ कि आपको नौकरी मिली या नहीं।
0: चलो तो आज मैं फिर नौकरी ढूंढने जाता हूँ।
1: मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार बोला था, अपनी जवानी के समय में तेरी चाल चलन को संभालना, लेकिन मैंने मेरे पिताजी का नहीं माना। मेरा जीवन पूरा आज बर्बाद हो गया है, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये जहर पीकर मर जाती हूँ।
2: Thank you.

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या?
1: आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे प्रीति, तूने अपनी जवानी के समय मुझे स्मरण नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार चली है और मेरा दिया हुआ अमूल्य जीवन को तूने नहीं संभाला और आत्महत्या किया और तेरे गलत निर्णय लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम नरक में जाओ।
3: हे प्रीति, आओ आओ, तुम जागर पीकर आत्महत्या किया ना, आओ आओ। तुम जैसे आत्महत्या करने वाले नरक में ही आना पड़ेगा, आओ आओ।
4: प्रीति, मुझे नौकरी मिल गई। अरे प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? उठो उठो प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई प्रीति?
5: इस प्रकार से प्रवीण पागल हो जाता है और घूमते फिरते आखिर में अपने घर पर पहुंचता है।

0: बेटा प्रवीण, कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया तेरे को? अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से है? कहाँ गया था बेटा? कहाँ गया था बेटा? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तेरा यह हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। पास्टर साहब, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप जहाँ भी गए हैं जल्दी आइए पास्टर साहब।
1: बहन, जय शु।
0: आइए पास्टर साहब, आइए, मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पास्टर साहब आइए, उसके लिए प्रार्थना करिए।
1: ठीक है बहन, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे प्रवीण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा।

0: अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। मैंने अपने जवानी के समय में अपनी इच्छा के अनुसार चला, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं पागल बन गया था। अब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे नया जीवन दिया। मैं अपना जीवन अब यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। अब से लेकर यीशु के लिए ही जीऊंगा। धन्यवाद पास्टर साहब। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे प्रवीण, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे प्रवीण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और तू मेरे से दूर हो गया था, परंतु तूने अपने पापों से पश्चाताप किया और मन फिराया है, इसलिए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो।
0: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
3: आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में। यीशु मसीह का गुप्त आगमन की घड़ी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। तो हम देखेंगे कि उस गुप्त आगमन में कौन उठा लिया जाता है और कौन रह जाता है। दो औरतें चक्की में अनाज पीसते हैं। गुप्त आगमन के समय में उनमें से एक उठा लिया जाती है और दूसरा रह जाती है।
4: ओ बहन, ओ पड़ोसी से मैं बात नहीं करती है, वो कितना गुस्सा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
5: मेरी बहन, तुम ऐसा मत बोलो, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, वह परमेश्वर का आज्ञा है।
4: छोड़ो बहन, मेरे से ये हो नहीं सकता है। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? हे मेरे पिता, मैंने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया है, मैंने पाप कर दिया है, इसलिए मैं रह गई हूँ। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शर्मी है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है शर्मी, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शर्मी, आपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
6: हे शर्मी, वो आओ नरक में, आओ इधर, होगी बहुत गर्मी।
4: मुझे नरक में मत भेजो।

0: Vậy, vậy. Vậy, vậy.
1: धीरे हल चलाओ, मैं चल नहीं सकती।
0: ठीक है। ओए, मुर्गो, मुर्गो, गाड़ी देख। आजकल आप प्रार्थना करती है क्या?
1: मैं सब काम काज में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता।
0: मैं तो हमेशा काम करने से पहले प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना के बिना कोई काम काज नहीं करता हूँ।
1: अरे, मेरा घर वाला इधर ही था, कहाँ गया? मैं बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं करती थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या होगा?

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम रेणुका है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे रेणुका, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रेणुका, आप अपने कामों में व्यस्त रही और प्रार्थना नहीं किया और मुझे भी भूल गई, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे रेणुका, नरक में स्वागत है। तुमने मेरा राज को चुना है। यह रागो आनंद का।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नरक में।

0: क्या करूँ, बहुत बोर हो गया यार, टाइम ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा मोबाइल में टाइम निकालता हूँ। वाह, अरे बहुत बढ़िया वीडियो है यार। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा वीडियो है यार। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। अरे 6 बज गया, अब मोबाइल चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला। ये मनीष कहाँ गया, अभी तक आया नहीं यार, इसको फोन लगाना पड़ेगा यार। अरे फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। चलो मनीष आता है तब तक और मोबाइल चला लेता हूँ। अरे मनीष तू अभी आ रहा है, कब से तेरे को फोन लगा रहा, फोन भी नहीं लग रहा तेरा, कितनी देर हो गई तेरे को, तू सुबह से अभी आ रहा है, कहाँ गया था इतनी देर, अब जाके आ रहा है तू, बहुत टाइम हो गया तेरे को।
1: हे शैलेश, मैं तो एक मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के बारे में संदेश सुना है और मेरा जीवन बदल गया है। देख दोस्त, मैंने प्रभु से चर्च में खड़े होकर इस मोबाइल चलाने की मेरी नींद और मेरा स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो गया, उसके बारे में प्रभु से मैंने माफी मांगी और छोड़ भी दिया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे दोस्त, तुम भी इस खराब आदत को छोड़ दो और प्रभु के पास लौट आओ। देखो, इस मोबाइल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और पबजी चलाने से हमारा समय कितना बिगड़ता है। आज भी देखो, समय व्यर्थ हो गया, इस कारण हम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते, नींद भी नहीं आती, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में समय दे नहीं पाते। इसलिए तुम भी मन फिराओ और सब बातों को छोड़ दो, प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: अरे तेरी सारी कहानियां छोड़ना, देख मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तू खेलेगा कि नहीं, ये जवानी का टाइम तो मौज मस्ती करने का है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे बूढ़े होने के बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है यार। तू जा।

0: अरे मनीष, मनीष ये क्या हो रहा है? मेरा मनीष कहाँ गया? मनीष मेरा दोस्त कहाँ गया? मनीष ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मनीष कहाँ गया? मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे शैलेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शैलेश, आपने अपने जीवन में ज्यादा समय मोबाइल में बिताया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तूने मेरे वचन सुनकर स्वीकार नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: अबो अबो शैलेश, मुझे मालूम है कि तुम इधर ही आने वाला है। YouTube, WhatsApp, TikTok, PUBG, इसमें ज्यादा समय बिताया था ना, मैं हूँ उसका मालिक। आवो आवो, अब मेरे साथ समय बिताओ। आवो आवो।
4: अब हम 10 कुवारियों के बारे में देखेंगे।
5: चलो साथियों, सभी अपने अपने कुपियों में तेल भर लो,
6: साथ में मसाले भी ले लो,
7: क्योंकि हमें हमारा दूल्हे से वेट करने चलना है।
8: हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियाँ कर ली है।
6: अरे अरे, देखो उन 5 औरतों को पहले से ही इतनी तैयारी कर रही है।
8: अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देरी है और ये क्या कर रही है?
6: सुनो, मसाले ले लो, कुपियों में तेल नहीं हो तो भी चलेगा, बाद में तेल भर लेंगे।
8: हाँ हाँ, सही बात है, चलो।
9: बहुत देर हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं आया, अब हम सो जाते हैं।
10: हाँ हाँ, हम सो जाते हैं।
4: जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब मूर्ख कुवारियां तेल मांगने लगी, लेकिन जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आइए देखिए।
11: देखो,

0: उठो उठो उठो, जल्दी उठो, हमारा दूल्हा आ पहुंचा है, जल्दी करो।
1: अपने अपने मसाले दिया जलाकर चलो।
2: हाँ हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो
3: चलो, बेंट करने चले।

0: अरे सभी जाग उठो, दूल्हा आ गया है।
1: मेरी तो मशाल नहीं जल रही है, अब मैं क्या करूं?
0: हमारे मसाले बुझ रहे हैं।
2: मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं?
1: अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो।
3: हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर ले लो।
4: मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।

0: अरे दरवाजा तो बंद हो गया है, जल्दी दौड़ो, हमें भी दूल्हे से भेंट करनी है।
1: हम तैयार नहीं थे, अब देखो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया।
2: हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, खोल दो।
3: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।

0: अब हम एक धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में नाटक देखेंगे।
1: मेरा नाम धनवान धनजी है। सारे लोग मुझे धनवान धनजी के नाम से जानते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं तो लोगों को पसीना आ जाता है। मेरे पास बहुत सारा धन, रुपये, बंगले, गाड़ियां, सोना और चांदी है और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत धन है। ओह, ऐश करूंगा मैं। आओ मेरे भाइयों, आइए हम ऐश करें, खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। ऐश की जिंदगी बड़े मौज की जिंदगी। ए मेरे पांच भाइयों, इधर आओ। आज हम भोजन का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। चलो मेरे साथ। अरे ओ नौकर, इधर आ। आज मेरी मेज में क्या क्या परोसा जाएगा, जल्दी करके खाने लगा।
2: सेठ जी, आज आपके लिए 10 प्रकार के भोजन और पकवान बनाए गए हैं। आप चलकर भोजन का आनंद उठाइए सेठ जी।
1: ये ले मेरे छोटे भाई, ये पी और ऐश कर। मैं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत धन है। ओ बड़े भाई, ये तू भी ले, ये खा, जो भी खाना खा ले, ऐश कर। बड़ा मजा आ रहा है। अरे ओ नौकर, जा और चिकन तंदूरी, लेग पीस, मटन फ्राई, मलाई कोफ्ता, बिरयानी लेकर जल्दी आ। बड़ा मजा आ रहा आज खाने में मेरे भाइयों के साथ।
2: हाँ जी, अभी लेके आता हूँ।
3: ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ बचा कुचा खाना दे दो, कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ। ए सेठ जी, कुछ दया करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ।
1: अरे लाजर, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। मेरे तो बहुत अच्छे दिन हो गए हैं और तेरे ये बुरे दिन।
3: प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तूने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी तू मेरी मदद और सहायता करना।
1: वाह, मजा आ गया आज तो। चलो मेरे भाइयों, अपने अपने घर पे जाएं। अब मैं ऐश आराम करने जा रहा हूँ।
3: हे मेरे सर की पिता, मुझ पर दया करना, मैं तेरा बेटा हूँ और मेरे गुनाहों को माफ करना। और जब मैं मर जाऊं तो मुझ लाजर को तू ग्रहण करना और अपने राज्य में ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
0: कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार के कारण मर जाता है और धनवान की भी मृत्यु हो जाती है।
1: ओ, ओ, ओ, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मैं मरने वाला हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ओ, ओ, ए, ओ,

0: हे लाजर, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसलिए पिता के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो।
1: हे लाजर, आपने मेरे पर बहुत प्रेम रखकर, मेरा डर रखकर मेरे लिए दुख उठाया है, इसलिए आपके लिए एक विशेष स्थान रखा है कि आप अब्राहम की गोद में रहो।
2: हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्मरण किया और अब्राहम की

0: हे धनवान धन जी, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे धनवान धन जी भाई, आपने अपने लिए जिया, दुनिया में मौज किया है, मेरा भय नहीं माना है और किसी पर भी दया नहीं की है, इसलिए आप नरक में जाओ।
2: ए धनवान धन जी, मेरा प्यारा सर जी, आवो आवो, बनाऊंगा तेरी सब्जी। रोज चिकन फ्राई खाता था ना, इधर आवो धन जी, तेरी फ्राई कर देंगे।
3: अरे अरे, तू मुझे काले जा रहे हो, काले जा रहे हो, मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मुझे काहे नरक में ले जा रहा हो, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे हटो हटो शैतानो हटो। हाँ अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे मुझे नरक में ले जा रहे हैं ये शैतान, किसके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ।
4: हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
3: हे पिता अब्राहम, अब मैं क्या करूं, मैं आग में जल रहा हूँ, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचा लो।
4: इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
3: तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए।
4: उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
3: हे मेरे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे।
4: जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।

मसीह में प्रिय, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। ईश्वर हमें हर युग में मिलते हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलने आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 19 पद 42-43 और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हमें उस समय को जानना होगा जब प्रभु हमसे मिलेंगे। जब हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कब मिलेंगे, तब परमेश्वर शत्रुओं को हमारे विरुद्ध उठने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उन दिनों का लाभ उठाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलेंगे। हमें जानना चाहिए कि इन दिनों हमारी शांति के लिए क्या सही है। कैसी शांति? प्रभु के साथ शांति से रहो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर में शांति ढूंढनी चाहिए, उसके साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद 30, मैं और पिता एक हैं। उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने कहा एक यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, हमें भी ईश्वर से जुड़कर शांति से रहना चाहिए। हमें शांति कब मिलेगी? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसलिए इस महीने हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। आइए पहले देखें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 9, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम धर्मी बन जाते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, उन्हें यीशु के खून से धोते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं। हम सब उससे जुड़ते हैं। भजनहार कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमें अपने पापों को बिना छिपाए उसके सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अपराधों के बारे में प्रभु को बताना चाहिए। शास्त्र कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 7-9, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु के खून से धोए जाते हैं और धर्मी बनते हैं तो हमें ईश्वर से शांति मिलती है। न तो खतरे और न ही दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं। आइए दूसरे पर नजर डालें। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 पद 27, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे शब्दों से धर्मी या दोषी आंका जाएगा। शास्त्र कहता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, तो बस बात मत करो। सभोपदेशक इसे दोहराता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इसलिए हमें अपने बोले हुए शब्दों से सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए हमें हर दिन अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बेकार की बातचीत से दूर रहे। भजनहार प्रार्थना करता है
भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 141 पद 3, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, तब हम धर्मी ठहरेंगे। यशायाह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 50 पद 8, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, इसलिए अपने मुंह से पाप न करो। भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 29 पद 1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। यदि हम भी अपने मुंह पर पहरा दें तो धर्मी ठहरेंगे। हमें प्रभु के साथ शांति मिलेगी, हम शत्रु के हाथ से बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें धर्मी बनाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा और धर्मी बनाएगा। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें धर्मी बनाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 32 पद 15-16, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करता है तो धार्मिकता हमारे भीतर निवास करती है। इसलिए उत्सुकता से पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यीशु ने कहा, लूका की पुस्तक अध्याय 11 पद 3, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इच्छा के साथ पवित्र आत्मा मांगे और प्राप्त करें, वह तुम्हें धर्मी बनाएगा। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है। हम एकजुट होकर दुश्मन के हमलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जैसे ही यह कहता है कि भेंट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भेज दो, प्रभु के मंत्रालयों को दें, अपने चर्च को दें जिससे आप संबंधित हैं, और मिशनरियों को दें, अपने चरवाहों को मत भूलो जो तुम्हें प्रभु तक ले जाते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। हमें प्रभु और उनके मंत्रालय को प्रसाद देना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या प्रभु हमारी भेंटों की गवाही दे सकते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 2, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, अपने चर्च के माध्यम से प्रचार करने के लिए भेंट दें, यदि आप स्वयं भेंट नहीं देंगे तो कौन देगा। बहुत सारे जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वहां नौकर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सेवा करने के साधनों का अभाव है। खुशी से अपने उपहार दो, उन्हें मजबूत करो, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। हमारे देश में प्रभु के बहुत से सेवक हैं जो बिना किसी दिखावे के प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद दो। प्रभु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उनके हाथ मजबूत करें। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 7, हर एक जन जैसा मन में थाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों के विषय में गवाही दी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है।
ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी। हम सभी खतरों से सुरक्षित रहें। प्रभु ने अपनी बाइबल में धर्मी बनने के कई तरीके लिखे हैं। हमने इस महीने केवल अपने फायदे के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दिया। और भी बहुत कुछ है। क्या आप स्वयं को धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित करेंगे? ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।

मसीह में भाइयों एवं बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं हूं महिमा और मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द इटर्नल लव ऑफ गॉड पर। मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूं जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। बाइबल में यिर्मयाह रचित सुसमाचार 31 अध्याय का 3 पद में बताती है कि परमेश्वर हम सबों से अनंत प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम धनी हो या कंगाल, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के महानता वाले प्रेम की कहानी एक छोटी से कहानी के माध्यम से हम देखेंगे।

रेनू गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी कि मैं रेडी होके तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ कम ऑन यार, जब देखो तो तुम्हारा प्रेयर मीटिंग जब देखो तो सामने आते रहता है। कोई नहीं, अच्छा बताओ कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। ओके फाइन, मैं तुम्हें 4 बजे छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। ओके ओके चल फाइन, बाय।

0: दिनू आप यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
0: कहीं नहीं, मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: हाँ, ठीक है, जल्दी
0: दोनों तुम बैठो, मैं जल्द आ रही हूँ, तुरंत आ रही
1: हूँ। ओके, फिर जल्दी आना।
0: ठीक है, ठीक है।

0: अरे यार कितना टाइम हो गया है, मुझे शाम में प्रेयर में भी जाना है। चलो सूती घर चलते हैं, चलो चलो। नहीं नहीं, आज शाम में मुझे प्रेयर में जाना है, चलना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा। हाँ बहुत देर हो गई है। चलो चलो
1: आप प्रेयर में जाते हो?
0: जी मैं प्रेयर में जाती हूँ,
1: मैं भी आ सकता हूँ?
0: हाँ आप आना चाहते हैं प्रेयर में?
1: जी जी।
0: हाँ तो सुनिए, आप भी आ सकते हैं। चलो
1: एक्चुअली अपना नंबर दे दो क्या?
0: नंबर
2: कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: ओके ठीक है फिर, ले लो, बाय,
1: थैंक यू।

यीशु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपके प्रेम को भूल गई थी यीशु, मैं संसार में प्रेम ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मरने का, अब कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं,

0: बेटी रुक जा, ऐसा मत कर। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। चाहे संसार के लोग तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार के लोग तुझे बेकार समझें, पर तू मेरे नजर में अभी भी अनमोल है। मैं तुझसे अभी भी बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूं बेटी।
1: मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।

देखा कैसे उस लड़की ने संसार से मोहब्बत की, संसार को प्राथमिकता दी, लेकिन फिर भी संसार ने उसे ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया, मसीह का प्रेम जो हम सबको कभी अलग नहीं छोड़ता, जो हम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संसार के लोग हमसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम जो हम सबों से निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में स्वार्थ रहित सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह केवल और केवल यीशु मसीह है। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।

एक पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वह उन्हें कैसे निगल सकता है? वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है? वह रास्ते ढूंढता फिरता है। हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 20। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा। इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में, उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंत एक उच्च दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति, आस्था और नैतिक आचरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता को विकसित करना चाहिए। यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5 पद 6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1, 2 और 3। मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी गहराई और हमारे चर्चा के व्यापक संदर्भ में इसके महत्व को भलीभांति समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे आपको सभी आवश्यक पृष्ठभूमि और सहायक विवरण मिल सके, ताकि आप इस समय मैं जो समझा रहा हूँ उसकी मूल भावना को पूरी तरह समझ सकें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस विशेष जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और अंतर्निहित कर लें।
क्योंकि यही हमारे आगे की चर्चा की नींव है और आपको विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी न रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 3, और मैंने स्वर्ग के आकाश से एक अत्यंत गूंजदार और शक्तिशाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, एक ऐसी आवाज जो निस्संदेह तेज और स्पष्ट थी, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का ऐलान कर रही थी, जिसकी गूंज में अपार अधिकार और दिव्य उपस्थिति थी, जो ऐसे शब्दों को पहुंचा रही थी जिनका बहुत बड़ा महत्व और आध्यात्मिक भार था, जो सभी के सुनने और समझने के लिए थे। यह एक दिव्य क्षेत्र से आया हुआ ऐतिहासिक ऐलान था, एक घोषणा जो मेरी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंज उठी और जिसने तुरंत ध्यान और विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए, प्रभु यीशु। हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता, हम अंतिम क्षणों में हैं, प्रभु एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी भेड़े मेरी सुनती है, क्योंकि वे मुझे जानती हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु, यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु, कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु, शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, धन्यवाद। हमें ऐसी आंखें दो जो आपको देख सके। पिता, हमें ऐसे कान दो जो आपकी आवाज सुन सके। पिता, हमें यह आशीर्वाद दो कि हम आपको अपने प्रभु के रूप में सेवा कर सके। चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु उसे ठीक कर दो। आप हर कमजोरी को दूर कर देते हैं। जो लोग कर्ज में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करो कि वे अपना कर्ज चुका सके।
आप उन लोगों की कठिनाइयों को बदल देते हैं जो पीड़ा में हैं। आप हर समस्या को पलट देते हैं। प्रभु, आप हर चेहरे से हर आंसू पोंछ देते हैं। आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर देते हैं। आप पीड़ितों को मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है, और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाशगंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसे चमत्कार करें जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करें, अद्भुत कार्य करें, बीमारियों को ठीक करें, रोगों का उपचार करें और कमजोरियों को दूर करें। हे प्रभु, आप टोनेटोटके के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो। आपका नाम महिमा मंडित हो, क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे पिता, हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए पिता। जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें पिता, हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्म ग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांधी। वह क्या है? दो इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की। प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, एक इतिहास अध्याय 18 शब्द 6, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4, तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 20 शब्द 13,
और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। योएल अध्याय 2 शब्द 16-17। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराए न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, योएल अध्याय 2 शब्द 18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, योएल अध्याय 2 शब्द 24-25-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं। यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता, वही खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 2 शब्द 25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे, आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9 शब्द 3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था, और गुलाम यहूदी लोगों के लिए प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9 शब्द 23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 36 शब्द 21-22-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है
और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा, इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है, सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे। वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं। चाहे कुछ भी हो प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें? प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 शब्द 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है, यिर्मयाह अध्याय 32 शब्द 27, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है। वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा देते हो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूल

प्रियम है, ताली बजा कर उसके नाम में करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए। आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा, यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेव्य व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो, सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ ना मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलापगीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह है जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मैं जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वह परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूले।

प्रियो ताने बजा कर उसके नाम को महिमा करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशायाह अध्याय 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं, यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 14, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, 3 मलाकी अध्याय 3 शब्द 2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, 4 लूका अध्याय 12 शब्द 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, 7 दानियेल अध्याय 7 शब्द 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशायाह कहते हैं, 6 यशायाह अध्याय 6 शब्द 6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशायाह के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे।
प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया। इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2, शब्द 1-3। जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 5, शब्द 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं याकूब अध्याय 1, शब्द 21, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17, शब्द 10-11, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो। जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते। इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15, शब्द 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 2, शब्द 6, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2, शब्द 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला, हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है होशे अध्याय 9, शब्द 16, एप्रेम मारा हुआ है उनकी जड़ सूख गई उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास,
हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम ना हो और सूख न जाए, उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कुलुसियों अध्याय 2:6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं, तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं, तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।

योहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है, लूका अध्याय 23 श्लोक 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वही मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पत्रस लिखता है, 1 पत्रस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है, 1 इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है, 5 रोमियों अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है, 8 मत्तियो श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित ना हो, यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है, 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है, 36 श्लोक 22, देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है, 10 श्लोक 6, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है, 4 मत्ती श्लोक 23, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं।
लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है। यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26 कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। केवल आस्था ही नहीं बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करें। शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15 और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं, बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सके। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5 परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है यशाया अध्याय 53 श्लोक 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशाया अध्याय 60 श्लोक 20 क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15 इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे।
और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदि हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया, इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो, प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।

0: भविष्यवाणी के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और 40 दिन तक दिखाई देता और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और वह अपने 11 शिष्यों को अंतिम दर्शन एवं अंतिम आज्ञा देता है और उसका स्वर्गारोहण हो जाता है। तो आइए देखिए।
1: यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर

0: हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
1: चलो शिष्यों, हम यरूशलेम में ठहरकर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए बाट देखेंगे।
2: हाँ हाँ, चलो हम जाएंगे।
3: इस प्रकार यीशु का स्वर्गारोहण हो जाता है। जब वे पिंतेकुस्त के दिन इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे।
1: चलो हम सुसमाचार सुनाकर कलीसिया की स्थापना करेंगे।
3: प्रभु की अंतिम आज्ञा के अनुसार सारे जगत में परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। यीशु के शिष्यों ने कई कलीसियाओं की स्थापना की और आज तक यही सेवा प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं।
1: आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रेमी सलाम, जय यीशु।
2: जय यीशु।
1: मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इस सभा में आए हैं। आप सबों का मैं इस सभा में स्वागत करता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।

0: अब कलीसिया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज मैं आपको यीशु के दूसरे आगमन के विषय पर संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या आप दूसरे आगमन के विषय में जानना चाहते हो?
1: हाँ, जानना चाहते हैं।
0: मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरा और फिर जी भी उठा, यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो दूसरे आगमन के समय प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिपल मेरे पास है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने आने वाला है और वो हमें बादलों में उसके साथ उठा लेगा और हम उस स्वर्गीय देश के वारिस हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हमें विश्वास है कि आप जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्र करो ताकि आपके आगमन में हम भी आपके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमेन।
2: इस प्रस्तुति में हम देखेंगे दो मित्र शराब पीकर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। रास्ते में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा एक ने मन फिराया और दूसरा मजाक किया और नहीं मन फिराया।
3: हे मेरे दोस्त सहेस, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मेरे को मिल गए, मुझे बहुत आनंद हुआ, चलो थोड़ा पी लेते हैं।
4: हाँ हाँ लाओ, अभी तो पीने का समय है, बहुत मजा आएगा, लाओ थोड़ा पी लेते हैं।
3: अरे दोस्त, अरे पीने से बहुत मजा आ रहा है।
4: हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है।
3: ए मेरे दोस्त, चल गाड़ी में बैठ और भी मौज मस्ती करेंगे। हा हा हा।
4: हाँ चल चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हा हा हा हा
3: हा हा।

0: अरे भाई, इतना तेज क्यों जा रहे हो?
1: अरे तेरे को क्या करना है? मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या?
0: ओहो, लगता है तुम दोनों शराब पिए हुए हो। ऐसा मत करो भाई।
2: तो हम क्या कर सकते हैं?
0: तुम यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आने वाला है। जो पवित्र जीवन बिताते हैं उन्हीं को लेने के लिए यीशु आएगा, इसलिए मन फिराओ।
3: 2000 वर्षों से तुम्हारे लोग यही कहते आए हैं, अभी तक तुम्हारा यीशु कहाँ आया? बोलो। अरे छोड़ो ये सारी कहानी, चल दोस्त, हम चलते हैं।
2: अरे मेरे दोस्त महेश, थोड़ा तो रुको। हे सेवक साहब, आपकी बातें अच्छी लगी है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह पाप है, इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत बार इस आदत को छोड़ना चाहा, पर मुझसे नहीं हुआ। हे प्रभु के दास, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाना चाहता हूँ।
0: चिंता मत करो भाई, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए।
2: ठीक है।
0: हे प्रभु यीशु,
2: हे प्रभु यीशु,
0: मुझ पापी पर दया कर,
2: मुझ पापी पर दया कर,
0: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
2: और मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए,
0: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए,
2: और तेरे पवित्र लहू से धो दीजिए।
0: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ,
2: मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
0: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
2: मुझे नया जीवन दे दीजिए,
0: यीशु मसीह के नाम में,
2: यीशु मसीह के नाम में।
0: आमेन,
2: आमेन। अरे अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा सारा बोझ निकल गया है, मेरी सारी बुरी आदतें निकल गई है, मेरे दिल में यीशु आ गया है, मुझे नया जीवन मिल गया है। धन्यवाद सेवक साहब।
4: अरे दोस्त, तेरे को आना है कि नहीं आना है? मेरा टाइम हो गया है, चल गाड़ी में बैठ जा, और कितनी बातें करेगा, चल बैठ।
2: अरे दोस्त महेश, गाड़ी देख कर चलाओ।

0: अरे यहाँ जगह कितना अच्छा लग रहा है, हमने ऐसी जगह कभी नहीं देखा है, लगता है यही स्वर्ग है। चलो हम उसमें प्रवेश करेंगे।
1: तुम दोनों यहीं ठहरो, पहले अपना अपना नाम बताओ। अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
2: मेरा नाम साहेस है, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे साहेस, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे साहेस, आपने अपने पापों से माफी मांगी एवं मुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
2: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया।

0: मेरा नाम महेश है, जल्दी ढूंढो, मेरा नाम उस पुस्तक में है क्या?
1: महेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: ऐसे कैसा हो सकता है? हम दोनों एक साथ में रहते थे, दोनों एक साथ में दारू पीते थे, फिर उसको कैसे स्वर्ग मिल गया?
2: हे महेश, इस साहेब ने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया और अपना मन फिराया है, इसलिए उसको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल गया है। लेकिन तुमने मेरे सुसमाचार पर मजाक किया और विश्वास नहीं किया एवं अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिराया है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
0: मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो।
3: हे महेश, जब दुनिया में था मेरा शराब कैसा लगा? अच्छा लगा था ना, शराब पीते पीते घुट रहा था ना। अभी इधर आओ आओ, तुझे आग में धड़ पाएंगे।
4: अरे ये जगह कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है, मेरे विचार से अपार है, मेरा दिल आनंद से भरपूर हो गया है। हे स्वर्गदूत, मैं पास्टर पत्रस हूँ, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है?
1: हे सेवक पत्रस, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं।
2: हे मेरे विश्वास योग्य दास, तुम मेरे काम में उत्तम रहे हैं और आप मेरी इच्छा के अनुसार चले हैं और बहुतों को सुसमाचार सुनाया और उनको मेरे पास लेकर आए हैं, इसलिए मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।
4: मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: अब हम देखेंगे कि एक कलिसिया के दो वडिल रास्ते में मिलते हैं। एक अपने सेवक के विरुद्ध बात करता है और दूसरा उसको प्रभु के वचन से समझाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखिए।
1: अरे करमचंद भाई, जय मसीह की, कैसे हो?
2: जय मसीह की, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
1: अच्छा हूँ। अरे करमचंद भाई वडिल, आपको पिछले एक महीने से मैं कलीसिया में नहीं देखा। क्यों, आप कलीसिया में आजकल नहीं आते हो? क्यों, क्या हुआ?
2: देखो, मैं अच्छा कमाता हूँ और एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता हूँ। कलीसिया में सब विश्वासियों से मैं ही अधिक दान देने वाला हूँ, फिर भी यह पास्टर मेरी बात को नहीं मानता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है।
1: करमचंद भाई, आप पास्टर साहब से इतना गुस्सा में क्यों हो? क्या हुआ बताओ?
2: अपना वड़िल टोनू है ना, वह वड़िल मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पास्टर साहब को बोला उनके घर प्रार्थना करने के लिए मत जाना, लेकिन पास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए कलीसिया में आना छोड़ दिया।
1: अरे वडिल करमचंद, ध्यान से सुनो, हमारा सेवक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक भी किया है, इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात नहीं करना है और ऐसा सोचना भी नहीं है। यीशु प्रभु ने हमको एक वडिल के रूप में कलीसिया में रखा है, तो हमें सेवक को दुख नहीं देना है, बल्कि उसको सेवा में साथ देना है, ताकि वो और भी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सके।
2: अरे वडिल धर्मचंद, आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे छोड़कर वह सेवक कैसा सेवा करता है, मैं भी देखता हूँ, सेवक को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देख लूंगा।
1: करमचंद ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर डर रखो, परमेश्वर के सेवकों का आदर करो, ऐसा घमंड मत करो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, इसीलिए सावधान रहो।
2: ओ वडिल, मैं सब जानता हूँ, तू तेरा काम कर, जा।
1: कितना अच्छा लग रहा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से ही मालूम था कि मैं स्वर्ग आ जाऊंगा।
3: वडिल धर्मचंद और करमचंद हाजिर हो। वडिल धर्मचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
4: हे वडिल धर्मचंद, आप जब दुनिया में थे, आप आपके सेवक और कलीसिया के लिए उत्तम रहा और सेवक के साथ रहकर बहुत सेवा किया है और दान के विषय में उत्तम रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो।
1: धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, होसना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है।

0: हे स्वर्गदूत, मैं भी सेवक और कलीसिया के लिए बहुत दान दिया है और हमारे कलीसिया में सबसे बड़ा वडिल मैं ही हूँ। मुझे भी सम्मान के साथ स्वर्ग में जाने दो।
1: है वडिल करमचंद, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे भी स्वर्ग में जाने दो।
2: हे वडिल करमचंद, आप दुनिया में रहते समय दूसरों को तुच्छ जाना और अपने सेवक को मान नहीं दिया है और घमंड के साथ आपने अपना जीवन जिए, इसलिए आप इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए अग्नि ज्वाला तैयार करके रखा है, उस नरक में जाओ।
3: ओ करमचंद, तुम्हारे लिए उधर रास्ता बंद है, बंद। इधर आओ, इधर है आग, अभी से यही होगा तुम्हारा बाग।
0: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
4: इस प्रस्तुति में दो प्रभु के सेवकों एंड्रयू और मैथ्यू के विषय में बता रहे हैं, जिसमें एंड्रयू एक बहुत पैसों वाला धोखाबाज सेवक है जो किस प्रकार चालाकी से प्रभु की सेवा करता है, तथा दूसरा सेवक मैथ्यू ईमानदारी और उत्तम के साथ बिना किसी लालच के साथ सेवा करता है। तो आइए देखिए।
5: पास्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड।
6: जय मसीह की। प्रभु के दास, आप कैसे हो?
5: अरे, आपका मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ये बताओ कि आपकी कलीसिया और सेवकाई कैसे चल रही है?
6: प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छी चल रही है।
5: लेकिन आप तो साधारण लग रहे हो। मेरे समान ठाट बाट से रहो और पैसे कमाओ।
6: मैं प्रभु के द्वारा दी गई संस्था के साथ ईमानदारी से ही सेवा कर रहा हूँ।
5: ये संस्थाओं की बात छोड़ो, अगर संस्थाओं से पैसे कमाना है तो मेरे साथ चलो, बहुत ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको 4-5 संस्थाओं में नाम जुड़वा देता हूँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर देखो, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, मकान सब खरीद सकते हैं। एक ही संस्था को पकड़ के रखने से आपको जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा।
6: लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे तो मेरे परमेश्वर ने बड़ी विश्वास योग्यता से चुना है।
5: आपकी संस्था में रिपोर्ट और अन्य कार्यवाही और मीटिंगों का आयोजन भी करना पड़ता है क्या?
6: हाँ, हमें मासिक रिपोर्ट देनी पड़ती है तथा संस्था के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना पड़ता है।
5: इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, कोई रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। मेरी कलीसिया में 20-25 लोग हैं, फिर भी 100-150 ऐसा रिपोर्ट में बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही झूठा रिपोर्ट देकर बहुत पैसे कमाया हूँ, कोई नहीं पूछता। अब आपकी इच्छा।
6: नहीं नहीं, मैं दुनिया की धन दौलत के लिए मेरे परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बुलाने वाला प्रभु सच्चा है और सचमुच में मुझे आशीष करेगा और एक दिन ऊंचा करेगा। सुनो सेवक, वचन में लिखा है कि दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते है, ऐसा यीशु ने बताया है।
5: तू तो बदलेगा नहीं, छोड़ दो, चलो फिर मिलेंगे।
6: आप तो एक ही दिन में धनवान बनने के लिए बताते हो, लेकिन वह नहीं टिकेगा, परंतु सीढ़ी के एक एक कदम बढ़ने से ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं और वही टिकेगा। चलो मिलेंगे।
7: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम मैथ्यू है,
6: मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हाँ मैथ्यू, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: मेरा उत्तम और प्रिय विश्वास योग्य सेवक मैथ्यू, तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
6: हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: मेरा नाम एंड्रयू है, मेरा नाम तो जीवन की पुस्तक में जरूर होगा।
1: हे एंड्रयू, आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं है।
0: मैं तो दौड़ दौड़ कर बहुत सेवा किया, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। फिर से बराबर देखो, मेरा नाम है एंड्रयू।
1: मैंने पूरा ढूंढ लिया है, आपका नाम नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे एंड्रयू, तुमने मेरे नाम पर धन दौलत कमाया है, ऐश आराम किया है और उत्तम नहीं रहा, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। उसे नरक में फेंक दिया जाए।
3: हे एंड्रयू, तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है। तूने लोगों को धोखा देकर सारी वस्तु को खरीदा ना, उसी वस्तु से मैं तुझको खरीद लिया। मैंने तुझको खरीद लिया। आवो आवो मेरे राज्य में, आवो आवो एंड्रयू, आवो आवो।
0: ओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं आना, वहाँ नहीं आना। वो मैं सेवा करने वाला आदमी, वहाँ तो बहुत पीड़िया है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा।
4: इस प्रस्तुति में हम बता रहे हैं कि मसीही जीवन में प्रभु को दशमांश देना कितना अवश्य है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी प्रभु के लिए दशमांश देने के विषय में क्या चर्चा करते हैं।
5: रमतुड़ी, ए रमतुड़ी, देख मैं क्या लाया हूँ। मुझे मेरी कंपनी से 10,000 रुपये पेमेंट मिल गया है।
6: अच्छी बात है साहिब जी, मैं इसके लिए इंतजार कर रही थी कि कब आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा खर्च है, इसलिए आप मेरे हाथ में दे दो। जो कुछ खरीदना चाहती हूँ सारी वस्तु खरीद लूँगी। लाओ लाओ मुझे दे दो।
5: ऐसा मत बोलो, पहला हम पेमेंट को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर उसमें से दशमांश निकाल कर रख देंगे, फिर सारा खर्च के लिए उपयोग करेंगे।
6: नहीं नहीं, इस महीने में ज्यादा खर्च है, 10,000 से अधिक होगा, इसलिए इस महीने दशमांश हम नहीं देंगे, इससे क्या हो जाएगा। अरे देना हो तो 5,500 रुपया दे दो।
5: ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उस आशीष में से हम परमेश्वर को दशमांश देना अवश्य है। यह बाइबल में एक नियम है, सुन, बाइबल हमें क्या बताती है कि अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं में से उसने दशमांश निकाल कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। अगर उसी प्रकार हम अपनी सारी वस्तुओं में से परमेश्वर को दशमांश देंगे, तो परमेश्वर हमें भी जरूर अब्राहम के जैसे आशीष देगा और धनी बनाएगा। इस नियम को पालन करने से परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार में रहेगी।
6: लो पकड़ो ये तुम्हारा पेमेंट, मैं इस दशमांश के बाद में तेरे साथ शामिल नहीं हूँ, तू अपनी इच्छा से कुछ भी करो। लो
5: चलो, इस पेमेंट में से जो भी दशमांश निकलता है बाइबल में अलग से रख देता हूँ।
6: ओहो, बाइबल में दशमांश रख रहे, ठीक है मैं बाद में ले लेती हूँ।

0: सब्जी सब्जी देखो, ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है।
1: यही स्वर्ग है। उधर देखो, दो स्वर्गदूत है और एक के पास जीवन की पुस्तक है। चलो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हे स्वर्गदूत, हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है क्या? देखो देखो।
0: उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपना नाम तो होगा ही होगा।
2: हे रोशन, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
3: हे रोशन, आपने मुझसे प्रेम किया है और दशमांश देने में उत्तम रहे हैं और इसके द्वारा मुझे मान दिया है, इसलिए आप स्वर्ग में प्रवेश करो।
1: हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया है, धन्यवाद यीशु।

0: रुको रुको, मुझे भी साथ में लेके जाओ।
1: रुको रंथुड़ी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रंथुड़ी, आपने आपके पति की बात नहीं मानी और मेरा डर नहीं रखा और दशमांश के विषय में तूने धोखा दिया है और मेरे भाग को आपने चुरा भी लिया है, इसलिए तुम नरक का भागी होगी। लोभी को कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, जाओ नरक में।
0: अरे अरे, ये काले लोग कहाँ से आ गए हैं? अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचा लो।
3: ये रंथुड़ी, आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है, इधर है इधर। आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, बराबर पकड़ो उसको, हमारे राज्य में लेके आओ।
0: मुझे मत ले जाओ, नहीं आना है, मुझे छोड़ दो।
4: अब हम एक सेवक के बारे में देखेंगे कि जिसके द्वारा बहुत चिन्ह और चमत्कार होता है और बाद में उसके मन में घमंड आ जाता है और अपने नाम की बड़ाई के लिए सेवा करने लग जाता है, तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा होता है।
5: ओ सेविका, आज मैं बहुत खुशी में हूँ।
6: जी बोलिए, क्या हुआ है?
5: देखो, आज मेरी प्रार्थना से बहुत चिन्ह और चमत्कार हुआ है और सारे भूत निकल गए, बहुत लोग छुटकारा पाया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अभी तो मेरे पास ही प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, मेरा नाम तो अब फेमस हो जाएगा।
6: अच्छी बात है, ये सारे काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु की महिमा के लिए किए हैं। तो आइए एक मिनट मिलकर प्रार्थना करें और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें।
5: हेलो, कौन बात कर रहे हो?
7: सेवक साहब, हमारे गांव में एक व्यक्ति मरने की स्थिति पर है, आप जल्दी आइए और प्रार्थना कीजिए। हमने सुना है कि आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत चमत्कार होता है, इसलिए हम आपको फोन किया है।
5: ठीक है, मैं 10 मिनट में अभी वहाँ पहुँचता हूँ।
6: सेवक साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ा समय रुको, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है तो हम मिलकर प्रार्थना करें और उसकी महिमा करें।
5: नहीं नहीं, प्रार्थना के लिए मुझे जल्दी जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम होता है, तुम भी अपनी नजरों से देख तो तुम्हें भी पता चलेगा।
6: नहीं, हम नहीं जाएंगे, थोड़ा रुको। मेरे मन में ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो रही है कि अभी मत जाओ।
5: नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरा मुकुट तो तैयार होगा। वाह वाह वाह, मुझे स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत भी खड़े हैं। हे स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक आया हूँ, मेरा मुकुट मुझे जल्दी पहनाओ और स्वर्ग में मुझे जाने दो, मैं प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहूँगा।
1: हे सेवक जॉन, आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
5: क्या बोल रहे हो, बराबर देखना, मैं तो एक बड़ा सेवक हूँ, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगाई पाया है और शैतान से छुटकारा भी पाए हैं, मेरा नाम तो जरूर होगा, देखो।
2: मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चले, मेरी इच्छा के अनुसार करने वालों को ही स्वर्ग मिलता है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: ए जान, हम तुझे देंगे सम्मान। तूने तो मुझे बहाया दाना, सेवा सेवा बोलते बोलते अब बांधु में मेरे पास ही आ गया। अभी से तू मेरे
5: हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जाओ।
3: अभी नागी चलने का सेवक जी, समय पूरा हो गया। आवो, आवो।
5: मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नरक से मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
6: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम एस्तर है। मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है एस्तर, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में है, आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे एस्तर, तू हमेशा मेरे चरणों में बैठकर मेरी महिमा करती थी और प्रार्थना करने वाली थी। आपके जीवन में सभी बातों में आपने मुझे पहले स्थान में रखा, इसलिए तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूँगा।
6: हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद।

0: अरे प्रवीण, अभी तो आया, वापस कहाँ जा रहा बेटा?
1: हाँ माँ, मैं मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ।
0: ये प्रवीण तो अभी अभी घर में आया और अभी वापस से निकल गया, बस उसके फ्रेंडों के साथ घूमता ही रहता है। अरे प्रवीण, तेरा मोबाइल छूट गया बेटा। ये प्रीति कौन है?
1: आपने क्यों देखा मेरा फोन?
0: अरे ये प्रीति कौन है? इसमें प्रीति का फोन आया।
1: आपको क्या काम है मेरा फोन देखने का?
0: प्रवीण, ओ प्रवीण, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं करने का बेटा, आप तो यीशु मसीह का बेटा है, अच्छा जीवन जीना है, इतना गुस्सा नहीं करना है। बाइबिल में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इतना गुस्सा नहीं करना है, आपका जीवन में आप नमूना बनो।
1: ओ माँ जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो।
0: ठीक है बेटा, ठीक है।

0: हाँ प्रवीण बोलिए।
1: हाँ प्रीति। अरे हमारे प्यार के बारे में मम्मी को पता लग गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: ऐसा है क्या? एक मिनट।
1: हेलो। हाँ प्रीति।
2: किससे बात कर रही हो बेटा?
1: मेरी जान, क्या हुआ?
2: हेलो।
1: अरे यार फोन कट गया।
2: किससे बात कर रही हो बेटा इस आधी रात को?
0: पापा वो लड़का तो मेरा फ्रेंड है।
2: देखो बेटा ये गलत है, आधी रात को किसी लड़के के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना। देखो बाइबल में लिखा है इस जवानी की उम्र में आपका जीवन बड़ी सावधानी से चलना होगा, किसी बुरे लड़के के साथ मित्रता नहीं रखना चाहिए और अपने चाल चलन में पवित्र और नमूना जीवन जीना चाहिए, समझा बेटी?

0: हेलो।
1: हाँ प्रवीण, मेरे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में सब पता चल गया, अब हम क्या करेंगे?
0: सुन मेरी बात सुन, हम कल सुबह 5 बजे की ट्रेन में बैठकर भाग जाएंगे।
1: पर मेरे पापा तो अकेले रह जाएंगे।
0: चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुमको रानी के समान रखूंगा। हम लव मैरिज करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
1: ठीक है प्रवीण, मैं आपके ऊपर भरोसा रखती हूँ। आई लव यू प्रवीण।
0: आई लव यू टू प्रीति। और भूलना मत, सुबह 5 बजे तैयार रहना, ठीक है?

0: प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो।
1: अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खाना बना के दूँ? पहले वो बताओ कि आपको नौकरी मिली या नहीं।
0: चलो तो आज मैं फिर नौकरी ढूंढने जाता हूँ।
1: मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार बोला था, अपनी जवानी के समय में तेरी चाल चलन को संभालना, लेकिन मैंने मेरे पिताजी का नहीं माना। मेरा जीवन पूरा आज बर्बाद हो गया है, मैं अभी इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ये जहर पीकर मर जाती हूँ।

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है क्या?
1: आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।

0: और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे प्रीति, तूने अपनी जवानी के समय मुझे स्मरण नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार चली है और मेरा दिया हुआ अमूल्य जीवन को तूने नहीं संभाला और आत्महत्या किया और तेरे गलत निर्णय लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम नरक में जाओ।
2: हे प्रीति, आओ आओ, तुम जागर पीट कर आत्महत्या किया ना, आओ आओ। तुम जैसे आत्महत्या करने वाले नरक में ही आना पड़ेगा, आओ आओ।
3: प्रीति, मुझे नौकरी मिल गई। अरे प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? प्रीति प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? उठो उठो प्रीति, ये तूने क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई प्रीति?
4: इस प्रकार से प्रवीण पागल हो जाता है और घूमते फिरते आखिर में अपने घर पर पहुंचता है।

0: बेटा प्रवीण, कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया तेरे को? अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से है? कहाँ गया था बेटा? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। तेरा ये हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। पास्टर साहब, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप जहाँ भी गए हैं जल्दी आइए पास्टर साहब।
1: बहन, जयशु,
0: आइए पास्टर साहब, आइए, मेरे बेटे की हालत देखिए, उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। पास्टर साहब आइए, उसके लिए प्रार्थना करिए।
1: ठीक है बहन, चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे प्रवीण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा।

0: अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया। मैंने अपने जवानी के समय में अपनी इच्छा के अनुसार चला, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण मैं पागल बन गया था। अब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, मुझे नया जीवन दिया। मैं अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। अब से लेकर यीशु के लिए ही जीऊंगा। धन्यवाद पास्टर साहब। हे स्वर्गदूत, मेरा नाम प्रवीण है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे प्रवीण, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप स्वर्ग जा सकते हैं।
2: हे प्रवीण, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और तू मेरे से दूर हो गया था, परंतु तूने अपने पापों से पश्चाताप किया और मन फिराया है, इसलिए मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो।
0: हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, मुझे स्वर्ग मिल गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
3: आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन के बारे में। यीशु मसीह का गुप्त आगमन की घड़ी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है। तो हम देखेंगे कि उस गुप्त आगमन में कौन उठा लिया जाता है और कौन रह जाता है। दो औरतें चक्की में अनाज पीसते हैं। गुप्त आगमन के समय में उनमें से एक उठा लिया जाती है और दूसरी

0: रह जाती है।
1: ओ बहन, ओ पड़ोसी से मैं बात नहीं करती है, वो कितना गुस्सा करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है।
2: मेरी बहन, तुम ऐसा मत बोलो, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, वह परमेश्वर का आज्ञा है।
1: छोड़ो बहन, मेरे से ये हो नहीं सकता है। अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? अरे अरे, मेरी बहन कहाँ गई? ये मेरे पिता, मैंने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया है, मैंने पाप कर दिया है, इसलिए मैं रह गई हूँ।

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शर्मी है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: है शर्मी, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शर्मी, आपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा है, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे शर्मी, वो आओ नरक में आओ, इधर होगी बहुत गर्मी।
0: मुझे नरक में मत भेजो, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ।

0: Bye, bye. Bye, bye.
1: धीरे हल चलाओ, मैं चल नहीं सकती।
0: ठीक है। हाँ, भुर्को, भुर्को, गाड़ी देख। आजकल आप प्रार्थना करती है क्या?
1: मैं सब काम काज में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना करने का समय ही नहीं मिलता।
0: मैं तो हमेशा काम करने से पहले प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बिना कोई काम काज नहीं करता हूँ।
1: अरे, मेरा घर वाला इधर ही था, कहाँ गया? मैं बहुत दिनों से प्रार्थना नहीं करती थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या हो?

0: हे स्वर्गदूत, मेरा नाम रेणुका है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे रेणुका, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे रेणुका, आप अपने कामों में व्यस्त रही और प्रार्थना नहीं किया और मुझे भी भूल गई, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: हे रेणुका, नरक में स्वागत है। तूने मेरा राज को चुना है। यह था रागो आनंद का।
0: मुझे बचा।

0: करूँ, बहुत बोर हो गया यार, टाइम ही नहीं निकल रहा है। थोड़ा मोबाइल में टाइम निकालता हूँ। वाह, अरे बहुत बढ़िया वीडियो है यार। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा वीडियो है। अरे बहुत मजा आ रहा है, क्या बात। अरे 6 बज गया, अब मोबाइल चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला। ये मनीष कहाँ गया, अभी तक आया नहीं यार, इसको फोन लगाना पड़ेगा यार। अरे फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। चलो मनीष आता है तब तक और मोबाइल चला लेता हूँ। अरे मनीष तू अभी आ रहा है, कब से तेरे को फोन लगा रहा, फोन भी नहीं लग रहा तेरा, कितनी देर हो गई तेरे को, तू सुबह से अभी आ रहा है, कहाँ गया था इतनी देर, अब जाके आ रहा है तू, बहुत टाइम हो गया तेरे को।
1: हे शैलेश, मैं तो एक मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने प्रभु यीशु के गुप्त आगमन के बारे में संदेश सुना है और मेरा जीवन बदल गया है। देख दोस्त, मैंने प्रभु से चर्च में खड़े होकर इस मोबाइल चलाने की मेरी नींद और मेरा स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो गया, उसके बारे में प्रभु से मैंने माफी मांगी और छोड़ भी दिया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मुझे नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे दोस्त, तुम भी इस खराब आदत को छोड़ दो और प्रभु के पास लौट आओ। देखो, इस मोबाइल में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और पबजी चलाने से हमारा समय कितना बिगड़ता है। आज भी देखो, समय व्यर्थ हो गया, इस कारण हम पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते, नींद भी नहीं आती, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में समय दे नहीं पाते। इसलिए तुम भी मन फिराओ और सब बातों को छोड़ दो, प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
0: अरे तेरी सारी कहानियां छोड़ना, देख मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, तू खेलेगा कि नहीं, ये जवानी का टाइम तो मौज मस्ती करने का है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। अरे बूढ़े होने के बाद में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है यार। तू जा।

0: मनीष मनीष ये क्या हो रहा है? मेरा मनीष कहाँ गया? मनीष मेरा दोस्त कहाँ गया? मनीष ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे मनीष कहाँ गया? मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष मनीष हे स्वर्गदूत, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या?
1: हे शैलेश, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
2: हे शैलेश, आपने अपने जीवन में ज्यादा समय मोबाइल में बिताया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया और तूने मेरे वचन सुनकर स्वीकार नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया, इसलिए तुम नरक में जाओ।
3: अबो शैलेश, मुझे मालूम है कि तुम इधर ही आने वाला है। YouTube, WhatsApp, TikTok, पबजी, इसमें ज्यादा समय बिताया था ना, मैं हूँ उसका मालिक। आवो आवो अब मेरे साथ समय बिताओ। आवो आवो
4: अब हम 10 कुवारियों के बारे में देखेंगे।
5: चलो साथियों, सभी अपने अपने कुपियों में तेल भर लो,
6: साथ में मसाले भी ले लो,
7: क्योंकि हमें हमारा दूल्हे से वेट करने चलना है।
8: हाँ हाँ, हमने सारी तैयारियाँ कर ली है।
6: अरे अरे देखो, उन 5 औरतों को पहले से ही इतनी तैयारी कर रही है।
8: अभी तो दूल्हे के आने में बहुत देरी है और ये क्या कर रही है?
6: सुनो, मसाले ले लो, कुपियों में तेल नहीं हो तो भी चलेगा, बाद में तेल भर लेंगे।
8: हाँ हाँ सही बात है, चलो।
9: बहुत देर हो गई है, अभी तक दूल्हा नहीं आया, अब हम सो जाते हैं।
10: हाँ हाँ हम सो जाते हैं।
4: जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब मूर्ख कुवारियाँ तेल मांगने लगी, लेकिन जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आइए देखिए।
11: देखो

0: उठो उठो, जल्दी उठो, हमारा दूल्हा आ पहुंचा है, जल्दी करो।
1: अपने अपने मसाले दिया जलाकर चलो।
2: हाँ हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो
3: चलो, बेंट करने चले।

0: अरे सभी जाग उठो, दूल्हा आ गया है।
1: मेरी तो मशाल नहीं जल रही है, अब मैं क्या करूं?
0: हमारे मसाले बुझ रहे हैं।
2: मेरे पास भी नहीं है, अब मैं क्या करूं?
1: अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो।
3: हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर ले लो।
4: मेरे पिता के राज्य में आनंद से प्रवेश करो।

0: अरे दरवाजा तो बंद हो गया है, जल्दी दौड़ो, हमें भी दूल्हे से भेंट करनी है।
1: हम तैयार नहीं थे, अब देखो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया।
2: हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो, खोल दो।
3: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।

0: अब हम एक धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में नाटक देखेंगे।
1: मेरा नाम धनवान धनजी है, सारे लोग मुझे धनवान धनजी के नाम से जानते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं तो लोगों को पसीना आ जाता है। मेरे पास बहुत सारा धन, रुपये, बंगले, गाड़ियां, सोना और चांदी है, और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरे पास बहुत धन है। ओह, ऐश करूंगा मैं। आओ मेरे भाइयों, आइए हम ऐश करें, खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। ऐश की जिंदगी बड़े मौज की जिंदगी। ए मेरे पांच भाइयों, इधर आओ, आज हम भोजन का लुत्फ उठाएंगे, मजा लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, चलो मेरे साथ। अरे ओ नौकर, इधर आ, आज मेरी मेज में क्या क्या परोसा जाएगा, जल्दी करके खाने लगा।
2: सेठ जी, आज आपके लिए 10 प्रकार के भोजन और पकवान बनाए गए हैं, आप चलकर भोजन का आनंद उठाइए सेठ जी।
1: ये ले मेरे छोटे भाई, ये पी और ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत धन है। ओ बड़े भाई, ये तू भी ले, ये खा, जो भी खाना खा ले, ऐश कर। बड़ा मजा आ रहा है। अरे ओ नौकर, जा और चिकन तंदूरी, लेग पीस, मटन फ्राई, मलाई कोफ्ता, बिरयानी लेकर जल्दी आ, बड़ा मजा आ रहा आज खाने में मेरे भाइयों के साथ।
2: हाँ जी, अभी लेके आता हूँ।
3: ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ बचा कुचा खाना दे दो, कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ। ए सेठ जी, कुछ दया करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे कुछ दे दो, मैं भूखे मर रहा हूँ।
1: अरे लाजर, ले ये रोटी का टुकड़ा खा ले। मेरे तो बहुत अच्छे दिन हो गए हैं और तेरे ये बुरे दिन।
3: प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए प्रभु तूने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी तू मेरी मदद और सहायता करना।
1: वाह, मजा आ गया आज तो। चलो मेरे भाइयों, अपने अपने घर पे जाएं, अब मैं ऐश आराम करने जा रहा हूँ।
3: हे मेरे सर की पिता, मुझ पर दया करना, मैं तेरा बेटा हूँ, और मेरे गुनाहों को माफ करना, और जब मैं मर जाऊं तो मुझ लाजर को तू ग्रहण करना और अपने राज्य में ले लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
0: कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार के कारण मर जाता है और धनवान की भी मृत्यु हो जाती है।
1: ओ, ओ, ओ, अरे मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मैं मरने वाला हूँ, अरे कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ओ, ओ, ए, ओ,

0: हे लाजर, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, इसलिए पिता के राज्य में आनंद के साथ प्रवेश करो।
1: हे लाजर, आपने मेरे पर बहुत प्रेम रखकर, मेरा डर रखकर मेरे लिए दुख उठाया है, इसलिए आपके लिए एक विशेष स्थान रखा है कि आप अब्राहम की गोद में रहो।
2: हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे स्मरण किया और अब्राहम की

0: हे धनवान धन जी, आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं।
1: हे धनवान धनजी भाई, आपने अपने लिए जिया, दुनिया में मौज किया है, मेरा भय नहीं माना है और किसी पर भी दया नहीं की है, इसलिए आप नरक में जाओ।
2: ए धनवान धनजी, मेरा प्यारा सर जी, आओ आओ, बनाऊंगा तेरी सब्जी। रोज चिकन फ्राई खाता था ना, इधर आओ धनजी, तेरी फ्राई कर देंगे।

0: है। अरे तुम मुझे काले जा रहे हो, काले जा रहे हो, मैं तो बड़ा सेठ हूँ, मुझे काले नरक में ले जा रहा हो, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे हटो हटो शैतानो हटो। हाँ अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे मुझे नरक में ले जा रहे हैं, ये शैतान खींचके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मैं मर रहा हूं।
1: हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब शांति पा रहा है और तू तड़फ रहा है।
0: हे पिता अब्राहम अब मैं क्या करूं, मैं आग में जल रहा हूं, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे बचाओ मुझे बचा लो।
1: इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके।
0: तो है पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए।
1: उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
0: ए मेरे पिता अब्राहम यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे।
1: जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।

Ha ha ha ha!

मसीह में प्रिय, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। ईश्वर हमें हर युग में मिलते हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलने आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा लूका की पुस्तक अध्याय 19 पद 42-43 और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हमें उस समय को जानना होगा जब प्रभु हमसे मिलेंगे। जब हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कब मिलेंगे, तब परमेश्वर शत्रुओं को हमारे विरुद्ध उठने की अनुमति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 16, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें उन दिनों का लाभ उठाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हमें उस समय का पता होना चाहिए जब वह हमसे मिलेंगे। हमें जानना चाहिए कि इन दिनों हमारी शांति के लिए क्या सही है। कैसी शांति? प्रभु के साथ शांति से रहो। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर में शांति ढूंढनी चाहिए, उसके साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 पद 30, मैं और पिता एक हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना ने कहा एक यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 1, हमें भी ईश्वर से जुड़कर शांति से रहना चाहिए। हमें शांति कब मिलेगी? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इसलिए इस महीने हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि हम कैसे धर्मी बन सकते हैं। आइए पहले देखें। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद 9, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम धर्मी बन जाते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं, उन्हें यीशु के खून से धोते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ शांति में रहते हैं। हम सब उससे जुड़ते हैं। भजनहार कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 32 पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमें अपने पापों को बिना छिपाए उसके सामने स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अपराधों के बारे में प्रभु को बताना चाहिए। शास्त्र कहता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद 7-9, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम यीशु के खून से धोए जाते हैं और धर्मी बनते हैं तो हमें ईश्वर से शांति मिलती है। न तो खतरे और न ही दुश्मन हमारे करीब आ सकते हैं। आइए दूसरे पर नजर डालें। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 पद 27, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें हमारे शब्दों से धर्मी या दोषी आंका जाएगा। शास्त्र कहता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, तो बस बात मत करो। सभोपदेशक इसे दोहराता है सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 पद 6, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इसलिए हमें अपने बोले हुए शब्दों से सावधान रहना चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए हमें हर दिन अपनी जीभ और मुंह प्रभु को समर्पित करना चाहिए। बेकार की बातचीत से दूर रहे। भजनहार प्रार्थना करता है
भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 141 पद 3। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर, तब हम धर्मी ठहरेंगे। यशायाह कहते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 50 पद 8, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, इसलिए अपने मुंह से पाप न करो। भजनहार कहता है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 39 पद 1, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। यदि हम भी अपने मुंह पर पहरा दें तो धर्मी ठहरेंगे। हमें प्रभु के साथ शांति मिलेगी, हम शत्रु के हाथ से बच जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें धर्मी बनाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद 8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा और धर्मी बनाएगा। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें धर्मी बनाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 32 पद 15-16, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमें धोकर शुद्ध करता है तो धार्मिकता हमारे भीतर निवास करती है। इसलिए उत्सुकता से पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यीशु ने कहा, लूका की पुस्तक अध्याय 11 पद 3, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इच्छा के साथ पवित्र आत्मा मांगे और प्राप्त करें, वह तुम्हें धर्मी बनाएगा। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति पा सकता है। हम एकजुट होकर दुश्मन के हमलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जैसे ही यह कहता है कि भेंट, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ भेज दो। प्रभु के मंत्रालयों को दें, अपने चर्च को दें जिससे आप संबंधित हैं, और मिशनरियों को दें, अपने चरवाहों को मत भूलो जो तुम्हें प्रभु तक ले जाते हैं। हाबिल ने परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। हमें प्रभु और उनके मंत्रालय को प्रसाद देना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्या प्रभु हमारी भेंटों की गवाही दे सकते हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 25 पद 2, इसराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अपने चर्च के माध्यम से प्रचार करने के लिए भेंट दें। यदि आप स्वयं भेंट नहीं देंगे तो कौन देगा? बहुत सारे जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वहां नौकर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास सेवा करने के साधनों का अभाव है। खुशी से अपने उपहार दो, उन्हें मजबूत करो, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। हमारे देश में प्रभु के बहुत से सेवक हैं जो बिना किसी दिखावे के प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रसाद दो। प्रभु की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उनके हाथ मजबूत करें। बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 7, हर एक जन जैसा मन में थाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंटों के विषय में गवाही दी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 4, विश्वास किसे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है।
ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर के साथ शांति मिलेगी। हम सभी खतरों से सुरक्षित रहें। प्रभु ने अपनी बाइबल में धर्मी बनने के कई तरीके लिखे हैं। हमने इस महीने केवल अपने फायदे के लिए कुछ चीजों पर ध्यान दिया। और भी बहुत कुछ है। क्या आप स्वयं को धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित करेंगे? ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। आमीन।

मसीह में भाइयों एवं बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं हूं महिमा और मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द इटर्नल लव ऑफ गॉड पर। मैं आपके साथ आज एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूं जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। बाइबल में यिर्मयाह रचित सुसमाचार 31 अध्याय का 3 पद हमें बताती है कि परमेश्वर हम सबों से अनंत प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम धनी हो या कंगाल, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर की महानता वाले प्रेम की कहानी एक छोटी से कहानी के माध्यम से हम देखेंगे।

रेनू गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा सुनो, मैं बोल रही थी कि मैं रेडी होके तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। हाँ वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ कम ऑन यार, जब देखो तो तुम्हारा प्रेयर मीटिंग जब देखो तो सामने आते रहता है। कोई नहीं, अच्छा बताओ कितने बजे जाना है तुम्हें? 4 बजे। ओके फाइन, मैं तुम्हें 4 बजे छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। ओके ओके चलो फाइन, बाय।

0: देखो आप यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
0: कहीं नहीं, मैं फ्रेंड्स को बुला के लाती हूँ।
1: हाँ, अकेले? ठीक है, जल्दी।
0: नहीं, तुम बैठो, मैं जल्द आ रही हूँ, तुरंत आ रही
1: हूँ। ओके, फिर जल्दी आना।
0: ठीक है, ठीक है।

0: अरे यार कितना टाइम हो गया है, मुझे शाम में प्रेयर में भी जाना है। चलो तू भी घर चलते हैं, चलो चलो
1: थोड़ी
0: देर। नहीं नहीं आज शाम में मुझे प्रेयर में जाना है, चलना पड़ेगा अभी, निकलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। चलो चलो
2: आप प्रेयर में जाते हो?
0: जी मैं प्रेयर में जाती हूँ,
2: मैं भी आ सकता हूँ।
0: हाँ आप आना चाहते हैं प्रेयर में?
2: जी जी जरूर।
0: हाँ तो नहीं आप भी आ सकते हैं, चले
2: एक्चुअली अपना नंबर दे दो क्या तरफ से।
0: नंबर
3: कोई प्रॉब्लम नहीं है, माय फ्रेंड।
0: ओके ठीक है फिर ले लो,
3: चलो
0: बाय,
2: थैंक यू।
0: हाँ।

यीशु, यीशु मुझे माफ कर दीजिए, यीशु मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैं आपके प्रेम को भूल गई थी यीशु, मैं संसार में प्रेम ढूंढ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मरने का, अब कोई नहीं है मेरे साथ।

0: बेटी रुक जा, ऐसा मत कर। मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। चाहे संसार के लोग तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे संसार के लोग तुझे बेकार समझें, पर तू मेरी नजर में अभी भी अनमोल है। मैं तुझसे अभी भी बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ बेटी।
1: मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।

देखा कैसे उस लड़की ने संसार से मोहब्बत की, संसार को प्राथमिकता दी, लेकिन फिर भी संसार ने उसे ठुकरा दिया, उसको त्याग दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर सच्चे प्रेम को प्रकट किया, मसीह का प्रेम जो हम सबों को कभी अलग नहीं छोड़ता, जो हम सबों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो आपको और मुझको कभी निराश नहीं होने देता, बल्कि हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि संसार के लोग हमसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम जो हम सबों से निस्वार्थ प्रेम करता है, दुनिया में स्वार्थ रहित सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह केवल और केवल यीशु मसीह है। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।

एक पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 पद 8 सावधान और सतर्क रहो क्योंकि तुम्हारा विरोध

सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता रहता है कि किसे निगल जाए। वह उन्हें कैसे निगल सकता है? वह उन्हें प्रभु से कैसे अलग कर सकता है? वह रास्ते ढूंढता फिरता है। हमें शैतान के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे कभी भी कोई जगह नहीं देनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद 20। मैं अब तुमसे अधिक बात नहीं करूंगा। इस संसार का शासक आ रहा है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। वह तभी आ सकता है जब उसे हमारे अंदर कोई जगह मिले। अगर शैतान के पास हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है तो वह आ नहीं सकता। हमारे लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरी मानवता के रूप में, उस सत्ता के बारे में जिसे अक्सर शैतान कहा जाता है, कोई भी स्वाभाविक या उचित कारण नहीं है, है कि हम उसमें कोई डर, आशंका या भय रखें। यह विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि ऐसी किसी भी सत्ता या प्रभाव को जो उस शख्सियत से जोड़ा जाता है, वह अंततः एक उच्च, दयालु और सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन है। हमारी स्वतंत्र इच्छा और नैतिक विवेक की क्षमता हमें नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने और सद्गुणों के सिद्धांतों से खुद को जोड़ने की शक्ति देती है, जिससे इस सत्ता से उत्पन्न कथित खतरे को महत्वहीन बना देती है। डर की अवधारणा, जब सत्ता की ओर निर्देशित होती है, उल्टा असर कर सकती है। संभव है कि हमारा ध्यान व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास से भटका दे। ऐसी चिंताओं के आगे झुकने के बजाय हमें आंतरिक शक्ति, आस्था और नैतिक आचरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता को विकसित करना चाहिए, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति सकारात्मक कार्यों और अच्छाई के पालन में निहित है, जिससे शैतान से उत्पन्न कोई भी कथित खतरा पूरी तरह से निराधार और चिंता का वास्तविक कारण नहीं बनता। इसलिए हम आत्मविश्वास और शांति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसी निराधार चिंताओं से मुक्त होकर। फिर भी इसराइली लोग अच्छाई से घृणा करते थे। दुश्मन उनका पीछा करेगा, वे अच्छाई से नफरत करते थे, इसीलिए शैतान उनका पीछा कर सकता है। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हर अच्छा वरदान और हर उत्तम उपहार ऊपर से ज्योतियों के पिता से आता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें परिवर्तन की कोई छाया भी नहीं है। केवल जब हम अच्छाई से घृणा करते हैं, तभी शैतान हमारे पास आता है। अच्छाई कौन है? यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। यह मत्ती अध्याय 5:6 में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें अच्छाई से घृणा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अच्छाई है। हमें उनके और करीब जाना चाहिए और जीवन पाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं और क्या अच्छा है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2:1-3। मूल संदेश जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आपकी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है जिसे सावधानी पूर्वक विचार और विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। यह मुख्य बिंदु मैं विशेष रूप से आपके लाभ के लिए उजागर कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी पूरी गहराई और हमारे चर्चा के व्यापक संदर्भ में इसके महत्व को भलीभांति समझ सकें। मेरा उद्देश्य इस मुख्य विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, जिससे आपको सभी आवश्यक पृष्ठभूमि और सहायक विवरण मिल सके, ताकि आप इस समय मैं जो समझा रहा हूँ उसकी मूल भावना को पूरी तरह समझ सकें। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस विशेष जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात और अंतर्निहित कर लें, क्योंकि यही हमारे आगे की चर्चा की नींव है और आपको विषय वस्तु पर एक व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिकोण देने के लिए तैयार

की गई है। यही वह केंद्रीय सिद्धांत है, मुख्य विचार है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मैं इस समय आपको अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ समझा रहा हूँ, ताकि इसकी गहन महत्ता और प्रासंगिकता को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी न रहे। यही प्रभु ने कहा था। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें प्रार्थना के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। चाहे सारी दुनिया हम पर जादू टोना कर दे, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। अगर यीशु मसीह हमारे भीतर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता। यही संत पॉल कहते हैं, शैतान को कोई जगह मत दो। हर दिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए, यीशु मेरे भीतर आकर निवास करो। यीशु मसीह सचमुच हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं। हमें उन्हें पुकारना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 3। और मैंने स्वर्ग के आकाश से एक अत्यंत गूंजदार और शक्तिशाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, एक ऐसी आवाज जो निस्संदेह तेज और स्पष्ट थी, जो एक महत्वपूर्ण संदेश का ऐलान कर रही थी, जिसकी गूंज में अपार अधिकार और दिव्य उपस्थिति थी, जो ऐसे शब्दों को पहुंचा रही थी जिनका बहुत बड़ा महत्व और आध्यात्मिक भार था, जो सभी के सुनने और समझने के लिए थे। यह एक दिव्य क्षेत्र से आया हुआ ऐतिहासिक ऐलान था, एक घोषणा जो मेरी आत्मा के भीतर गहराई तक गूंज उठी और जिसने तुरंत ध्यान और विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, जो हमें प्रेम करते हैं और स्नेहपूर्वक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको कृतज्ञता के साथ स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को प्रार्थना और स्तुति करने वाले लोगों में बदल दीजिए। हमें अपने उपासक बना दीजिए और सभी को आपको जानने का आशीर्वाद दीजिए। आप शीघ्र ही आने वाले हैं, प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया किसी को भी पीछे न छोड़े। प्रभु सभी को अपने आगमन के लिए तैयार कर दीजिए। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, कि हम बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना करें, आपकी स्तुति करें, आपके साथ रहें और आपके जैसे बन जाएं, जो चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। पिता, हम अंतिम क्षणों में हैं, प्रभु एक भी आत्मा गिरने न पाए। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, मेरी भेड़े मेरी सुनती हैं, क्योंकि वे मुझे जानती हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ रखती हैं और मेरे अस्तित्व से निकलने वाली असीम बुद्धि और करुणा को पहचानती हैं। यह गहरा संबंध उन्हें अस्तित्व के रहस्यों की स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे मेरी शाश्वत मार्गदर्शना और दिव्य योजना में अटूट विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु, यह बीमारी को ठीक करता है, यह रोग को दूर करता है। प्रभु, कमजोरी को दूर करने वाला जादुई मंत्र टूट जाएगा। प्रभु, शैतान के उन कार्यों का नाश हो जो कर्म के बंधनों को तोड़ते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, धन्यवाद। हमें ऐसी आंखें दो जो आपको देख सके। पिता, हमें ऐसे कान दो जो आपकी आवाज सुन सके। पिता, हमें यह आशीर्वाद दो कि हम आपको अपने प्रभु के रूप में सेवा कर सकें। चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु उसे ठीक कर दो। आप हर कमजोरी को दूर कर देते हैं। जो लोग कर्ज में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करो कि वे अपना कर्ज चुका सके। आप उन लोगों की कठिनाइयों को बदल देते हैं जो पीड़ा में हैं। आप हर समस्या को पलट देते हैं। प्रभु,
आप हर चेहरे से हर आंसू पोंछ देते हैं। आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर देते हैं। आप पीड़ितों को मुक्ति देते हैं। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन परमेश्वर, जिनकी दिव्य उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम विनम्रता से आपके सामने आते हैं, आपकी असीम बुद्धि और शाश्वत कृपा की याचना करते हैं। आपकी महिमा और गौरव की कोई तुलना नहीं है, और आपकी दयालु आत्मा हमें हमारे जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देती है। हम आपकी सर्वोच्च शक्ति और अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो इस ब्रह्मांड और इसमें विद्यमान हर जीव को बनाए रखते हैं। हम अपनी गहन श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, आपकी संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, सबसे छोटे कण से लेकर सबसे विशाल आकाश गंगा तक। हमारी वाणी आपको प्रिय लगे, जब हम आपके दिव्य मार्गदर्शन और अपने प्रयासों पर आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे प्रभु, कृपया ऐसे चमत्कार करे जो परिवार में झगड़ों और उलझनों को बदल दें, समस्याओं को दूर करे, अद्भुत कार्य करे, बीमारियों को ठीक करे, रोगों का उपचार करे और कमजोरियों को दूर करे। हे प्रभु, आप टोनेटोट के बंधनों को तोड़े, बुरे कर्मों की जंजीरों को तोड़े और सभी बीमारियों को ठीक करें। आपका नाम महिमा मंडित हो, प्रभु के नाम की महानता ऊंची हो। आपका नाम महिमा मंडित हो, क्योंकि आप हमारी सोच और मांग से भी बढ़कर करते हैं। दिव्य कृपा भी बनी रहे, हमें मार्गदर्शन दे पिता, हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए पिता। जो बच्चे पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करें, उन्हें स्मरण शक्ति दे, भला करें पिता, हर जीवन में भला करें। हर अच्छी भेंट और हर उत्तम आशीर्वाद ऊपर से ज्योतियों के पिता से उतरता है। आपने कहा कि उसमें कोई परिवर्तन या छाया नहीं है। हमें आशीर्वाद दे और ऊंचा उठाए। हम सारी स्तुति और महिमा आपको अर्पित करते हैं। हम विनम्रता से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, चिंता मत करो।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं। प्रभु का धर्म ग्रंथ तुमसे कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 शब्द 10, जवान सिन्हों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। मसीह में प्रिय, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु किसी न किसी प्रकार से हमें अभावों से बचाएंगे। हमें प्रभु को पूरी तरह से खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आसा नाम के एक राजा और उसकी प्रजा ने एक वाचा बांधी। वह क्या है? 2 इतिहास अध्याय 15 शब्द 12-14। और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाए। उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। इसके प्रति सच्चे रहें, तब यहोवा अवश्य रक्षा करेगा। हम उन आशीर्वादों पर थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं जो प्रभु ने उन भक्तों को दिए हैं जो प्रभु को खोजते हैं। आइए पहले देखें, दाऊद प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 27 शब्द 8, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद ने प्रभु की खोज की। प्रभु ने दाऊद की देखभाल की जिसने प्रभु की खोज की थी। दाऊद की इच्छा को देखो, दाऊद के अनुरोध को देखो। दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 63 शब्द 1, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद को विरोध, कठिनाई और पीड़ा का सामना करना पड़ा, परंतु यहोवा ने हार ना मानी। यहोवा दाऊद के संग था, उसने बिना असफल हुए बचा लिया। वह आपकी भी रक्षा करेगा। शास्त्र कहता है, 1 इतिहास अध्याय 17 शब्द 7-8, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। यहोवा ने दाऊद को ऊंचा उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, 1 इतिहास अध्याय 18 शब्द 6, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। पूरे दिल से प्रभु की खोज करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए दूसरे पर नजर डालें। एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसलिए हमने उपवास किया और इसके विषय में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। एज्रा और यहूदा के लोगों ने यहोवा की खोज की। उन्होंने कैसे खोज की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 23, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। उसने कैसे मदद की? एज्रा कहते हैं, एज्रा अध्याय 8 शब्द 31, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। जब हम उपवास करके प्रभु की खोज करेंगे तो वह हमें सभी शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। वह हमें उन लोगों से बचाएगा जो हमारे विरुद्ध उठते हैं। कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, प्रभु की तलाश करो। क्या आप धर्मप्रायण एज्रा की तरह प्रभु की खोज में स्वयं को समर्पित करेंगे? आइए तीसरे पर नजर डालें। बाइबल यहोशपात नामक राजा के बारे में कहती है, 2 इतिहास अध्याय 20 शब्द 3-4, तब यहोशपात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और हमें हर चीज के लिए प्रभु को खोजना चाहिए। सभी लोगों ने प्रभु की खोज की। शास्त्र कहता है, 2 इतिहास अध्याय 20 शब्द 13,
और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमें एक परिवार के रूप में भी प्रभु की तलाश करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। योएल अध्याय 2 शब्द 16-17। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराए न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। जब सभी लोग प्रभु को परिवार के रूप में, सेवकों के रूप में, प्रभु के बच्चों के रूप में खोजेंगे तो प्रभु हम पर दया करेंगे। बाइबल कहती है, योएल अध्याय 2 शब्द 18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, योएल अध्याय 2 शब्द 24-25-26, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रासकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जैसे ही हम एक परिवार और एक चर्च के रूप में प्रभु की तलाश करते हैं, प्रभु हमारे देश और हमारे लिए समृद्धि लाएंगे। सूखा मिटेगा, भूखमरी मिटेगी, हमारी शर्म बदल जाएगी, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। मसीह में प्रिय, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें प्रभु की तलाश करना सिखाएं। यह मत समझो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते। चाहे छोटे बच्चे हो, किशोर हो या वयस्क, सभी ईश्वर को खोजने पर ही मिल सकते हैं। वह जीवन जो प्रभु की खोज नहीं करता, वही खाली जीवन है। यहोशापात ने प्रभु की खोज की। जो राजा उसके विरुद्ध आए वे पराजित हो गए। यहोशापात की जीत हुई। इसके अलावा शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 2 शब्द 25-26, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। जब आप प्रभु को खोजेंगे तो प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तुम खुश हो जाओगे, आप प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। आइए चौथे पर नजर डालें। धर्मप्रायण दानियेल कहते हैं, दानियेल अध्याय 9 शब्द 3, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर को खोजता था। दानियेल ने यरूशलेम शहर के लिए, जो 70 वर्षों से उजाड़ था, और गुलाम यहूदी लोगों के लिए प्रभु की तलाश शुरू कर दी। पिछले कुछ वर्षों में हमारे जीवन में कई चीजें नष्ट हो गई हैं। हमें गुलामी से बाहर न निकल पाने की चिंता है। लेकिन हमारे जैसा एक आम आदमी दानियेल ने बुढ़ापे में भी परमेश्वर की तलाश शुरू कर दी। इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के दूत ने दानियेल की ओर देखा और कहा, दानियेल अध्याय 9 शब्द 23, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। यरूशलेम के लिए दानियेल की प्रार्थना, जो 70 वर्षों से उजाड़ थी, व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर की ओर से उत्तर आया। शास्त्र कहता है, दो इतिहास अध्याय 36 शब्द 21-22-23, ये सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कूसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कूसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है,
और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। दानियेल की प्रार्थना का जवाब दिया गया। प्रभु ने राजा का हृदय द्रवित कर दिया। यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी गई। सामग्री सहायता उपलब्ध है। सारी मदद मिली। इसलिए जब हम भी प्रभु को पूरी तरह से खोजेंगे तो प्रभु सभी प्रकार के लोगों को बदल देंगे। वह उनके दिलों को छू लेंगे। चीजें बदल सकती हैं। चाहे कुछ भी हो प्रभु ये करेंगे। हमें बस प्रभु की तलाश करनी है। प्रभु को कैसे खोजें? प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 29 शब्द 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की खोज करो और प्रभु महान कार्य करेंगे। वह कहता है, यिर्मयाह अध्याय 32 शब्द 27, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु की दृष्टि में कुछ भी कठिन नहीं है। वह हर चीज को आसान बना देता है। क्या आप प्रभु की पूरी शरण लेंगे? आमीन।

रोगों से मुक्ति देने अनंत जीवन देने सोली पे जा दे दिया, पापों को क्षमा करने शापों

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा कर उसको महिमा देती हूँ। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना

प्रेम है, ताली बजा कर उसके नाम प्रेम करे, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। यस लॉर्ड, उसने सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा।

मसीह में प्रिय, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आपने देखा है कि समय कितनी तेजी से उड़ता है? यह ऐसा था जैसे ये पिछले साल शुरू हुआ हो, ये कितनी जल्दी खत्म हो गया। प्रभु ने दयालुता पूर्वक हमारा नेतृत्व किया है, वो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस नए साल में ले आया है। इस नए साल में प्रभु हमारे साथ रहें, वो अपनी आंख के तारे की तरह हमारी रक्षा करेगा। निराश मत होइए, आइए एक नजर डालते हैं कि इस नए साल में हमें क्या करना है। इस नए वर्ष में प्रभु हम पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है ना? इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्रभु शीघ्र आते हैं, इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमारे पास जो कुछ है हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए ताकि कोई हमारे मुकुट न ले सके। हमारे मुकुट कौन लेगा? ईश ने कहा। यूहन्ना अध्याय 10 शब्द 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहता है, वो हमारा मुकुट चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ताज क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर चिंतन करने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। पहले देखते हैं ताज का क्या मतलब है। प्रभु कहते हैं, लेवीय व्यवस्था अध्याय 21 शब्द 12, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, मैं यहोवा हूँ। मुकुट पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 शब्द 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। क्या होता है जब भगवान का अभिषेक हमारे पास आता है? यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 27, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब प्रभु का अभिषेक हमारे पास आता है तो ये हमें सब कुछ सिखाता है। फिर से प्रेरित यूहन्ना लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब प्रभु का अभिषेक हम पर आता है तो हमें सब कुछ जानने का सौभाग्य मिलता है। शैतान इस विशेषाधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए यहोवा कहता है, अपना मुकुट दृढ़ रखो कि कोई उसे छीन न सके। इसलिए पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 शब्द 3, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो सावधान रहो, शैतान को कभी रास्ता मत दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इफिसियों अध्याय 4 शब्द 27, और न शैतान को अवसर दो। आइए दूसरी बात देखें। बाइबल कहती है, एस्तेर अध्याय 2 शब्द 17, और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया।
यीशु हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे राजा क्षयर्ष ने एस्तेर से प्रेम किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारे सभी पापों को माफ कर दिया और हमें परमपिता परमेश्वर के सामने राजा और रानी बनाया। वो हमें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाता है। यह मुकुट क्या दर्शाता है? ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? जब फिरौन ने यूसुफ को अधिकारी बनाया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति अध्याय 41:44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। इसका क्या मतलब है? ताकत को दर्शाता है। इसी तरह यीशु मसीह अपने खून से हमें राजा और रानी बनाते हैं और हमारे सिर पर अधिकार का ताज रखते हैं। हाँ परमेश्वर के बच्चे, यीशु हमें अपना अधिकार देता है। यीशु कहते हैं, लूका अध्याय 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आप कितने धन्य हैं। शैतान इस शक्ति को हमसे छीनने का प्रयास करेगा। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो सावधान रहो। वस्ती लापरवाह थी, वह ताज हार गई। राजा ने वस्ती को लाने के लिए प्रजा भेजी। एस्तेर अध्याय 1:10-12। परंतु वशती ने कहा कि वह नहीं आएगी। तब राजा क्रोधित हुआ और भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ। यीशु राजा हमें कई बार बुलाते हैं। यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने सामने अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाते हैं। जब हम उस आह्वान को अनदेखा करते हैं तो राजा यीशु का क्रोध हम पर आता है। रानी वशती का क्या हुआ? एस्तेर अध्याय 1:19। यदि राजा सहमत हो तो उसके सामने से एक शाही आदेश जारी किया जाना चाहिए कि वशती राजा क्षयर्ष के सामने दोबारा न आए, और इसे फौसियों और मेदियों के शाही धर्म में लिखा जाना चाहिए ताकि इसे बदला न जाए, और राजा को उसका राजपद उससे बेहतर किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। आपने देखा, अपने अभिमान और अवज्ञा के कारण वशती ने अपनी शाही गरिमा और अधिकार खो दिया। यह उपाधि एस्तेर को दी गई जो उससे बेहतर थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अवज्ञा, घमंड और जिद जैसी चीजों को जगह न दें। सत्ता और राजसी गौरव का ताज मत खोना। तीसरा, आइए देखें, पवित्र पुस्तक कहती है, भजन संहिता अध्याय 65:11, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हर साल आशीर्वाद देते हैं और अच्छाई देते हैं। वह साल को अच्छाइयों से सराबोर करता है। अच्छाई एक मुकुट है। आइए हम इस ताज को न खोएं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 85:12, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमें इन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छी चीजों को न चूकें। पवित्र शास्त्र कहता है, सभोपदेशक अध्याय 9:18, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। यदि हम पाप को जगह देंगे तो हम खराब हो जाएंगे और कई लाभ खो देंगे। तो सावधान रहो। सावधान रहें कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके साथ न मिलें। बाइबल कहती है, नीतिवचन अध्याय 22:24-25, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। गलत लोगों से दोस्ती न करें। उसके कारण हम वह अच्छाई खो देंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। पाप में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम उन लाभों को खो देंगे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हम खो देंगे। तो सावधान रहो, अपना ताज रखो। आइए चौथे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है,
भजन संहिता अध्याय 103, शब्द 4। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसके बाद ईश्वर की कृपा और दया हमें मुकुट के रूप में दी गई है। हमें उन मुकुटों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए बाइबल चेतावनी देती है। इब्रानियों अध्याय 12, शब्द 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद खो जाने की संभावना है, इसलिए कड़वाहट को जगह न दें। दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्यार करो, अनुग्रह मत खोना। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2, शब्द 1। इसलिए ही मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से मजबूत होने के बजाय हमें इसे खोना नहीं चाहिए। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो कृपा प्रचुर मात्रा में मिलती है, पौलुस ने कहा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4, शब्द 15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, प्रेरित याकूब लिखते हैं, याकूब अध्याय 4, शब्द 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर हमें देता है। प्रभु की कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, शब्द 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसके अलावा ये ईश्वर की कृपा है जो हमें जीवित रखती है और कड़ी मेहनत करती है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, विलप गीत अध्याय 3, शब्द 22। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। इसलिए हमें उस अनुग्रह और दया की रक्षा करनी चाहिए जो हमें मुकुट के रूप में मिली है। आइए 5वें पर नजर डालें। सेंट पौलुस ने थिसलुनीके के लोगों से कहा, 1 थिसलुनीकियों अध्याय 2, शब्द 19-20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें आत्माओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर जब प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी के विश्वासियों को लिखा, फिलिप्पियों अध्याय 4, शब्द 1। इसलिए मेरे प्रिय और अभिलाषित भाइयों, मेरे आनंद और मुकुट, इस प्रकार प्रभु में बने रहो। प्रिय ताज चच के लोग हैं जो प्रभु हमें देते हैं। मुकुट उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु हमें मंत्रालय में देते हैं। हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इन अंतिम दिनों में झूठे मंत्री, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आत्माओं को भटकाने के लिए उठ खड़े होंगे। पवित्र पुस्तक कहती है, 2 तीमुथियुस अध्याय 3, शब्द 6-7। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए हमें लोगों, चर्च की रक्षा करने का ध्यान रखना चाहिए जो उस मुकुट की तरह हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। आत्माओं को खोना नहीं चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 1, शब्द 10। व्याभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों, और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसलिए हमें अपने हाथ में सौंपे गए मंत्रालय की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 38, शब्द 7। इसलिए तू तैयार हो जा,
तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। हमें हमारी देखभाल के लिए सौंपी गई आत्माओं के लिए जमानत बनना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इन समयों में कुछ मंत्री लापरवाह होते हैं और उस चर्च को खो देते हैं जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है। वे अपना मंत्रालय खो रहे हैं और हमें जो मंत्रालय सौंपा गया है उससे सावधान रहना चाहिए। पौलुस आर्चिपोस को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 4 शब्द 17। फिर अखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हमें जो काम सौंपा गया है उसे सावधानी से करना चाहिए। हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो हमें दिए गए हैं। कुलुसियों अध्याय 1 शब्द 9। पौलुस ने उन लोगों के लिए बिना रुके प्रार्थना की जिन्हें उसे सौंपा गया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम लापरवाह होंगे तो इस अंत समय में आत्माएं ठोकर खाएंगी। इसलिए पत्रस लिखते हैं, 1 पत्रस अध्याय 5 शब्द 1-3। मामे जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें आत्माओं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 10 शब्द 21। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर के सेवक वे होने चाहिए जो परमेश्वर को खोजते हैं। यदि हम ईश्वर को नहीं खोजते तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो सावधान रहो, यहोवा उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रभु कहते हैं, यशायाह अध्याय 60 शब्द 3-5। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यदि हम उस मंत्रालय में वफादार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर हमें जो आत्माएं दी हैं उनके संरक्षण के कारण प्रभु तट की भीड़ को हमारे पास भेज देंगे। इसलिए प्रभु इस वर्ष हमें बताते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 शब्द 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन।

चाहे आपके माँ आपको भूल जाए, चाहे आपके दोस्त आपको भूल जाए, मैं परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, वह आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ताली बजा के उसको महिमा दे प्रियो। आमीन, आमीन। लोग तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए, रिश्ते क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा। दोस्त तुझको भूल जाए माँ क्यों ना भूल जाए, वो तुझको ना भूलेगा।

बचा कर उसके नाम की महिमा करें, आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। Yes, Lord। उसने ना सोना मांगा ना चांदी मांगा है, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा उसने पूछा नहीं, मन उसने मांगा मेरा, सोना उसने मांगा नहीं, चांदी उसने मांगा नहीं, दिल उसने मांगा मेरा, जाति उसने पूछा नहीं, भाषा मैंने पूछा नहीं।

हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु से मिलने की हमारी एक शर्त है, केवल शुद्ध किए गए लोग ही उसके आगमन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के प्यारे बच्चों, अपने आप को शुद्ध करो। पवित्र पुस्तक कहती है, यशाया अध्याय 1 शब्द 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता के माध्यम से पीड़ा के साथ पूछते हैं। यिर्मयाह अध्याय 13 शब्द 27, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हमें खुद को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 शब्द 1, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए पहले देखें, प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 1 शब्द 7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू से हमारे सभी पाप क्षमा हो रहे हैं, धुल रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उसके खून से धोना चाहिए। फिर आती है शुद्धि। शास्त्र कहता है, इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु का खून साफ करता है, इसलिए अपने आप को इसके लिए प्रतिबद्ध करें। वो हमें शुद्ध क्यों करता है? सिर्फ यीशु के आगमन पर जाने के लिए नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 9 शब्द 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। शुद्ध होने का मतलब केवल प्रभु के आगमन में भाग लेना नहीं है, प्रभु के लिए सेवा करो। इसलिए यीशु के खून से शुद्ध हो जाओ। आइए दूसरे पर नजर डालें। शास्त्र कहता है, मलाकी अध्याय 3 शब्द 2-3, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा हमें आग से शुद्ध करेगा। अग्नि सामान्यतः शुद्ध करती है, इसलिए अग्नि मांगो और प्रभु से प्राप्त करो। यीशु मसीह ने कहा, लूका अध्याय 12 शब्द 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल ये कि अभी सुलग जाती। हमें प्रभु से जो अग्नि मिलती है उसे मांगना और प्राप्त करना चाहिए। यह आग कहाँ से आती है? दानियेल भविष्यद्वक्ता कहते हैं, दानियेल अध्याय 7 शब्द 10, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति से आग की नदी निकलती है। जब प्रभु की यह अग्नि हमारे अंदर आती है तो ये हमें शुद्ध करती है। यशायाह कहते हैं, यशायाह अध्याय 6 शब्द 6-7, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, आग ने यशायाह के होठों को छुआ और वह शुद्ध हो गया। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु की अग्नि हम पर आए और हमें स्पर्श करे। प्रभु की आग प्रेरितों पर आई और उनका जीवन बदल गया, इसलिए हमें भी प्रभु की अग्नि मांगनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। पवित्र पुस्तक कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2
शब्द 1-2-3। जब पिंतेकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों का जीवन बदल गया। क्या हम अपने आप को आग से शुद्ध होने के लिए समर्पित कर दें? आइए तीसरे पर नजर डालें। प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 5 शब्द 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 3 तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, इसलिए हमें तिरुवासना को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। प्रेरित याकूब लिखते हैं याकूब अध्याय 1 शब्द 21 इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता। उत्सुकता से प्रभु का वचन ग्रहण करें। शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 17 शब्द 10-11 भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिसलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। केवल तभी जब हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं हम शुद्धा हो जाते हैं और अच्छे में बदल जाते हैं। इसलिए अधिक पढ़ें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। इसे अंदर रखो, इसका पालन करो और ये तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हें शुद्ध करेगा। आइए चौथे पर नजर डालें। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 2 जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु के लिए जियो। जब हम उसके लिए गवाह के रूप में खड़े होते हैं, जब हम फल लाते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते और उनके गवाह के रूप में नहीं जीते, इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से हैं। प्रभु को फल दो। हम प्रभु को फल कब दे सकते हैं? यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 शब्द 4 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी वह फल दे सकता है। प्रभु में बने रहने का क्या मतलब है? प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 2 शब्द 6 सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु की तरह चलना प्रभु में बने रहना है। हम कैसे चलते हैं इस पर थोड़ा विचार करना अच्छा है। प्रभु जिस प्रकार चले उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं। प्रेरित पत्रस लिखता है 1 पत्रस अध्याय 2 शब्द 21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। वही प्रभु में स्थिर रहता है। केवल उसमें बने रहकर ही हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं, तभी उसे शुद्ध किया जा सकता है। अगला हम कब फल लाएंगे? शास्त्र कहता है होशे अध्याय 9 शब्द 16 एप्रेम मारा हुआ है उनकी जड़ सूख गई उनमें फल न लगेगा। जड़ क्या है? हमारा विश्वास। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा विश्वास कम न हो और सूख न जाए। उसमें विश्वास जड़ जमा सकता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कुलुसियों अध्याय 2 शब्द 6 सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ
और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यदि हम उसमें निहित हैं तो हम उसके लिए फल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फल लाएंगे तो वो हमें शुद्ध करेगा। यदि हम शुद्ध हो जाएं, तो हम उसके आगमन पर स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध करें और तैयार करें। आमीन।

मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 शब्द 2-3। हे प्रियो, अब